बोलो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

बंदे। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही। डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

से संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरला, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Akashvani presents Morning News. Good morning. I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
8: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two Prime Ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
7: India and Japan have reaffirmed the share.
9: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
10: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
11: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
12: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
11: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
13: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
14: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
15: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम बैक है। मैंने कहा जी कैसे हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है ना जिंदगी में? देखिए सब कुछ बढ़िया ही चलना चाहिए और सुबह बहुत ही बेहतरीन है। और इस सुबह में आप सभी का हम आगाज करते हैं, दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं बहुत सारी चीजें हैं जो आज की सुबह हमें आपके साथ डिस्कस करनी है इसी वाले शो में। यस, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन। और अगर बात करें आज के दिन की, तो आज का दिन बहुत ही खास है। शुक्र है कि आज शुक्रवार है, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है फ्राइडे का, यानी कि शुक्रवार का दिन, शुक्राना करने का दिन। 8:23 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। और अभी बात करें अगर तारीख की, तो आज है 3 जुलाई की सुबह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ जाइए दिल से दिल तक साथियों, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो दिल से दिल तक वाला है। और जब ये कनेक्शन दिल से दिल तक का बनता है तो सुबह अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। देखिए दोस्तों, जहाँ जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहीं कहीं और बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन आज की सुबह उन सारी प्रॉब्लम्स को टाटा गुड बाय करने के लिए आ गई है, क्योंकि हर दिन का सूरज हमें ये याद दिलाने आता है कि आज का दिन कल से पावरफुल है, कल से ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस आप जो है आज की सुबह का आनंद लीजिए। अच्छे अच्छे गाने हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं और खूब सारी पॉजिटिविटी है जो आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं। आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पे आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। जी हाँ साथियों, अब से लेकर 10 बजे तक आपके साथ रहूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी ढेर सारी दिल से दिल तक। तो देरी किस बात की है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जी। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं 9837896896। ये वो स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिसके जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ आज की सुबह और कर सकते हैं हमसे अपने दिल की ढेर सारी बात। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सफर के खूबसूरत गीत के साथ। उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी आज के दिन के बारे में, और आज का दिन क्यों खास से क्या स्पेशल है आज की तारीख में, सब कुछ आपको पता लगेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। रुक जा, अब आप यहीं रुक जाना, कहीं और बिल्कुल मत जाना। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अलका याग्निक एंड शानुदा की आवाज में निकल गया है आपकी रेडियो सेट पर आज की सुबह को ऑसम बनाने के लिए, फ्रॉम द फिल्म फूल और कांटे का ये बेहतरीन ट्रैक। इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे श्रोताओं। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं नदीम श्रवण, लिखा है रानी मलिक जी ने।
1: बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है।
0: इसी गाने को सुनते हुए अपनी मॉर्निंग को करेंगे सुपर डुपर लाउड।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
4: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत ही खूबसूरत गाना उदित साहब और अलका याग्निक जी ने गाया, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक जिसको सुन के आप सभी के चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल आ गई होगी, मुझे पूरा यकीन है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना देसी रेडियो जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाँ जी दीदी जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी दीदी चाय बनाने में बिजी है, चलो आप चाय बनाओ, बाकी जो लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं आप ऑफिस के लिए निकलिए भाई, ऑल द बेस्ट। आपकी सुबह को झकास बनाने ढेर सारी बातों के साथ आनंद ने दस्तक दे दी है आपके घरों में। भैया आपके फैमिली का हिस्सा है, आपके छोटे से रेडियो सेट पे डेली आता हूं मंडे टू सैटरडे। आज दिन है फ्राइडे का, यानी शुक्रवार का दिन है। शुक्राना कीजिए उन लोगों का जो आपकी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपकी लाइफ में जब भी आप कभी परेशान होते हैं ना तो एकदम फरिश्ते बन के ऐसा लगता है खुदा ने हमारे लिए ही इनको भेजा है। वो तुरंत आपकी जिंदगी में हाजिर हो जाते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम को छू मंतर कर देते हैं। आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा दोस्त या फिर ऐसा कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा पड़ोसी तो जरूर होगा जो आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आपको किसी ना किसी सिचुएशन से बाहर निकाल ही लेता होगा। आई एम श्योर या आप खुद भी हो सकते हैं। तो आज का दिन शुक्राना करने का है, उन लोगों को जरूर थैंक यू बोलो। फिलहाल आज का बहुत ही सुंदर विचार कहते हैं कि सुनना सीख लोगे तो सहना सीख जाओगे, सुनना सीख लोगे तो सहना सीख जाओगे, और अगर सहना सीख लिया तो यकीन मानिए फिर

जबकि दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बरसात होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मॉनसून ने दस्तक दे ही दी है। हालांकि बच्चे तो स्कूल के लिए रेडी हो चुके होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं यार, उनको जाने दो। जो बच्चे आज पहली बार स्कूल जा रहे हैं, मतलब जिनकी छुट्टियां कंप्लीट हो गई, जो अभी 1 जुलाई या 2 जुलाई को नहीं गए थे, आज 3 जुलाई को जा रहे हैं, उनको ऑल द वे बेस्ट। कीप ऑफ द डे, ऐसे ही अपने दिन को मनाओ और अच्छे से स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ सब डिस्कस कर रहे हैं कि हमने छुट्टियों में कहाँ गए, कहाँ घूमा, क्या खाया। सारे बच्चों का यू नो यही एक होता है कि जब आप आपस में मिलते हैं, नई क्लास, नए स्टूडेंट, नए फ्रेंड्स, नए टीचर्स, की वाइब भी अलग होती है यार। तो जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए, उनको ऑल द बेस्ट। और बाकी अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आपको भी ऑल द बेस्ट। और आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन क्या स्पेशल है, डेफिनेटली उस पर हम चर्चा करेंगे। बिकॉज आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। भैया पीतल नगरी का रेडियो सुन रहे हैं आप। 8:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में, यानी कि 8:41 का समय हो रहा है। मैं अभी लौट कर आता हूँ, उसके बाद बात करूंगा आज के दिन के बारे में, मतलब आज का दिन क्यों स्पेशल है, आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज की तारीख में। डेफिनेटली हम आपको बताएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। नीतू जी मेरे साथ जुड़ गई हैं लाइन पर, ढक्का से लिखती हैं, राधे राधे आनंद जी, आप कैसे हैं, मेरा नाम नीतू सिंह है। एंड ये लिखती हैं, हम आपको सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही अच्छे सॉन्ग भी प्ले कर रहे हो आनंद, थैंक यू सो मच जी, आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमें मैसेज किया इतना टाइम निकाल के, थैंक यू सो मच नीतू जी। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम शी इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट रेडियो लिसनर, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, पुराने लिसनर कहीं भी चले जाएं लौट के वापस अपने स्टेशन पे आ ही जाते हैं। लिखते हैं, बहुत ही अच्छा शो करते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग सबकी बिंदास हो जाती है, और एक बार फिर से आपको वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच नीतू जी। ये जुड़ी है लाइन पर ढक्का से, अगला मैसेज आपका हो सकता है, व्हाट्सएप करो मुझे।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
0: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
0: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
0: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
9: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
10: भैया आज आनंद को सुन रहे हैं आप, बिल्कुल गुनगुनाना और बजाना दोनों ही बहुत जरूरी है। और अभी हम आपके मुरादाबाद शहर के बारे में ढेर सारी बात करने वाले हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ, मैं जस्ट अभी आता हूं लौटकर, फिर उसके बाद बताता हूं आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्या कुछ खास है आज की तारीख में, इस पे हम डिस्कस करेंगे ऑन माय शो। फिलहाल आपकी जो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपके संदेश को शामिल करने वाला हूं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए आपके शहर का अपना मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। चलिए एक और लवली ट्रैक, उसके बाद में जल्दी से वापस आता हूं, फिर आपको बताता हूं आज के दिन के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर आज की सुबह। उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी एक बार फिर से आ गए हैं आपकी मॉर्निंग को रिचार्जेबल बनाने।

क्या बात है यार, कमाल की गाने आप सुनते हैं आनंद के साथ। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इस वक्त स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:55। देखो, समय को ऐसे लगता है जैसे पंख लगे हो, बहुत तेजी के साथ समय भागता है दोस्तों। अभी तो जैसे मैंने दस्तक दी थी और कितनी जल्दी 9 बजने वाले हैं, आई कांट बिलीव दिस। एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे एंड जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट होता है, क्यों स्पेशल है आज 3 जुलाई, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आपके साथ। हर दिन का श्रोताओं इतिहास बहुत खास होता है, हर दिन कुछ न कुछ स्पेशल होता है एंड ऐसे ही आज का दिन है। एंड आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन 1928 में लंदन में दुनिया की पहली बार जो रंगीन टीवी थी यानी जो कलर टीवी का कार्यक्रम था वो प्रसारित किया गया था आज ही के दिन। हाँ जी श्रोताओं, देखिए मैं बताता हूँ ना, हर दिन कुछ न कुछ तो डिफरेंट होता है। तो आज 3 जुलाई का जो दिन है, जो इतिहास है, वो बहुत ही खास है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज ही के दिन सन 1928 में आज ही के दिन लंदन में दुनिया का पहली बार रंगीन टीवी यानी कि कलर टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। श्रोताओं, इसके अलावा दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी मनाया जाता है। एग्जैक्टली। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल डेज हैं जो आज सेलिब्रेट किए जाते हैं। बहुत सारे कमाल के कलाकारों का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हर दिन बहुत ही खूबसूरत इतिहास होता है, हर दिन बहुत ही खूबसूरत वाइब होती है। एंड हमारी भी कोशिश होती है कि हम हर दिन की जो वाइब है वो सब कुछ आपको बता सकें इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते चले 1972 में आज के दिन जो है एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हुई थी जिसके बारे में मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में। ये एक इसको हम अपने यू नो पेंडिंग बैग में डाल के रखते हैं, बाद में इसको निकालेंगे, पिगी बैग में हम इसको रख रहे हैं। फिलहाल आज के दिन और क्या कुछ खास रहा मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। न्यूयॉर्क में दलितो का जो सम्मेलन था वो शुरू हुआ था। एंड आज ही के दिन आचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त हुए श्रोताओं सन 2017 में। और आपको बताते चले, आज ही के दिन बहुत स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज जन्म हुआ था महावीर चक्र से सम्मानित तो वीर भारतीय सैनिक दिगेंद्र सिंह का 1969 में आज ही के दिन। और जो भारतीय निशानेबाज हैं आरती सिंह राव, उनका भी जन्म हुआ था 1979 में आज ही के दिन। श्रोताओं, एंड आपको बताते चले 1941 में अंदूर गोपाल कृष्णन जो मलयालम सिनेमा और भारत की छोटी फिल्म निर्माताओं में से एक रहे, इनका भी जन्म हुआ श्रोताओं आज के दिन। तो देखिए ये आज के दिन से जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें जो हमने आपके साथ साझा कर दी है इमीडिएटली बिना किसी देरी के इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।

और एक और चीज आपको बता दें, आज के दिन 1951 को न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडल का जो है आज के दिन जन्म हुआ था श्रोताओं। एंड टॉम क्रूज का भी जन्म हुआ जो हॉलीवुड की जाने माने अभिनेता हैं, 1962 को उनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़ी विशेष बातें जो मैंने आपके साथ साझा करी। और इसी बीच हमने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज बताई, पहला ये कि आज ही के दिन लंदन में पहली बार कलर टीवी का कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, एंड सेकेंड आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे भी जरा सी देर में, एंड इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचेंगी हौले हौले। फिलहाल स्टेशन क्लॉक का वक्त मैं बता देता हूँ फटाफट, 8:58 हो गया है, 8:58, सिर्फ दो मिनट बचे हैं जब हम 9 बजे वाले आर में एंटर होंगे। एंड आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन भी पूछना है मुझे फटाफट से इसी स्टेशन पर। तो देखिए, ये जो बातों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कुछ स्पेशल जो है हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं 9837896896 पर। ये मेरे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। फिलहाल अभी यहां पर एक और छोटा सा ट्रैक, उसके बाद मैं लौट कर आता हूं फटाफट से। कुछ मैसेज मेरे पास पहुंचे, रिहाना जुड़ चुकी है मेरे साथ, रानी नागल से लिखती हैं गुड मॉर्निंग, कश्मीर से महराजुद्दीन साहब जुड़ गए हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। बबली अनजान गीता कश्यप जी लिखते हैं आनंद सर गुड मॉर्निंग, सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को मेरी ओर से हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं आज की सुबह। विकी सागर जी लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, विकी भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। साथ में जुड़ चुके हैं चमन लाल साहब पुतली घर रोड से मेरे साथ इसी स्टेशन पर।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाहे चाहे चाहे
5: बिंदास मॉर्निंग,
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
6: हाय दी आनंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
9: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
10: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
9: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: कॉल 9045912348।
11: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
12: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
13: सुबह के 9:04 हो गए स्टेशन क्लॉक में। अगर आप दिल्ली रोड पे हैं या फिर आप जा रहे हैं स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं कांच रोड, या आप जा रहे हैं गुरट्टी की तरफ, आप पीली कोठी है, आप जहां भी जा रहे हैं आप बस पहुंचिए जहां भी आप पहुंच रहे हैं, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर कहीं जाम शाम लगा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कहीं ट्रैफिक आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का है तो डेफिनेटली आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप मुझे अपडेट कर सकते हैं यार, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मौसम तो है ही औसम यार, लेकिन इस औसम वाले मौसम में अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो मज़ा आ जाता है। और अच्छी बातों से मुझे याद आया कि कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए। जैसे आजकल ये जो हमारे ई रिक्शा वाले भैया ना, इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है। इनफैक्ट मुरादाबाद का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जो यहाँ के एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने कुछ उनकी हेल्प वगैरह भी की है इनफैक्ट, और ये जो मैटर है ये बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट इस पर डेफिनेटली रोक होनी चाहिए। वैसे कितने लोगों को इसके बारे में पता है, जो ई रिक्शा चलते चलते बीच में ही रुक जा रही है, उनकी बैटरी को हैक कर लिया जा रहा है, उनकी रिक्शा को ऑफ कर दिया जा रहा है। अगर ये आप में से किसी ने ये चीज़ सुनी है या देखी है या आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा व्हाट्सएप करके 9837896896। वेरी वेरी केयरफुल, जो लोग ऑटो ड्राइवर हैं, जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मिनी मेट्रो चलाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, भाई ज़रा आप भी चीज़ों को सोच समझ के ही करें। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, आपको तो कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं यार, मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी बैड यार, ये होना नहीं चाहिए। बट आई डोंट नो लोगों को क्यों इन चीज़ों को करने में मज़ा आता है यार। आप किसी की रोजी रोटी ख़राब कर रहे हो, इट्स नॉट गुड यार। ये आप मज़े के लिए कर रहे हो, लेकिन हो सकता है किसी का घर उसी चीज़ से चलता हो, तो आई थिंक डोंट डू दिस यार, ये करना ही नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ो, ये सब चीज़ें मत करो। आप किसी के साथ ऐसा प्राइंग ही क्यों कर रहे हो जिसमें सामने वालों को दिक्कत हो। अभी जो वीडियो मुरादाबाद का वायरल हुआ है वो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है, दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर वीडियो, एंड उसमें वो भाई साहब कितना ज़्यादा अपसेट है, परेशान है, रो रहे हैं बेचारे, वो उन्होंने रेंट पे अपना ऑटो रिक्शा लिया है, एंड वो वीडियो बहुत पॉपुलर हो गया इनफैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए मज़े मजाक भी कर रहे हो तो मतलब ठीक है, आप उसके साथ करो ना जो आपको जानता है, आप ऐसे किसी के साथ भी रैंडमली कर दे रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। कोई बेट ऐप करके आया है, एंड ये ऐप है जो ई रिक्शा को जो है एकदम से बंद कर देता है चलते चलते, एंड पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। कई वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस ऐप की मदद से कुछ ई रिक्शा को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके एंड उनकी पावर सप्लाई बंद कर दी जा सकती है, एंड इसके बाद जो है बहुत सारे रिक्शा चालकों की टेंशन भी बढ़ गई। इनफैक्ट ये जो BATBMS है, क्या बेसिकली ये बैटरी मास्टर सिस्टम है बेसिकली, एंड ये एक कोई हैकिंग ऐप बताया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि हैकिंग ऐप है ही नहीं, अलग अलग तरीके के लोग अपनी अपनी प्रोटेक्शंस दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हो ना हो डजेंट मैटर, आपने क्या करना है ना भाजी, आपने जो है अगर कोई इंसान परेशान है तो उसकी हेल्प करनी है, ना कि उसे परेशान करना है ना, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है। और बाकी देखो यार, सबका घर चलना चाहिए, सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, है ना, तो इस तरीके की प्राइंग और इस तरह की चीज़ें ना ही करो तो बेटर है। बट ये जो इन्फ्लुएंसर ने किया है, उनकी हेल्प करी है, कैसे उन्होंने हेल्प करी है, क्या क्या बेसिकली उनके दिमाग में एक थॉट आई, उनसे भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। एंड बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार कोई भी चीज़ को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रैंक हो, मजाक हो, कि सामने वाले को दिक्कत हो जाए, है ना। एक रेडियो पे बैठ के मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए। अगर ये शहर का मुद्दा बन रहा है तो ये हमारा भी मुद्दा है, हमें भी इस पर बात करनी चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ यार मत करो, बहुत गलत है ये। चलिए बाकी अगर कोई ई रिक्शा ऑफ किसी ने कर दिया तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, इस पर डेफिनेटली मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे करूंगा अभी थोड़ी सी देर में जब लौट कर आऊंगा। तो बाकी कुछ और कड़क अपडेट हैं जो आपका आप तक पहुंचती रहेंगी इसी चैनल पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाँ जी, आप सभी का वेलकम बैक इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आर जी आनंद को आप सुनते हैं। और अगर आप भी कुछ अपने ओपिनियंस रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, 9837896896 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। एंड फिलहाल आगे बढ़ेंगे एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ, करेंगे इस घंटे की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बहुत ही सिंपल है, 9837896896, ये वो नंबर है जिसके जरिए आप हमारे साथ आज की सुबह बिल्कुल एब्सोल्युटली जुड़ सकते हैं यार।

0: ऐसी चढ़ गई।
1: बेफिक्री का गाना भी आपने एंजॉय किया, बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक, और ऐसे गाने सुन के सच में सुबह अच्छी हो जाती है। भाई साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे भी अच्छी गानों का नशा चढ़ जाता है। दिलजीत दोसांझ का स्टेटमेंट आया है जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे आज की सुबह। क्या स्टेटमेंट आया है भैया? फाइनेंशियली जो बात है वो कर रहे हैं पब्लिकली दिलजीत दोसांझ। उन्होंने कहा है कि भैया मुझे अपने बैंक बैलेंस के बारे में कुछ नहीं पता और मेरा अपना बैंक का कोई एक्सेस नहीं है, पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कब जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। एंड उसके बाद उन्होंने लिखा है अगर कुछ खरीदना है तो मैं अपनी टीम से पूछता हूँ कि भैया जो है मुझे क्या लेना है, और मेरी टीम ही मुझे सजेस्ट करती है क्या लेना है और कहाँ से लेना है। तो भैया स्टेटमेंट जो है उन्होंने दे दिया है, और आई डोंट नो कि स्टेटमेंट क्यों आया है। आई डोंट नो भैया, लोग कुछ भी पूछ रहे होते हैं, फिर कभी कभी सेलिब्रिटीज भी बड़े इरिटेट हो जाते हैं यार। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे कल मैंने एक क्लिप देखा जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल। यू नो जब भी हम कभी किसी शो करने जाते हैं, किसी स्टेज पे हम परफॉर्म करने जाते हैं, तो यूजुअली आपने भी देखा होगा अक्सर जब हम लोग माइक टेस्ट करते हैं तो 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 5 6 7 यू नो कैन यू हियर मी, इस तरीके से हम चेक करते हैं। बट एक बॉलीवुड के वेरी वेरी पॉपुलर एक्टर जिन्होंने मतलब स्टेज पे जब उनको माइक दिया गया तो उन्होंने माइक चेक करने के लिए अपने गले को साफ करा माइक पे खड़े होकर, ऐसे करके उन्होंने किया और उनका माइक टेस्ट हो गया। यानी ये वीडियो भाई सब बड़ा सर्कुलेट हुआ, एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर एक्टर इन बॉलीवुड, एंड आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई। एंड अब ये वाली क्लिप बहुत वायरल हो गई। खैर ये सब चीजें तो चलती रहती है, मुझे लगा इंटरेस्टिंग है आपको बतानी चाहिए। एक कंट्री में एक ऐसी जॉब है जहां पर जो है ना आप पैसे ले सकते हो, वो भी कैसे, कैन यू इमेजिन यार कि ये कमाने का तरीका कैसे हो सकता है। मतलब मुझे भी जब ये मैंने सुना तो मुझे लगा भाई क्या है ये, क्या चल क्या रहा है। अलग अलग कंट्रीज में कुछ भी होता है, मतलब आप खुजली करके पैसे कमाते हो, आप किसी को हक करके पैसे कमाते हो, किसी का दुखड़ा सुन के पैसे कमाते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है भाई। इस कंट्री में कान पे थप्पड़ लगा के पैसे कमाए जाते हैं, कैन यू इमेजिन यार, कान पे चाटा लगाओ और पैसे कमाओ, मतलब क्या चल क्या रहा है, आई कांट बिलीव दिस यार। एंड भाई कौन है ये बंदा जो कह रहा है कि मुझे कान पे आके थप्पड़ लगाओ। पहली बात तो वो थप्पड़ क्यों लगवा रहा है, लगवा रहा है उसके बाद वो पे भी कर रहा है। थैंक गॉड यार अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन इधर तो लोग फ्री में कंटाप दे देते हैं यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एंड और कंट्रीज में देखा जाए तो ऐसे भी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, अनबिलीवेबल। बट ये तब होता है यू नो एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई उनको स्लैप देता है उनकी ईयर पे तो उसके बाद वो उसको पे करता है, वहाँ के लोग उसको पे करते हैं। एंड आई डोंट नो ये कैसा अनलॉजिकल तरीका है भाई, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस पे कोई गाना बना तो गाना है ना वो अपने बॉलीवुड में कांटा लगा, कान पे थप्पड़ लगा, कान पे थप्पड़ लगा। खैर एनीवेज ऐसी बातें मैं करूँगा नहीं, ये मुझे शुभा नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बस कुछ भी चल रहा होता है मुझे लगा है थोड़ा सा फनी है, देन मुझे लगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने आपके साथ शेयर किया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया लंदन में पहली बार कलर टीवी का जो प्रसारण था वो आज के दिन हुआ था, है ना, मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। तो मैं अगर आपसे पूछूं, आई वांट टू आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने पहली बार कलर टीवी को कहां देखा था, मतलब आपने कब देखा, आपके घर पे पहली बार जब कलर टीवी आया तो उसमें आपने क्या देखा, कोई पिक्चर देखी, कोई आपने गाना देखा, कोई आपने यू नो न्यूज देखा, क्या देखा था, कुछ याद है? डू यू रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने कुछ डिस्कस किया था वर्ल्ड टीवी डे पे, बट आज तो वर्ल्ड टीवी डे नहीं है, जस्ट नॉर्मली मैं आपसे पूछ रहा हूं जब आपके घर में जब कलर टीवी आया तो आपने उस पर सबसे पहले क्या देखा, आपको याद भी है वैसे आपके घर में कलर टीवी कब आया था? पहले तो ऐसा होता था कि एक घर में कलर टीवी आ रहा तो चार पड़ोसी एक ही के घर में जाके टीवी देख रहे होते थे, यू नो बच्चे बड़े वो सारे लोग। और जब कभी कभी नया नया टीवी हमारे नेबर्स के पड़ोसियों के घर में आता तो बड़ी एक्साइटमेंट हमें भी होती थी, भाई उनके घर पे कलर टीवी आया, चलो चलते हैं पिक्चर देखने। मुझे आज भी याद है, रिमेंबर मैंने जब लास्ट टाइम कलर टीवी पे एक मूवी देखी थी तो वो इश्क दी गली विच नो एंट्री, उस मूवी का नाम मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, पिक्चर का नाम मुझे शायद यही है, वो उस पर वो गाना चल रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, भाई साहब गजब कमाल, वो मैं भूल ही नहीं सकता। सो वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपके घर पर अगर कलर टीवी कभी आया या फिर आपने किसी पड़ोसी के घर देखा तो आपने कलर टीवी सबसे पहले क्या देखा, या आपके घर पे कब कलर टीवी आया था, प्लीज टेल मी। पहले तो वो एक बड़े वाले टीवी आते थे, उनमें शटर होते थे ना, ऐसे दो गेट लगे होते थे प्रॉपर लकड़ी के, उसको बंद करके टीवी देखते थे। शायद वो कलर टीवी तो नहीं था, वो बड़े वाले बॉक्स वाले टीवी आते थे, मुझे याद है वो हमारे एक रिलेटिव के घर पे था, बहुत बड़ा सा टीवी था, यू नो मतलब देख के लगता था भाई इसके शटर वटर पूरे, मतलब एकदम पैक था, घर टाइप का टीवी था वो। आई एम श्योर आप में से बहुतों को याद आ गया होगा। चलो यार फिलहाल ऐसी बातें मैं करते रहता हूँ जो थोड़ी नॉस्टैल्जिया है, जो थोड़ी 90s वाली मेमोरीज में आपको लेके चले जाएं, एकदम फ्लैश बैक में जू करके। 9:21 हो गए स्टेशन क्लॉक की घड़ी में। अभी आगे बढ़ते हैं, आप मुझे बताओ आपके घर पे कलर टीवी पहली बार कब आया, आपको याद है, या फिर जब आया तो आपने सुबह सबसे पहले क्या देखा था, आपको आज याद है कुछ ऐसा, यू नो आपने कुछ देखा हो या आपको लग रहा हो हाँ यार मेरे घर पर टीवी आया, मेरे पड़ोसी के घर आया तो मैंने ये देखा, जो भी आपको लगता है व्हाटएवर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे मैसेज करके बता सकते हो, हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। फिलहाल अब इंतजार नहीं कराऊंगा एक अच्छे से गाने का। इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पर।

0: Prima!
1: Maka nalayak kebeta.
2: Hanji, good morning, good morning. Namaskaram, kya hal chal?
3: Aap sun rahe hain Bindaas Morning. Bindaas Morning.
4: Bindaas Morning.
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: कोई मिल गया,
12: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है यार। जुत्ती ले दे, चूड़ियां ले दे, भैया देखो अभी सैलरी नहीं मिली है, मिल जाएगी तो ले देंगे। इससे जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं। 9:30 हो गए स्टेशन क्लॉक पे, आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। यस ऑफ कोर्स, ये वो स्टेशन है जहां पर हम होते हैं, आप होते हैं और ढेर सारे अच्छे गाने भी होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, कि भैया प्लास्टिक को हटाना है और कपड़े के थैले को अपनाना है ना। बट हम लोग ऐसा करते हैं, दो चार दिन तो हम उस चीज़ को अपने जहन में रखते हैं, उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, लेकिन वापस से हम उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्रकृति के अगर आपको करीब जाना है तो आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि घर के बने हुए कपड़े का थैले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आप सब्जी लेने जाएँ, मम्मी के साथ जा रहे हैं, केले जा रहे हैं, जब भी आपको लग रहा है कि आपको सब्जियाँ कुछ भी आपको ऐसा सामान लाना है, तो भैया आप जो है प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल जितना हो सकता है कम करें। मैं तो कहता हूँ भाई बिल्कुल ना करें, आपके घर में ही बने हुए जो कपड़ों के थैले होते हैं, हमारी मम्मियाँ इतनी ज़्यादा स्टाइलिश करके थैले बनाती हैं, इतनी क्रिएटिव होती हैं हमारी मदर सिस्टर्स, ऑलरेडी वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती रहती हैं, जो वेस्ट कपड़े होते हैं उनसे कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी कर ही देती हैं। तो अगर आपके घर पर भी कपड़ों के थैले हैं तो आप उनका इस्तेमाल करो, कपड़ों के बैग का इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो भैया जब जब कपड़ों का थैला अपनाओगे तब तब प्रकृति के और करीब आते जाओगे। तो भैया हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, और ये इसीलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि हम जो है इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना सकें और एक जो अवेयरनेस है वो भी हमें मिल सके। तो आज के दिन यानी कि हर साल 3 जुलाई को जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन। तो हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जितना हो सकता है आप घर के बने जो अपन के कपड़ों वाले बैग्स हैं अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आई थिंक बेस्ट होगा। फिलहाल आप आनंद के साथ सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन बिंदास मॉर्निंग, और अभी यहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस आपके मिल रहे हैं मुझे, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग फैबुलस मैसेज के लिए। मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि आपके घर पर लास्ट टाइम कलर टीवी कब आया था, या आपने उस कलर टीवी पे क्या स्पेशल देखा था, आप मुझे मैसेज करके डेफिनेटली बताएं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचे हैं। मेरे पास पल्लवी जी का मैसेज आया, उन्होंने लिखा है आनंद जी टीवी कब आया था ये तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन टीवी पे मैंने क्या देखा था ये मुझे आज भी पता है। एक स्त्री टीवी सीरियल आता था दूरदर्शन पे, वो मैं बहुत देखती थी। एंड एक मैसेज मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज रमन। रमन लिखते हैं मेरे भाई की शादी पे कलर टीवी आया था, उसके बाद हमारी पूरी फैमिली कलर टीवी पे ही हम लोग अपने फेवरेट्स सीरियल्स और मूवीज देखते थे, बहुत मजा आता था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय ब्रदर, ये ब्यूटीफुल मैसेज। एक मैसेज और आया, गुड मॉर्निंग आई एम शिखा, हेलो हेलो मैम, हाय कैसे हैं आप। शिखा लिखती हैं आनंद जी मेरे घर में कलर टीवी जब आया था पहली बार तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर अच्छे अच्छे गाने हम देखते थे, और हम लोगों ने रंगोली वाला भी बहुत देखा है, चित्रहार। अरे वाह क्या बात है। एक मैसेज मेरे पास और पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हैं। ये मनप्रीत मुझे मैसेज करते हैं, लिखते हैं आनंद आपकी गाने और आपकी आवाज़ दोनों ही बहुत अच्छी होती है। देखो मैं अपनी आवाज़ में तो नहीं गाता हूँ, आई एम वेरी क्लियर, ये जो गाने आप सुनते हो वो ओरिजिनल सिंगर की आवाज़ में सुनते हो यार, मैंने अगर गाना शुरू कर दिया तो रेडियो बंद कर दोगे आप लोग, तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो। कुछ और व्हाट्सएप आए हैं, डेफिनेटली अभी उनको शामिल करेंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आई विल बी राइट बैक। 9:33 हो रहे हैं यानी कि 9:33 हो गए स्टेशन की घड़ी में, बस अभी मैं लौट कर आता हूँ, ठीक है जी।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट, विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
6: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
0: क्या बात है जी, देखो मेरी एंट्री हो गई है। वंस अगेन वेलकम बैक है आप सभी का, ये फ्राइडे की सुबह है, वीकेंड वाली वाइब है, दो दिन और काम करेंगे, छुट्टी का दिन आ जाएगा, लेकिन छुट्टी पे भी छुट्टी नहीं होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, क्या ही कर सकते हैं यार हम, जो मतलब बाहर अखंड सिंगल लोग होते हैं ना जो बाहर रह के काम करते हैं, उनको पता है यार असली जिंदगी का जो स्ट्रगल है वो क्या है। कोई मुझसे पूछे, कोई मेरे जैसे उन लोगों से पूछे जो बेचारे बहुत दूर घर से बाहर होते हैं और बहुत सारा सफर कर रहे होते हैं। एनीवेज आई एम वेरी एंजॉय, अ लॉट एंजॉय, मुझे पसंद है, आई लव माय जॉब एंड आई लव माय वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ मिली है यार, जितना हो सकता है ना बढ़िया वाला काम करो, जिंदगी को फुल ऑन झकास बनाओ, अच्छी चीजें करो, बिलीव इन योर सेल्फ, क्रॉस योर फिंगर, अच्छा सोचो, अच्छा होगा लाइफ में। और जो जब आप अच्छा सोचते हो ना, जो आप सोचते हो वो आपकी पर्सनालिटी में निकल के बाहर आता है और उससे ही फिर लोग आपको कई बारी देखते हैं, आपको जज करते हैं, कई बारी आपका ऑरा ही आपकी पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो बस अच्छा सोचो यार, सोच बदलोगे तो अपने आप नजारे बदल जाएंगे। वो कहते हैं ना, वो ये कहावत है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं बनी है, इनको अप्लाई भी किया करो यार। आगे बढ़ते हैं, कुछ व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचे हैं, फटाफट से उड़ते फिरते जरा समझते हैं ये क्या पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरे एक वॉइस नोट आया है मेरे बड़े प्यारे लिस्नर का।
7: जो नसीब में है वो चलकर आएगा, नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है, अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। जो है आज उसी में सबर करो और जीवन को अच्छे से जी लो। नमस्कार, राधे राधे, बिंदास मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और मैं आपका दोस्त भूपि शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। सुनते रहिए मुरादाबाद 89.6, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो और भेजते रहो अच्छे अच्छे मैसेज, वॉइस नोट नंबर 98-378-96-896। जी हाँ, वही नंबर जो आपकी आवाज आपके मैसेज को पहुंचाएगा पूरे शहर, पूरे देश और पूरे संसार तक। नमस्कार,
0: थैंक यू सो मच भूपी जी, आपको भी नमस्कार। बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने किया, आप हमेशा इतना बढ़िया मैसेज करते हैं। कभी आप भी ट्राई करो यार, अपनी आवाज में बोलने का कोशिश तो करो, जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक बार आप ट्राई करेंगे दिल से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई नो दैट आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, सुबह सुबह आपका बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप एक बार कोशिश करोगे तो जरूर आपको अच्छा लगेगा। जानी आप अपनी आवाज भेज के तो देखो कैसे मजा आता है आपको। एनीवे, चलो बैक टू पॉइंट, मैं आपसे वो कलर टीवी डिस्कस कर रहा था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं, थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल मैसेजेस एवरीबॉडी, इतने प्यारे मैसेज जाप करते हैं। हेलो आनंद जी, राधे राधे, नमस्ते। मेरे घर में सन 1990 में कलर टीवी जो है आया था एंड ये लिखती हैं, मैंने सबसे पहले मूवी देखा था एंड साथ में हम लोग हमारे घर पे VCR भी आया था और मेरे पास भी कुछ कैसेट्स मुझे मिले हैं रिसेंटली, डेफिनेटली मैं उसको शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। कुछ कैसेट्स मुझे मिले हैं जिसमें वो एक रील टाइप का था ना, बचपन में उसको खेलते भी थे उसके साथ, जो कैसेट्स होते थे वो कैसेट्स मुझे कुछ मिले हैं हमारे घर पे एंड कुछ DVD प्लेयर, वो जो DVD में हम कैसेट लगाते थे गोल वाली कैसेट्स, हाँ वो भी मुझे मिले एंड मतलब मैं जब उनको देखा तो बड़ा मजा आया मेरे को। वो कैसेट्स मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा एंड बड़े अल्टीमेट से लग रहे थे यार वो देखने में। आगे लिखती हैं अलका वर्मा जी का ये मैसेज है, हम सब ने उसमें मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन जी की और जब हमारे घर पे टीवी आया था हम लोग बहुत हैप्पी थे, क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच मैम। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, आनंद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, सुबह सुबह आपको सुन के हमारी मॉर्निंग बहुत ही झकास हो जाती है एंड यू आर एब्सोल्युटली अल्टीमेट होस्ट, आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, क्या बात है यार, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, गजब की बातें करते हैं यार। हाय गुड मॉर्निंग मयंक शर्मा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, पीतल नगरी से मयंक जी जुड़े हैं एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा है तमन्ना का, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। साथ में ये कल्याणपुर से मैसेज आ रहा है मुरादाबाद से दुर्गेश सैनी जी का, दुर्गेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आज की सुबह। अयुब अली जी रामपुर से जुड़ गए हैं मेरे साथ और ऐसे ढेर सारे मैसेज पहुंचते जा रहे हैं आप लोगों के, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और अच्छा रिसेंटली ना एक और मैंने अपडेट पढ़ी कि जो ये शादी वाली ऐप्स होती है ना जिसमें हम लोग शादी के लिए अपना ID बना के रखते हैं कि भैया चलो अब किसी को डेट शेट करेंगे वहाँ पे जाके, शादी के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेते हैं, अब ऑनलाइन ही चलो रिश्ते ढूंढते हैं, आजकल तो बहुत सारी ऐप आ गई, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक स्टोरी बड़ा वायरल हो रहा है, यू नो एक लड़का लड़की जब इस ऐप में आते हैं तो ऑफकोर्स वो डेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि चलो भाई अब शादी की बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की जो वहां पर सिर्फ ये पता करने के लिए बैठी हुई है कि भैया कौन सा रेस्टोरेंट फेमस है, कहाँ का फूड फेमस है, मतलब वो वहां पर डेट कम करती है, वो फूड के बारे में ज्यादा सर्च करती है, वो जब भी किसी से कनेक्ट होती हैं तो उसके बाद वो वहां पर पता करती हैं कि भैया कहाँ का रेस्टोरेंट फेमस है, कहाँ पर फूड फेमस है। मतलब सोचो आप, वहां जहां लोग शादी की बात करने आ रहे हैं, वहां ये मोहतरमा खाने पीने की बातें करने के लिए बैठी हुई है। भाई देखो यार, मतलब ये मत करो, ये तो गलत है। कोई इंसान की एक्सपेक्टेशन पे ऐसे तो पानी मत ही डालो यार। सामने वाला पर्सन आपसे वहां पे सिर्फ इसलिए रूबरू हो रहा है कि भैया चलो लाइफ को थोड़ा सा हैप्पी बनाते हैं, दो लोग मिलके शादीशुदी का प्लान करते हैं, लेकिन ये मैडम जी जो है उस ऐप में बैठ के खाने पीने की चीजें सर्च कर रही है। बताओ यार, मतलब चल क्या रहा है ये। वो सिर्फ इसलिए बैठी है यार, आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो, लेकिन वहीं पे जाके क्यों मतलब यार किसी का टाइम वेस्ट करना। मुझे लगता है कि ये भी मतलब कुछ अलग ही चल रहा है यार। और अभी तो एक वो प्रपोज वाला एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, ये एक जापान कंट्री का, उसमें एक लड़का लड़की मतलब क्रिएटिविटी वाली हद में प्रपोज कर रहे थे। मतलब वो एक ऐसे बिल्डिंग पर चढ़ गए और बिल्डिंग के कोने पर जाके खड़े हो गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क था, मतलब खतरा था। एंड उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्शन वैक्शन भी लिया उनके ऊपर। यार ठीक है, आप लोगों को कुछ नया करना है, पॉपुलर होना है, वायरल होना है, आप प्रपोज करो, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, लेकिन वो हद वाली क्रिएटिविटी करो ना यार।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है यार, वेलकम बैक यू वंस अगेन आनंद के साथ हैं। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे अच्छे गाने हैं, ढेर सारी अच्छी बातें हैं, सब कुछ आपको मिलता है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये फ्राइडे की सुबह है, 3 जुलाई की तारीख है। आज का एक कड़क सवाल जो है बहुत ही स्पेशल है। इट्स नॉट एक चुटकी सॉन्ग। इस गाने के अंदर थोड़ा सा आपको आज जो है कॉम्प्लिकेट लग सकता है, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप मतलब बहुत इजीली गेस कर लोगे आज आपको क्या करना है। बेसिकली गाना प्ले कर रहा हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा बहुत ही अल्टीमेट गाना है। अब इसमें शानुदा ने ना जैसे को बहुत बार रिपीट किया है, तो आपको क्या करना है इस गाने में ना जैसे काउंट करना है, मतलब जैसे जो है अनिल कपूर साहब कितनी बार बोल रहे हैं इस गाने में आपको वो काउंट करना है। देखो मैंने तो गिन रखा है भाई, मैं जब भी गाने शाने सुनता हूँ ना बड़े दिमाग से और ध्यान से दोनों से सुनता हूँ कि किसमें क्या चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। सो आज की सुबह आपको जैसे को यहाँ पे काउंट करना है। सो आपका जो टाइमिंग है आप शुरू होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाओगे तो सही जवाब पकड़ लोगे, बहुत सिंपल है। 3, 2, 1 गो स्टार्ट। इस गाने में जो जैसे वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है ये आपको गिनना है। तो टाइम अब शुरू हो रहा है, काम पे लग जाओ। 3, 2, 1 गो। वंस अगेन स्टार्ट।

Yes, ladies and gentlemen, आज थोड़ा सा मैंने दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन कर लिया है आपसे। अभी जो अनिल कपूर साहब ने आपके सामने गाना आपको सुनाया शानुदा की आवाज में, जो अभी आपने गाना सुना, इस गाने में जैसे जो है वो रिपीट हुआ है शब्द, वो जैसे शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है ये आपने गिनना है। पेन कॉपी उठा लो भाई, चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। मेरे को तो पता है कितनी बार हुआ है जैसे रिपीट शब्द। इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्राइडे की सुबह है आपके लिए। थोड़ा सा आज का सवाल टिपिकल हो सकता है, बट दिस इज वेरी इजी, दिस इज बॉलीवुड क्वेश्चन यार। इसके अंदर आपको बताना है, ये जो गाना प्ले कर रहा हूँ, एक लड़की को देखा तो, 1942 का बहुत ही प्यारा गाना है, 1942 का लव स्टोरी का ट्रैक है। इस गाने में जैसे कितनी बार रिपीट हो रहा है जरा ध्यान से सुनिए। 3, 2, 1, गो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, आई एम श्योर आप पकड़ लोगे। फिर से सुनो जरा।

कितनी बार जैसा बोला गया है इस गाने में, शानू दा ने कितनी बार जैसे शब्द को रिपीट किया है, यही आपको बताना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, कितनी बार, क्या लगता है आपको? टेल मी, आप मुझे बताओ जरा। 9837896896, मुझे पूरा भरोसा है कि मुरादाबाद वाली जो लोग है ना, बहुत ही कड़क है यार, वो डेफिनेटली मुझे इसका जवाब दे देंगे। तो जरा फटाफट से मुझे अपना सही जवाब पहुंचाओ, ठीक है जी। सवाल मैंने पूछ लिया है, अब एक बढ़िया से गाना, धांसू गाना प्ले कर रहा हूं, उसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड इमीडिएटली आप मुझे प्लीज मैसेज करोगे 9837896896 पर। अमेजिंग ट्रैक आतिफ असलम साहब की आवाज निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, एक और अमेजिंग ट्रैक, साथ में श्रेया घोषाल देंगी साथ, रमैया वस्तव भैया का ट्रैक, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, आई विल बी राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 99.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद विद यू। आज फ्राइडे है, वीकेंड है, अच्छे गाने ऑफ कोर्स आप सुनते हैं। हर दिन नए गाने होते हैं, नॉट रिपीट सॉन्ग। एवरी मॉर्निंग कोशिश होती है कि कुछ बेहतरीन गाने लेकर आऊं आपके लिए।

0: बहुत ही बढ़िया गाना फ्रॉम द फिल्म यबला पगला दीवाना से भी आपने एंजॉय किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम बताने का टाइम 10:01।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
0: कैसे सुबह के 10:00 यार पता नहीं चला। अभी बात करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी बर्थडे की, यानी कि आज 3 जुलाई को कौन कौन से फेमस पॉपुलर सेलिब्रिटीज का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फटाफट इमीडिएटली आपको बताता हूँ, आज 3 जुलाई है और आज ही के दिन जन्मदिन सेलिब्रेट होता है हंसी की क्वीन शानदार कॉमेडियन भारती सिंह का। भारती जी ने अपनी कॉमेडी और अपने बेहतरीन जो है सेंस ऑफ ह्यूमर से करोड़ों लोगों के चेहरे पर जो उन्होंने मुस्कान बिखेरी है, आज उनका बर्थडे है तो ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कॉमेडी क्वीन, इनको कहा जाता है भारती सिंह। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट भारती जी। बहुत ही कमाल की फैबुलस कॉमेडियन है, आज इनका बर्थडे है। तो आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है तो आप बहुत ही अमेजिंग एंड फैबुलस और बहुत ही चार्मिंग से दिखने वाली भारती जी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही और एक और खास कमाल के इंसान है जिनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग उट भारतीय क्रिकेट के, जिन्हें हम शानदार एक ऐसा इनका नाम ही काफी यार क्रिकेट की दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट हरभजन सिंह, आज उनका भी बर्थडे मनाया जाता है। यस, आज हरभजन जी का बर्थडे है, भारती का बर्थडे है और साथ में और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज का बर्थडे जो टीवी सीरियल वाले छोटे छोटे स्टार होते हैं उनका भी बर्थडे। हालांकि सब अपनी मेहनत से आज के टाइम पे अगर अपनी पहचान बना रहे हैं तो इट इज नॉट छोटा, सब लोग अपने आप में बहुत बड़े हैं और बहुत ही आइकॉनिक हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं यार, है ना। तो हम किसी को खैर ये तो नहीं बोलेंगे, वेल आज जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरभजन जी का बर्थडे है, क्रिकेट दुनिया में अपना नाम बनाने वाले, एंड साथ ही साथ कॉमेडियन भारती सिंह का भी बर्थडे है। तो इनके साथ अगर आज का आपका भी बर्थडे होता है वही हैप्पी बर्थडे। चलिए भैया 10:03 हो गए, मैं आपसे आज एक कड़क क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लास्ट मौका है आपके पास। एक गाना मैंने चलाया था जिसमें आपको एक छोटे से वर्ड को जो है रिपीट किया गया है, इस गाने के अंदर शानू ताने गाना गाया है, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। इस गाने में जैसा शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, लास्ट ऑप्शन है आपके पास 1942 लव स्टोरी का ट्रैक है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें जैसा शब्द इस्तेमाल होता है उस शब्द को आपको काउंट करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितनी बार जो है इसमें जैसे शब्द को इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे गलत आंसर आए हैं एंड आई होप इस बार आप सही आंसर दे दोगे। सो 3, 2, 1 गो स्टार्ट। आइडेंटिफाई करो जो शब्द है वो जैसे शब्द कितनी बार इस गाने में आ रहा है।

यस, तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 7 बार या ऑप्शन डी 9 बार। कितनी बार इसमें जो है जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, विच सिटी, कहाँ से आप मुझे मैसेज कर रहे हो ये भी आप मुझे बताओ। 9837896896 पे व्हाट्सएप करो, लेकर आता हूँ एक लकी सुपरस्टार को।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलान,
5: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: सारे लिस्नर आज मेरे साथ हो रहे हैं वाव। सबके लिए ही गाना है भाई आज की सुबह, क्योंकि सारे लिस्नर सारे वाव हैं यार। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, निकलिए अपने ऑफिसेज के लिए। मैं अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ अपने घर के लिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट टाइम हो गया मेरा। बिना खाए पिए इतनी एनर्जी आपके साथ यू नो शेयर करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक मेरा फास्ट होता है। बस आई एम टेलिंग यू, सुबह सुबह कुछ टाइम भूखे भी देना चाहिए यार, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई फील पर्सनली। हाय हाय, बहुत ही अच्छा गाना है, जवानी तो इश्क होना है से ये। अच्छा, आज की सुबह मैंने आपसे बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा था। एक गाना था उसमें जैसे शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है ये आपको बताना था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कांट बिलीव दिस, सब लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। सही वालों की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, कम वालों की थोड़ी कम है, लेकिन सही वालों की बहुत ज्यादा है। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। एंड अभी इसी बात पे हमारे साथ एक लकी कॉलर को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। मैंने कहा था ना किसी एक की मॉर्निंग हम अच्छी और फैबुलस बना के जाएंगे, तो आइए जरा बात कर लेते हैं अपने लकी कॉलर से। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं?
1: गुड मॉर्निंग
0: जी। राधे राधे, कैसे हाल चाल है?
1: राधे राधे, ठीक है, आप बताइए।
0: मैं बढ़िया हूँ जी। एंड फाइनली बहुत दिन के बाद मैं आपकी आवाज़ रेडियो पे सुन रहा हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताओ पहले मुरादाबाद की जनता को।
1: मेरा नाम नीतू सिंह लाहिरपाल है।
0: जी जी,
1: नीतू जी, मैं और आप भी अच्छे हैं?
0: मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप इतने दिन से कहाँ गायब थी, हम थोड़े से नाराज हैं आपसे। आपसे हमारी शिकायत है, कहाँ आप चले गए थे?
1: मैं गई कहीं नहीं थी, और एक्चुअली जब छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चों का होमवर्क भी फोन पे आता है, जो रेडियो था वो खराब हो चुका है।
0: ओहो, बड़ी समस्याएं हो गई हैं।
1: बहुत सारी समस्याएं, एक फोन पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए नहीं सुन पा रही थी। लेकिन कभी कभी सुनती थी तो मैसेज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम हाउस वाइफ है तो काम ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल, और जब बच्चों की छुट्टियां हो तो उस टाइम पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा काम होता है।
1: हाँ, यही तो कि दोनों का होमवर्क आता था, बुक करते थे, अब किसी की कॉल आ गई वो भी रिसीव करनी है, और फिर टाइम निकल जाता था। आपका शो तो 7 से 10 ही आता है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, छुट्टियां भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, हम तो आते ही रहते हैं, आपके घरों का हिस्सा है, आज नहीं तो कल, सही है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: अच्छा, अभी जो वो गाना चल रहा था उसमें जैसे कितनी बार आया था, क्या लगता है आपको?
1: 7 बार आया था।
0: पक्की बात?
1: यस।
0: आपने ध्यान से सुना या नहीं ये बताओ पहले।
1: मैंने इस बार तो ध्यान से सुना, हमने ये मूवी कई बार देखी है, सॉन्ग भी।
0: लेकिन लेकिन लेकिन आज मैं आपको सच बता रहा हूँ नीतू जी, मुरादाबाद की सारी जनता ने आज ये गिल लिया होगा कितनी बार आया है, किसी को नहीं भी पता होगा तो उसने भी सुना होगा।
1: हाँ, ये बात सही है, क्योंकि इसमें आज विनर बनने का चांसेस था, तो सभी ने, मैंने भी थोड़ा ज्यादा गौर से देखा है।
0: हाँ,
1: और सॉरी सुना है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, एक्साइटमेंट हो रही है आपको। लेकिन लोग काम छोड़ छाड़ के ये सुन रहे थे कि जैसे कितनी बार आ रहा है, जरा हम भी तो दिमाग लगा के सुने।
1: वो विनर बनना है तो सुनना ही पड़ेगा। और
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जाहिर सी बात है, अच्छा लगता है इस तरीके के आप जो क्वेश्चन लाते हो ना, तो सारे काम छोड़ के एकदम दिमाग को स्थायी कर दिया जाता है एकदम से।
0: चलो भाई जरा आप दिमाग लगाओ। वैसे गाना बहुत बार सुना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये भी सवाल हो सकता है।
1: रंगी था, बट बहुत अच्छा लगा आपका सवाल।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, इसका जवाब आपने बिल्कुल सही दे दिया है, तो आपका जवाब लॉक कर देना चाहिए मुझे लग रहा है ना।
1: जी, अगर आपको भी सही लगता।
0: चलो जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है, 7 बार ही था। मैं बिल्कुल गिन सुन के बहुत मेहनत करके लाया था, मैंने भी बहुत बार पहले सुना कि यार गलत ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है, 7 बार ही इसमें जैसे जो है बोला गया है। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, आपने देखी होगी जरूर ये पिक्चर।
1: जी, मैंने 2-3 बार देखी, मनीषा कोइराला और अनिल कपूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और गाना भी बहुत बढ़िया है ना।
1: गाना भी अच्छा है, बहुत अच्छा, काफी लंबा सॉन्ग है ये।
0: हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने बजाया नहीं, ताकि लोग बोर ना हो जाए।
1: बोर नहीं होंगे, अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, चलो बहुत बढ़िया। और आपका ब्रेकफास्ट हो गया?
1: हाँ, थोड़ा थोड़ा हो चुका है, लंच की तैयारी चल रही है।
0: चलो बहुत बढ़िया। मौसम कैसा हो रहा है बाहर का?
1: बाहर धूप खिली हुई है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तेज वाली तो नहीं है, बट अगर बारिश हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: चलो बहुत बढ़िया नीतू जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे बात करी, बड़ा मजा आया, और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड है ना।
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एफएम सुन रही हूँ, रोज सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, क्योंकि हम एफएम के साथ साथ जो घर का काम होता है वो भी करते रहते हैं,
0: और पता भी चलता रहता है देश दुनिया में क्या चल रहा है।
1: बिल्कुल, साथ में गाने भी मिलते हैं और जानकारी भी मिलती है, तो ये सारी चीजें रेडियो पे ही तो है एक साथ में।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाँ हाँ, घर पे
1: आओ किसी दिन, चाय पिएंगे।
0: ये तो मैं सुनना चाह रहा था कि भैया कब कब मुझे ऐसा बोला जाए कि आओ घर पे, क्योंकि इस चीज के तो हम बहुत मतलब आदि है, हमें अच्छा लगता है कोई ऐसे बोले तो.
1: अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, आप आओगे तो
0: बिल्कुल अच्छा लगेगा जी, जरूर. अच्छा, तमाम लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं सुबह सुबह रेडियो पे, कुछ कहना चाहते हो आप? बहुत लोग रेडियो सुन रहे हैं आज की सुबह.
1: वैसे तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि पहली बात तो खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी पता नहीं कब किसका साथ छोड़ जाए.
0: करेक्ट,
1: फालतू के टेंशन मत लीजिए किसी भी तरीके की, जो होगा अच्छे को होगा. भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी आप जिसको मानते हैं जिसको पूछते हैं उसके ऊपर छोड़ दीजिए. अपनी तरफ से कोई कमी मत होने दीजिए और खुश रहिए, क्योंकि हमारे हम कल के इंतजार में ना जिए, जबकि आज है आज में जिए, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है.
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: आज में जियो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो.
0: बहुत बढ़िया मैसेज. चलिए नीतू जी, बहुत मजा आया बात करके, फिर कभी जरूर आपसे बात करेंगे. बाय बाय. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. नीतू जी थी, इन्होंने दिया था आज की सुबह सही जवाब. ये बनती है आज की

चलिए गाइस बाय बाय, मेरा जाने का टाइम हो गया। मिलते हैं कल सुबह सैटरडे मॉर्निंग में 10:15 हो गए। मैं अभी पिछले वाले घंटे की वाइब में खो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, खुशी आ गई, मुझे निकलना पड़ेगा। रणवीर सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग हमारी ओर से, आप सभी लिसनर्स को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड सही जवाब दिया आपने, थैंक यू भारती जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप जुड़ गई हैं गुड मॉर्निंग एकदम सही जवाब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये जीरफ बाबू जी, आपने गलत जवाब कर दिया है। ओहो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ईदगाह से शफी अहमद अंसारी साहब जुड़े हैं, साथ में रईस दूल्हा अंसारी एकदम सही जवाब के साथ जुड़े आज की मॉर्निंग। अलका वर्मा जी जुड़ी हैं बुद्धि बिहार से एकदम सही जवाब के साथ, थैंक यू मैम। राम शरण विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं आज की सुबह गुड मॉर्निंग सही जवाब के साथ, थैंक यू सर। ये मेरे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र चौहान आज की सुबह राइट आंसर के साथ मुरादाबाद से। एंड इसके अलावा पल्लवी शिखा जुड़ चुकी हैं, मनोज कुमार सैनी जुड़े हैं मेरे साथ, एंड साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर दर्पण भाई सही जवाब के साथ। लक्ष्मी जी जुड़ी है मेरे साथ सूर्यनगर से, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हमारे साथ सही जवाब देने के लिए। बहुत मैसेज आए हैं आज की सुबह, मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं पढ़ूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया मेरा, 10:17 हो गया। हाय गुड मॉर्निंग बबली जी जुड़े हैं, साथ में गीता कश्यप जुड़े हैं एंड बीबी राधिका जुड़ गए हैं आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं सही वाले जवाब के साथ। गुड मॉर्निंग सोनू मोनू रीना वंशिका रुचि इशिका लाइन पार से जुड़ी हैं राइट आंसर के साथ। साथ में हमारे पास मैसेज आ गया है ये, गुड मॉर्निंग हाय कैसे हैं आप, आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। एंड सर हमारे घर पे कलर टीवी 2013 में आया था एंड हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया था। कलर टीवी जब पहली बार आया था तो हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था हमें कलर टीवी एंजॉय करने में। हम पूरी फैमिली के साथ कलर टीवी एंजॉय करते थे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड एक और मेरे पास मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग हाउ यू, आप कैसे हैं, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शबीना खान जी मेरे साथ जुड़ी हैं राइट आंसर के साथ, करूला रहमत नगर से गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं। एंड एक और मैसेज आ गया मेरे पास, हाई गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, वेरी गुड मॉर्निंग जी, 7 बार इसमें रिपीट हुआ था आपका सही वाला जवाब, ये है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आनंद जी आप कैसे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास, ये बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से मैसेज करते हैं आज की सुबह। एंड साथ में मेरे पास दीपक कपूर रामगंगा बिहार से सही जवाब पहुंचा रहे थे, ये मुझे मैसेज कर रहे हैं भूपी शर्मा जी, ये लिखते हैं मुझे याद है 14 मार्च 1966 को मेरे घर में कलर टीवी आया था और मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट करके इसको मंगवाया था, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच भूपी भाई हमारे साथ आप जुड़े। एंड एक और मैसेज मेरे पास पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सपना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ में मयंक शर्मा पीतल नगरी से जुड़े हैं एंड शिवानी जी जुड़ गई हैं मेरे साथ शिवपुरी से, थैंक यू सो मच। सुहानी का मैसेज आया है, नासिर भाई मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे सही सही जवाब दिए हैं आज की सुबह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए। चलो गाइस अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, इमीडिएटली मुझे जाना पड़ेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये राजा कश्यप जुड़े हैं मेरे साथ, साथ में अयूब अली साहब जुड़े हैं रामपुर से, बहुत सारे व्हाट्सएप, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट एवरीबॉडी, आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। आकाश जुड़ चुके हैं मिलन बिहार काशीराम से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड साथ में हमारे पास मैसेज आ गया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी साहब डॉक्टर शैयद शारीगली जी जुड़ गए हैं, प्रेरणा जुड़ चुकी है और साथ में निधि, थैंक यू सो मच, ऑल द वे बेस्ट आज के दिन के लिए, हैव अ फैबुलस वीकेंड, एंजॉय करते रहिए, कल मिलता हूँ सैटरडे की सुबह, जुमा मुबारक हो, बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
0: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी। और फ्राइडे की ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, खुशी भी आपके साथ है, ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आई है। और दोस्तों, वक्त हम आपको बता देते हैं, 10:28 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं और तारीख बहुत ही स्पेशल है आज, 3 जुलाई की। जी हाँ दोस्तों, और फ्राइडे की मॉर्निंग एक ब्यूटीफुल थॉट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, अगर अपने मन में ठान लिया कि मुझे जीतना है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। जीत पहले सोच में जन्म लेती है, फिर मेहनत उसे हकीकत बना देती है। तो दोस्तों, आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और अपने सपनों को पूरा करके ही दम लूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मन में ठान लेते हैं ना, तो आधी जीत आपकी तभी पक्की हो जाती है। तो जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और जो भी आपका सपना है आप उसको जरूर अचीव कर पाओगे। करते हैं अपने शो की शुरुआत, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी खुशी। और दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत सा, मैंने कहा ना कि दिन देखिए बहुत प्यारा है, शुक्र है कि शुक्रवार है, फ्राइडे का दिन है और 3 जुलाई अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आस्था, विश्वास और भोलेनाथ की भक्ति को समर्पित है। आज 3 जुलाई से पवित्र अमर यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। मान्यता की बाबा बर्फीनी के दर्शन से मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा मिलती है। हम सभी प्रार्थना करें कि यात्रा पर निकले हर श्रद्धालु की यात्रा मंगलमय और सुरक्षित हो। और अभी सुनते हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे अपने संदेश पहुँचाएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और जो ट्रैक मैंने प्ले किया है वो बहुत ही शानदार है, फ्रॉम द मूवी केदारनाथ। तो सुनते हैं ये।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना अरिजीत सिंह, साथ में जोनिता गांधी जी की बहुत प्यारी सी आवाज़। एंड आपको पता है दोस्तों कि कार्यक्रम चल रहा है आप सभी का फेवरेट, जी हाँ, मॉर्निंग में सारा खुशी आपके साथ है और आपके मॉर्निंग को बनाने आई है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर आई है। वक्त मैं आपको बता देती हूँ, समय हुआ है 10:40 और आपके शानदार मैसेज भी आए हैं। दोस्तों बताते हैं आज के दिन क्या कुछ स्पेशल है। दोस्तों आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। एंड हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को, दुकानदारों को और सरकारों को सिंगल प्लास्टिक, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग के

0: देश ने पतले प्लास्टिक बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, वहीं भारत सरकार द्वारा भी 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था। अगर आप पर्यावरण को बचाने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आप कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, और दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो हमेशा आप कपड़े का बैग या जूट का बैग आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, थैला, उसी में आप शॉपिंग करके लेकर आए। दोस्तों, ये ना सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक खूबसूरत और सुरक्षित भविष्य की ओर हमारा छोटा सा योगदान है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर आप एक छोटा सा संकल्प लें, प्लास्टिक बैग को कहें नो और नेचर को कहें यस। तो अगर आपको नेचर से, प्रकृति से प्यार तो सभी को होता है, तो आपको एक छोटा सा कदम तो उठाना पड़ेगा। जब भी आप मार्केट जाएं तो जूट का बैग या फिर आप कपड़े का थैला जरूर अपने साथ लेके जा सकते हैं, उसमें आप शॉपिंग करके लेकर आ सकते हैं, वो आपके लिए सेफ भी रहेगा। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। मुझे पता है आप ये सब जिस इंतजार कर रहे हैं अपने संदेशों का जो आपने हमें पहुंचाए, हम अब पहुंचाते हैं लाखों श्रोताओं तक। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज पहुंचाते हैं हमें मिला है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं रईस दुल्ला अंसारी जी। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद आप सब हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, लगता है बहुत बिजी थे। हाँ, बताइए इतने दिन से कहाँ थे आप, क्योंकि हम अपने श्रोताओं को नहीं भूलते हैं, हम सबको याद रखते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जामपुर से शबनम जी का, साथ में राहत अली जी हैं, नेहा जी हैं एंड लाइबा काजमी हैं, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें भी लिखी हैं आज की सुबह हम तक पहुंचाती हैं। कहती हैं कि इस धड़कते दिल का साज हो तुम, इस धड़कते दिल का साज हो तुम, मेरी हर बेताबी का राज हो तुम, अब भला कैसे असर करे कोई और दवा, अब भला कैसे असर करे कोई और दवा, जब मेरी हर तकलीफ का इलाज हो तुम। ओह माय गॉड, रियली, अरे वाह, क्या बात है शबनम जी, सुबह सुबह दिन बना दी थी आप, हाँ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं बबलू सैनी जी का, मुंबई महाराष्ट्र से। कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, कैसी हैं आप, सब बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, आप सभी की ब्लेसिंग्स एंड प्रभु का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ हैं, तो क्या हो सकता है, ऑलवेज हम ठीक रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और प्रार्थना भी यही करते हैं ऊपर वाले से कि आप सब भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने अपनों के साथ रहें। अगले मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ, और ये मैसेज हमें पहुँचाती है फरजाना रामपुर से, और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, तो चलिए हम सुन लेते हैं कुछ खूबसूरत से ट्रैक। दोस्तों, उसकी बात करेंगे, गुफ्तगू आपसे, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, एंड मैं चाहती हूँ कि सब आप तक पहुँचे, लेकिन कुछ म्यूजिकल ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि म्यूजिक का डोज भी लगना चाहिए। तो चलो कुछ खूबसूरत गाने सुनते हैं, उसके बाद खुशी लौट कर आएगी और आपको बताएगी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ और स्पेशल है आज। बस आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आधी हूँ, लौट कर करूँगी और भी बातें।
1: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं।

0: दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा, मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना जिसी गिल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। और जब उनकी गाने उनकी आवाज में सुनते हैं ना तो दिन ही बन जाते हैं दोस्तों। जानी के लिरिक्स थे एंड बी पराग जी ने भी साथ में परफॉर्म किया है। और बी पराग जी का म्यूजिक था, जानी के लिरिक्स थे, जिसी गिल ने इस ट्रैक को गाया था। और अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, 3 जुलाई है, क्या कुछ और आज स्पेशल है आज की डेट में। और समय भी आपको बता देते हैं दोस्तों, वक्त हुआ है 11:01 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। खुशी आपके साथ है, खुशी आपके साथ है और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला। दोस्तों आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के शानदार, जी हाँ, हरभजन सिंह जी का। 3 जुलाई 1980 को जलंधर पंजाब में जन्मे हरभजन सिंह जी ने अपनी शानदार गेंदबाजी और जज्बे से भारतीय क्रिकेट को कई यादगार जीत दिलाई। साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में गिना जाता है। वे 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के भी अहम सदस्य रहे। रेडियो की पूरी टीम की ओर से हरभजन सिंह जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें लंबा स्वास्थ्य और खुशहाल और सफलता जीवन प्रदान करे, हम तो यही कामना करते हैं। बैक टू बैक आपके मैसेज देखकर तो दिल खुशी हो गया है दोस्तों। एक सवाल भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो भी अभी पूछूंगी आपसे, थोड़ा इंतजार करो। और हमारे पास यहाँ पर संदेश आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं खुशी मैडम जी को हमारी तरफ से हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं जिनके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधे हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो सब दिखावा है। क्या बात है, सुबह सुबह ये जादू लाइनें आपने बोली हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखी हैं आपने सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, हेलो मैम, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का एंड ललिता जी की तरफ से आपको हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ इस समय रेडियो को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपने अपना मैसेज पहुंचाया है। उसके अलावा अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राधिका का, और ये कहती है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अच्छा दोस्तों मुझे अभी बताइए करंटली बाहर का वेदर कैसा है राइट नाउ, धूप निकल रही है, बारिश वाला है, हवाएं चल रही हैं, कैसा मौसम है जल्दी से मुझे बताओ बिना किसी देरी के। एंड नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और एक सवाल भी मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ, क्या है वो सवाल बताऊंगी अभी जब लौट कर आऊंगी, पहले ही गाना सुनो। मालूम करने वाली हूँ क्या है वो सवाल बताऊंगी अभी जब लौट कर आऊंगी, पहले ही गाना सुनो, बहुत ही प्यारा सा है। और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी शबनम जी ने।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक सुना था सनम पुरी जी की आवाज़ में। खुशी आपके लिए फिर से हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, मैं आपको समय भी बता देती हूँ, वक्त हुआ है 11:15।

दोस्तों तकनीकी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, लेकिन जब उस तकनीक का गलत इस्तेमाल होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंसान को होता है जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है। हाल ही में ई रिक्शा के दुरुपयोग और हैकिंग जैसी घटनाओं से कई चालक परेशान हुए। मुरादाबाद में भी ऐसी कई ई रिक्शा चालक हैं जो किराए पर ई रिक्शा लेकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। अगर किसी की शरारत या हैकिंग की वजह से उनका काम रुक जाए तो सिर्फ गाड़ी नहीं रुकती, उनके घर का चूल्हा भी प्रभावित होता है। इसलिए हमारा संदेश पर इतना सा है, अपनी जानकारी और तकनीकी का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। किसी की मेहनत और रोजी रोटी से खिलवाड़ कभी भी समझदारी नहीं होता। ध्यान दें, अगर आप हैकिंग या किसी विशेष घटना का जिक्र करें तो उसे केवल तभी तथ्य के रूप में बताएं जब दोस्तों आपके साथ अगर कोई ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ गलत भी ना करें। क्या मिलता है किसी को परेशान करके? और दोस्तों ये मुरादाबाद शहर में नहीं, काफ़ी शहरों की बात है। मैंने सुबह मॉर्निंग में न्यूज़ भी देखी थी, एक्चुअली नगीना सिटी में भी ये वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और इस तरह से काफ़ी शहरों में ये चीज़ें हुई हैं, जो हैकर्स हैं वो ई चालक ई रिक्शा को हैक कर रहे हैं और बेवजह लोग जो बेचारे पूरे दिन रात मेहनत करते हैं उनकी रोजी रोटी को वो रोक रहे हैं, तो कितनी गलत बात है ना। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ गलत भी ना करें। और दोस्तों कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 11:18 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे लगातार मैसेज भी आ रहे हैं, उनको भी मैं शामिल करूँगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं श्रोताओं, अपने मैसेज हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप पहुँचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ, आपकी खुशी। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, हमारे पास ये मैसेज आया है नीतू सिंह जी का लाइन पार से, और ये कहती हैं, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी हैं नीतू जी, आप बताइए हमें। और कहती हैं कि मुझे एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा खुशी, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। ओ हो हो, देखिए आपको अगर हमसे बेइंतहा प्यार है तो हम आ चुके हैं। और साथ में ये कहती हैं, ओके आपके साथ मैं ये ट्रैक सुनना चाहती हूँ, बिल्कुल आपको ये ट्रैक सुनवाएंगी नीतू जी, थैंक यू, आपने अपने मैसेज पहुँचाया। अगला संदेश हमारे पास आया है नैमोल अकरम जी का सिरसवा दोराहा से, कहते हैं खुशी जी क्या हाल चाल है आपके, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। इनके साथ में शान, अरमान, रिजवान जी भी हैं जो इस वक्त रेडियो को सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है जनकपुरी सहारनपुर से जो रोजी पलवली जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजे जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। तो चलिए दोस्तों अभी और संदेश यहाँ पर जो बैक टू बैक आ रहे हैं उनको भी मैं शामिल करूँगी, लेकिन कुछ खूबसूरत गीतों को भी हम सुनवा देते हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पर आप थिरक सको। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे गाने हम प्ले करें जिस पर जो आपका माइंड है ना वो एकदम फ्रेश हो जाए। और आप, मुझे पता है कि बहुत सारे काम करके थक गए हो, अब मन कर रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन नहीं, अभी आराम कैसे कर सकते हो, अभी तो खाना भी बनाना है, अभी तो डिसाइड हो रहा है कुछ घरों में कि आज क्या बनेगा खाने में। हाँ, डिसाइड कर रहे हैं आप, बताओ बताओ आज क्या डिसाइड किया आपने। सबसे पहले यही सवाल आता है ना मन में कि बता दीजिएगा क्या बनना है घर में। मैं बहुत परेशान होती हूँ इस चीज़ को लेकर, एंड एवरी मॉर्निंग मेरा यही रहता है। बाकी गाना सुनो, मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो दोस्तों, एक ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना। देखिए, हम तो कहीं नहीं गए हैं, आपके साथ ही बने हुए हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मुझे पता है आप बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फटाफट से भागते दौड़ती खुशी आ चुकी है दोस्तों। अभी आपने ये प्यारा सा

और दोस्तों मैं आपको मैंने आपसे कहा था ना कि एक सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, क्वेश्चन है मेरे मन में। तो मैंने कहा मन से अब सीधा जुबान पर लाते हैं और जुबान से सीधा आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। तो दोस्तों चलिए अब वक्त है आज के जीके चैलेंज का। जी हाँ, जरा अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। अगर आपको जवाब पता है तो आप अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर है 9837896896। जी हाँ दोस्तों, यूपी वाले तो इसका जवाब जरूर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप मुझे बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, जल्दी से अपना जवाब पहुँचाइएगा। अगेन नंबर में रिपीट करती हूँ 9837896896। अपना नाम, अपनी जगह का नाम और राइट आंसर के साथ आप हमें अपना संदेश पहुँचा सकते हैं। अभी फिलहाल वक्त मैं आपको बता देती हूँ 11:37 हो चुके हैं और आपके खूबसूरत जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं शामिल करूँगी। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये मैसेज हमें मुस्कान पहुंचाती हैं प्रकाश नगर से और कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड आज मुझे कोई ट्रैक नहीं सुनना है क्योंकि आप जो गाने प्ले कर रही हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर अनामूल हक जी का और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। फ्रॉम कश्मीर से ये मैसेज पहुँचाते हैं अपना।

और ये कहते हैं कि आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है आज की सुबह। ये तो कश्मीर है, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है। ऑफ कोर्स इसको प्ले करेंगे हम, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है आरजे खुशी जी को। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही हार्ट टचिंग प्रेजेंटेशंस में प्रोग्राम प्रस्तुत करती रहें। ओहो हो, और इन्होंने क्या लिखा है, हम प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ टाइम आपके इमोशनल अत्याचार सहते रहेंगे। हाय रवा आपको भी जय श्री राम। और ये मैसेज पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। एंड अगला मैसेज हमारे पास आया है राधे राधे खुशी जी, कैसी हैं आप, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं भूपी शर्मा जी नगर पंचायत बागवाड़ा से। और इन्होंने खूबसूरत सा विचार आज की सुबह लिखा है, कहते हैं हम वो हैं जो हमें हमारी खुद की सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, विचार ही व्यक्तित्व का आईना होते हैं। सुप्रभात, शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी सो, सेम टू यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबली अंजान जी का मैसेज आया गीता कश्यप जी का। और इन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, सर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, आपका ट्रैक भी हम जरूर प्ले करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है, तो थोड़ा इंतजार और कीजिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कश्मीर से आया है महराजुद्दीन जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत इजी सा है, जी हाँ, यूपी वालों से हमने एक सवाल पूछा है, आप हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। सही जवाब के साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, जब आप मैसेज लिखे ना, तो सबसे पहले अपना नाम, अपने सिटी का नाम, जहाँ से भी आप हमें मैसेज कर रहे हैं, नेक्स्ट सही आंसर, और पहुंचाइए हमारे एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। हाँ, व्हाट्सएप करना है आपको, आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, लौट कर आएंगे हम, आप कहीं मत जाइए। और ये गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजिए रणवीर सिंह जी ने मुरादाबाद से।

0: रमन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
8: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
7: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
8: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
7: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
8: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
7: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
8: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
7: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
8: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
7: EKCC, साख से समृद्धि।
8: नियम और शर्तें लागू।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
10: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
11: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: क्या बात है दोस्तों, आपने तो कमाल ही कर दिया आज सुबह सुबह। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर खुशी प्ले करती है आपके लिए। जी हाँ, ये रियल क्लैपिंग है आप सभी के लिए। और आपने एकदम राइट आंसर पहुंचाए हैं, इतने सारे आई कांट बिलीव दिस यार, आपके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। मुझे पता था हमारे यूपी वाले भाई किसी से कम थोड़ी हैं, और आपने सच में आज कमाल कर दिया एवरीवन, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। एंड इतने सारे मैसेज आए, OMG। दोस्तों आज तो मेरे पास कम से कम 40 से 50 मैसेज आए हैं, और सभी ने सही जवाब दिए हैं। आपने साबित कर दिया श्रोताओं, सिर्फ संगीत को ही नहीं बल्कि आप ज्ञान के भी सच्चे खिलाड़ी हैं। आप सभी को दिल से सलाम है दोस्तों, एंड ढेर सारी बधाइयां। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप हमारी एफएम मुरादाबाद की शान है, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। एंड अब शामिल कर लेते हैं वो मैसेज जो आपने सही जवाब के साथ पहुंचाए हैं। और हमने आपसे पूछा था दोस्तों कि आप मुझे बताइए हमारे यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और सही जवाब के साथ हमारे साथ हमारे तमाम सारे श्रोता जुड़ चुके हैं। एक हमारे पास बहुत ही प्यारा सा वॉइस नोट भी आया है, तो पहले वॉइस नोट सुनते हैं कि क्या पहुंचाती है हमारी ब्यूटीफुल प्यारी सी लिस्टनर, उनकी आवाज सुन लेते हैं।
1: राधे राधे खुशी खुशी, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, धन्यवाद।
0: थैंक यू। तो हम कहना चाहते हैं आपको मैम, आपने सही आंसर हमें दिया है, थैंक यू सो मच अलका मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाते हैं बुद्धि बिहार से अलका वर्मा जी, हमारी रेगुलर लिसनर हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब आप अपना वॉइस नोट पहुंचाते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर के साथ किन का आया था वो भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विकी सागर जी का, और विकी सागर जी आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है डीके अरोड़ा जी का, चंदन नगर मुरादाबाद से, और ये कहते हैं कि हमारे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। एग्जैक्टली राइट सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है सपना शर्मा जी का, और ये भी सही आंसर के साथ जुड़ी है, 75 डिस्ट्रिक्ट बता रही है। अगला मैसेज हमारे पास आया है शबीना खान जी का, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ शबीना जी, और ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और प्यारी सी स्माइल भी कर रही हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी शबीना, आप हमेशा ऑलवेज ऐसे ही मुस्कुराती रहो। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है उषा अरोड़ा जी का, ये भी अपने मैसेज पहुंचाते हैं मुरादाबाद से, और कहती हैं यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, थैंक यू मैम। अगला मैसेज हमारे पास आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से, और ये कहते हैं उत्तर प्रदेश यूपी में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 18 मंडलों डिवीजन में बांटा गया है। लखनऊ राज्य की राजधानी है। क्या बात है, आपने तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास आया है भूपी शर्मा जी का, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से गुड मॉर्निंग मैम कपिल जी का, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुँचाते हैं राधिका, और राधिका भी कहती हैं कि मैम हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और ये कहते हैं एवरी मॉर्निंग हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, आज भी वैसे ही इन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया है एंड शो की तारीफ भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना प्यार देने के लिए। कहते हैं कि मैम हमारे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, थैंक यू। हाँ जी वही तो हम कह रहे थे आपसे विकी सागर जी, आपने 75 की जगह 76 लिख दिया था। एक्चुअली ऐसा हो जाता है जब हम काम में व्यस्त होते हैं ना, तो हमारा माइंड जब एक तरफ नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम व्हाट्सएप पर लिखने की जगह हम उसमें माइक में बोलते हैं ना, तो उसमें बोलते कुछ है और लिखा कुछ और आ जाता है, लेकिन जब बाद में मैसेज पहुंचा देते हैं तब हमें समझ में आता है ओहो हमने तो ये भेजना था, हमने गलत भेज दिया। बट कोई बात नहीं, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, अभी आपने एकदम राइट आंसर पहुँचाया है, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, आई एम रियली हैप्पी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये अमरोहा से हमें नेहा जी मैसेज पहुँचाती हैं, कहती हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अगला मैसेज हमारे पास संजू का आया है और ये कहती हैं कि मैम यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, थैंक यू सो मच आपने पहुंचाया हमें अपना मैसेज। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपिका का और ये मैसेज हमें पहुंचाती है पीतल नगरी से, कहती हैं खुशी जी हमारे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं एंड आपने जो सवाल पूछा है, हम यूपी वाले हैं किसी से कम नहीं है, तो अपने यूपी के बारे में तो इतना जानते ही हैं, क्या बात है भाई। कमाल ही कर दिया आपने तो। तो चलिए दोस्तों मैं सुनवाती हूँ एक अमेजिंग सा ट्रैक और अभी लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से गाने के उस पार, आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हमेशा खुश रहिए।

0: जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, शो तो आपको पता ही है, एवरी मॉर्निंग लेकर आती है खुशी आपके लिए मॉर्निंग मसाला. 12:07 हो गए हैं और आप सुन रहे होंगे कि खुशी जी की आवाज़ कैसे हमें सुनाई दे रही है. दोस्तों, बिना बाय बोले हम कैसे आपको जा सकते थे. हाँ, तो मैंने कहा अपने श्रोताओं को इन्फॉर्मेशन तो दे दें कि

अभी हम जा रहे हैं, पता चला कि आप मेरा इंतजार ही कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इंतजार कराऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को जानकारी देना अपने बारे में एंड या फिर कोई भी अपडेट अपने श्रोताओं तक पहुंचानी है तो सही समय पर डिलीवर होनी चाहिए ना। तो दोस्तों मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और सुनते रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 को। अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, अपना ख्याल रखिए, यूं ही हमेशा हैप्पी रहिए, अपनों के साथ रहिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और एक बेहतरीन ट्रैक आपके लिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं सच में।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओ को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं। अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है?
1: हाँ यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है। माँ भी ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई बड़ी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूँगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं, जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्पूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है।

0: भी महिलाओं की मारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
2: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
1: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
2: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले सब घबरा जाती थी।
1: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जाँच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
2: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा खास है, सेहत सही लाभ कई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ रीना। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उसकी प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियां झिझक मौजूद है।
0: सच कहूं सेहतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता, लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है?
1: देखो RJ रीना, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जिससे ये कोई गंदगी या शर्म की बात नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर लड़की और हर महिला के जीवन में एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: हाँ, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: ये तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
1: देखिए RJ रीना, मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड्स को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल की गई सामग्री को सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
1: बिल्कुल RJ रीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार वे समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
0: और यही पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
1: बिल्कुल RJ रीना, बिल्कुल सही समझाया आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे आयरन प्रोटीन विटामिन, तो उसे कमजोरी जैसे चक्कर ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: तो एक और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए RJ रीना, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विधिवद्धता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या प्रोटीन जैसे अनाज रोटी चावल, और अगर संभव हो तो दूध दही या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दालें फल मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए।
0: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
1: बिल्कुल RJ रीना, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा है, बस हम उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो।
0: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: बिल्कुल आरती रीना जी, मेरे पास एक कहानी है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ श्रोताओं। हमारे ही एक गांव में एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताओ मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए और ना ही उसे ये पता था कि कितनी बार बदलना है। वो भी बस उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रहती थी। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद ये भी नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियाँ, फल, ये सब तो बहुत ही कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इवन उसे चक्कर भी आते थे। कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों से इस विषय में खुल के पीरियड्स के बारे में बात की। पीरियड्स क्या होता है, उसे कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतना खुलकर सब कुछ बता पा रही थी और सारी बातों को सुन पा रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए गए और ये भी बताया गया कि आयरन की कमी उसे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके बाद आशा दीदी द्वारा उसे आयरन की गोली दी गई और खाने में हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण हमें इसे आसानी से संभाल सकने में हमारी हेल्प कर सकता है।
0: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
1: बिल्कुल आरजी रीना, और हमारा मकसद भी यही है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
0: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आरजे रीना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, दहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत कम करना, उनकी क्षमता कम करना और उन्हें लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ता है। इसका
0: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझते हैं, उसके पीछे भी पोषण की ही कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, यही बात हम विश्व पोषण दिवस के माध्यम से समझाते हैं और विश्व पोषण दिवस की संदेश से हमें ये बात जोड़ देती है। इसी दिन का मकसद है सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और जब हम आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि सही पोषण पुरुष हो या महिला, हर किसी को मिलना चाहिए। और जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसे समाज की योजना बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और बिना झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और इसमें

0: पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और भी बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है अगर हम पोषण पर ध्यान देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जी रीना और बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए दोस्तों जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, दाल और चना, गुड़, मूंगफली, तिल और अगर संभव हो तो दूध, दही या अंडा या अन्य प्रोटीन के जो सूत्र हैं उनको भी आप आहार में जरूर शामिल करें। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज को रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आरजी रीना आपने और यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक और बात हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वो भी हमें बीमारी का कारण बना सकता है।
1: साथियों आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि यह हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज की यही शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा इसी शो में यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, नमस्कार।
2: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी

0: हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCH UP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
2: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जब मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
2: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
2: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है, तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
2: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। और इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 में पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
2: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
2: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी एनएम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
2: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में हैं?
2: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर्निया और समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
1: कुछ नया है
0: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
0: जी
1: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है।

0: आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट। और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
1: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में,
0: जिसका नाम है सोच बदलो।
1: जिसका नाम है सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
2: हेलो एवरीवन, मैं आरजी रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है, जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
3: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है।
0: करेक्ट।
3: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
3: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस
3: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं, तब सुनिए आप उनकी।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है, मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात यह है। क्योंकि उनको कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
1: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
2: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें चार लोगों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ तो

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है। लेकिन जब आप परेशान होंगे, आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट होंगे। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस कर,
2: मतलब जब से मेरी, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलों का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा,
1: हाँ,
2: चार लोग
1: अच्छे भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि अपने बच्चों को दूसरों के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव ही चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर, तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
5: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
6: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
7: फिर से आप सभी का स्वागत है, आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का सा दर्द तो है, कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा, खाऊंगा, मेरे आराम मिल जाएगा। बट वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, बहुत ईजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इनवाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू FM मुरादाबाद।
4: थैंक यू सो मच।

0: मैं हूँ डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
0: बहुत अमेजिंग।
1: मतलब दिस इज अपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो।
0: डिफरेंट एरा।
1: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
0: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, अ न्यू थिंग, समथिंग न्यू थिंग इज।
1: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए, हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनसे भी हैपनिंग बातें करवा ही लेते हैं। ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे, अलग है। सो सी, आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल, जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं, पहले तो मुझे बताओ मैम,
0: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है।
1: हाँ,
0: ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी? एक्चुअली देखिए, दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है।
1: हाँ जी मैम,
0: वो अक्यूट में आता है।
1: ओके।
0: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में, जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है, जो कि 12 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है, बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का दर्द, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया, क्रॉनिक पेन जो 3 महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है, वो क्रॉनिक में आता है।
1: ओके।
0: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं, जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं, वो हम करते हैं।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, ये जो दर्दों का खेल है ना, आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं, मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं। दो तीन ही सुने थे मैंने, बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों, अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है। अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है। तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
0: देखिए, कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर। हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है। ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए, जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है, गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल। तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना, जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द।
1: ओके।
0: ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना, जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है, तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है। थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
1: ओके मैम, मैम ये तो हमने बात के लिए सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
0: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, पहले कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है। तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा, हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। वो देने के बाद में हम आते हैं, जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है, कैनाल डायमीटर। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया। आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोग के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी। आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
1: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
0: बिल्कुल भी नहीं है।
1: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
0: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं। आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा। तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं। जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं। तो ये इसका इलाज है।
1: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
0: बिल्कुल,
1: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
1: जी,
0: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई वो सर मेरे दिमाग पे आओ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको। क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
1: जी जी
0: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है। पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना आपको अच्छा लगता है तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
1: ओके
0: ऐसे
1: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
0: डेफिनेटली,
1: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
0: बिल्कुल, क्या होता है कि हम हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेंजी हैं, जेन अल्फा है,
1: बीटा है,
0: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है।
1: करेक्ट,
0: तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है। तो हम अपने आप को अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
1: Exactly.
0: तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल मैम।
0: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
1: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
0: बीच में भी हम देखते हैं,
1: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है।
0: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
1: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
0: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है, अगर और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
1: बिल्कुल, डॉक्टर निधा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निधा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई दर्द चला गया, फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होगी, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है। तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है।
1: ठीक है,
0: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
1: तो मतलब ऐसे
0: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरोडॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है, लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
1: डॉक्टर निधा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि एक गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है, वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते, और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निधा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेनुइनली?
0: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
1: ऑलराइट,
0: ठीक है।
1: अच्छा,
0: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
1: ओके, मतलब
0: जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
1: ओके,
0: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
1: ओके,
0: हॉट फर्मेंटेशन,
1: वो में फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
0: बिल्कुल नहीं है।
1: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
0: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
1: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है? मतलब पूरे सर में दर्द ना हो के आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है?
0: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: ठीक है।
0: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
1: ओके,
0: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑक्सिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
1: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
0: बिल्कुल है,
1: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
0: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
1: ठीक है,
0: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
1: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन की आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली? क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
1: ठीक है
0: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि तीन महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
1: ठीक है,
0: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
1: ठीक है, ओके मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
0: देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें
1: जी।
0: अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ।
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही है
1: मैम, एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
0: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसे लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
0: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं या फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की ज्यादा कर रहे हैं या फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे

0: की तरफ झुक जाता है जब हमारा
1: फोन
0: अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता, या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही हैं, वो चॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है, लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है,
1: ओके,
0: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण है।
1: ओके सो दोस्तों, आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियां आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए, बिल्कुल स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
0: बिल्कुल दर्द की दवाइयां आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
1: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
0: AI
1: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
0: नहीं सर दर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा, और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत, मैम थैंक यू सो मच, और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: यात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
3: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
4: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:00 बजकर

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में
2: आरजे रीना भी है।
1: हाँ जी, हम हाजिर हैं आपका फेवरेट शो लेकर महिला मंच, जहाँ पर बात होती है महिलाओं के बारे में, घर परिवार के बारे में, फैमिलीज के बारे में।
2: करेक्ट।
1: तो अच्छा अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, अब हमने घर परिवार की बात छेड़ी ही है तो बताते हैं कि आजकल न्यू जनरेशन है, रिलेशन बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, फासले घरों में नहीं अब दिल में बनते जा रहे हैं।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने
1: रीना जी। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय जब मैं घर के आंगन में बैठकर अपने बीते पलों को याद करती हूँ ना, तो मन मतलब खुश हो जाता है, उन पुरानी यादों में लौट जाता है जब रिश्तों में एक अलग ही मिठास हुआ करती थी। तब घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। तब उस समय भी ना सुविधाएं बहुत कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत था।
2: ये सही कहा तुमने, उस टाइम चाहे सुविधाएं कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत ज्यादा था। हर इंसान एक दूसरे की मदद करता था उस समय, लेकिन अब फोन आ गया है, हर कोई फोन में बिजी रहता है, भले ही कमरे बड़े हो गए हैं लेकिन
1: दिलों में जगह कम हो गई है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: और पता है क्या होता है ना रीना, जैसे हम लोग पहले के टाइम में, मैं बताती हूँ तुम्हें, जब कोई फोन नहीं था, कोई ऐसा इंटरनेट का सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, था लेकिन बहुत कम थे।
2: मतलब वही टेलीफोन वाला जो कनेक्ट होते थे।
1: और एक वो वाला टेलीफोन की याद है आपको जिसमें एक रुपए डाल के बात किया करते
2: थे? हाँ, एक रुपए डाल के बात किया करते, मिनट के हिसाब से होता था। जैसे मिनट खत्म भैया अधूरी बात रह जाती थी,
1: आधा हेलो कुछ बोलते बोलते।
2: तुम्हें पता है क्रेज बहुत होता था यार, जो हमने अब की बार बात नहीं करी ना, पक्का पिछली बार जो हम बात करेंगे ना तो उस बात को पहले रखेंगे। हाँ, नोट करके रख लेते
1: वो
2: थे।
1: हम पहले नोट करते थे कि हमें क्या से शुरू करना है, क्या बोलना है। तो टाइम बहुत ही खूबसूरत। हाँ, था।
2: और अब तो पता ही नहीं चलता है कि कितने 2 घंटे 4 घंटे निकाल दो इंसान।

0: सबके पास है लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है।
1: अरे पहले के इंसान ना आसमान को देखते थे और टाइम बता देते थे
0: धूप को गेस करके ना।
1: और पहले के टाइम में ना यही होता था,
0: वॉच
1: इंसान गैस कर लेता था, अच्छा अब धूप यहाँ आ चुकी है तो पक्का 3 बज चुके हैं, अब 5 बज चुके, अब 7 होने वाली है, ये होता था। और अब हर किसी के हाथ में वॉच है, फोन है, मतलब घड़ी भी बहुत रेयरली बांधते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ
0: शॉप के लिए घड़ी बांधते हैं, लेकिन टाइमिंग तो
1: टाइम तो फोन से ही देखते हैं।
0: सेम टू यू। और लेकिन पता है रीना तुम्हें, पहले के टाइम में, और मैं आपको बताती हूँ 90s की अगर बात करें हम, तो 90s के समय में ना जब छुट्टियां हुआ करती थी, जैसे अभी छुट्टियां चल रही है, समर सीजन है, तो हम लोग नानी के घर जाने के लिए इतना एक्साइटमेंट रहता था हमारे मन में बहुत ज्यादा। और घर जाकर नानी के वो कहानियां सुनना, नानी टेस्टी खाना बनाती थी बहुत ज्यादा हमारे लिए, स्पेशली बच्चों के लिए कि कब आ रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत एकदम, मतलब गोल्डन समय था उस टाइम का। आजकल बच्चों को बोलो कि नानी के घर जाओगे, नहीं आपको आप जाइए, हमें बस फोन दी जाइएगा। आज की जनरेशन के बच्चे ऐसे हो गए हैं।
1: लेकिन पता है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की के बीच का जो रिश्ता आज समाज के सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है, यह सिर्फ माता पिता और बच्चों की बात नहीं है, बल्कि दादा दादी, नाना नानी, बहू बेटी, भाई बहन और पूरे परिवार की कहानी है।
0: और कहते हैं ना कि हर पीढ़ी को लगता है कि अलग अलग पीढ़ी उससे अलग है।
1: हाँ।
0: शायद हमारे माता पिता ने भी हमारे बारे में यही सोचा होगा।

0: बारे में यही सोचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बदलाव की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है।
1: हाँ, आज का बच्चा दुनिया को मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा है और उसके दोस्त सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँच सकती है। उसके सपने बड़े हैं, सोच अलग है और सवाल भी बहुत अलग है।
0: लेकिन क्या ये गलत है?
1: नहीं, हर दौर की अपनी पहचान होती है। जिस तरह हमारे समय में रेडियो, पत्र और परिवार की बैठकों का महत्व था, उसी तरह आज डिजिटल दुनिया है, नई पीढ़ी का हिस्सा है। समस्या तकनीकी नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब तकनीकी रिश्ते की जगह लेने लगती है।
0: तो रीना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और
1: अरे सुनाओ, मुझे तो, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब, मतलब कहानी जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे अपनी नानी की याद आती है, अपनी अच्छा? दादी की याद आती है।
0: तो तुम मुझे नानी बनाना चाहती हो?
1: अरे नहीं नहीं, मतलब एक कहानी के नाम से सुना,
0: हाँ,
1: आता है ना,
0: दादी नानी का चेहरा ही सामने आता
1: हाँ,
0: है।
1: क्योंकि जब रात को नींद नहीं आती थी तो वो कहानी सुनाया करती थी।
0: एग्जैक्टली।
1: तो चलो सुनाओ, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ।
0: हाँ, तो एक बुजुर्ग माँ रोज शाम को अपने बेटे का इंतजार करती थी। बेटा घर तो आता था लेकिन आते ही मोबाइल में व्यस्त हो जाता था। माँ कई बार बात शुरू करती लेकिन बेटा कह देता, अभी नहीं माँ, थोड़ा काम है। एक दिन एक माँ ने बेटे से पूछा, बेटा क्या मैं भी तुम्हारा मोबाइल देख, क्योंकि अब तुम सबसे ज्यादा समय उसी के साथ बिताते हो। ये सुनकर बेटा कुछ पल के लिए चुपचाप हो गया। यही कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, शायद हमारे आसपास ऐसे कई घरों की है जहाँ लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। नई पीढ़ी को अक्सर शिकायत होती है कि उन्हें समझा नहीं जाता, लेकिन अब वही पीढ़ी लगता है कि बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते हैं। सच यह है कि दोनों ही पक्ष कहीं न कहीं दुखी है और दोनों ही प्यार चाहते हैं। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब विचार अलग होते हैं। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला हमें समझ ही नहीं सकता है। और पता है खुशी, आजकल ना ये सब जो हम सोचते हैं कि हमें कोई समझ नहीं पाता है, समय नहीं दे पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोन है जो हमें इंसानों पास तो रखता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम फोन में बिजी रहते, किसी को टाइम नहीं दे पाते।
0: बिल्कुल, तुम कह तो सही रही हो। एक माँ अपनी बेटी से कहती है, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। बेटी जवाब देती है, माँ आपका समय अलग था और मेरा समय अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की बात सुन ले तो शायद कोई विवाद ही नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज बच्चों को आदेश से ज्यादा संवाद की जरूरत है। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि घर उनकी बात सुनता है। वही बच्चों को भी यह समझना होगा कि माता पिता की रोक टोक कई बार प्यार और चिंता का दूसरा नाम होता है।
0: यहाँ महिलाओं की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। माँ घर का वह पुल होती है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। एक माँ चाहे तो दादी और पोती के बीच की दूरी कम कर सकती है, एक बहू चाहे तो परिवार में संवाद का माहौल बना सकती है।
1: क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात कही है तुमने। तो हम अक्सर बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार और अच्छे भविष्य देने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं?
0: क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि दादी नानी की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है?
1: क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि घर के बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि परिवार की जड़ें होती हैं?
0: और क्या हम खुद नई पीढ़ी की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रीना, रिश्ता एक पौधों की तरह होता है। उन्हें रोज थोड़ा समय, थोड़ा प्यार, थोड़ा धैर्य चाहिए। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वे सूख जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें संभालेंगे तो वे जीवन भर छाया देंगे।
1: जैसे एक पेड़ हमें सिर्फ फल देता है, बदले में कुछ नहीं लेता है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी जैसी बन जाए या नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी जैसी, जरूरत इस बात की है कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें, क्योंकि परिवार वह जगह नहीं है जहां सबकी सोच एक जैसी हो। परिवार वह जगह है जहां अलग अलग सोच रखने वाले लोग भी एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं।
0: आज महिला मंच के माध्यम से हम छोटा सा संकल्प लें, हम अपने बच्चों को सुनेंगे,
1: हम अपने

0: क्योंकि आखिर में जन की सबसे बड़ी कमाई अपने लोग होते हैं।
1: और जब उम्र ढलने लगती है तब बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: याद रखिए श्रोताओं, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, समय बदलता रहेगा, लेकिन प्यार, सम्मान और संवाद ऐसे दीपक हैं जो हर दौर में रिश्तों को रोशन करते रहेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे लगता है कि देखो खुशी, हम अक्सर यही सोचते हैं ना और यही कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, लेकिन हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन जब वो हमें कुछ बोल देते हैं ना तो हमारे अंदर ना एक अलग सी गुस्सा आ जाता है ना कि यार क्यों बोला। मतलब हमें अपने तरीके से बातें करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप माँ बाप की बातें मानते हो तो बड़े खुश रहते हो, है ना।
0: एग्जैक्टली पेरेंट्स ना हमें हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें उस समय पे थोड़ा सा लगता है कि पेरेंट्स ने क्यों बोला, लेकिन हमें उसकी वैल्यू की अहमियत हमें बाद में समझ आती
1: है। बिल्कुल,
0: आप सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी जो इस समय आप सुन रहे हैं, अपने बड़ों को टाइम दी, रिस्पेक्ट करें एंड उनसे ढेर सारा प्यार करें। जब आप ऑफिस से शाम को घर आए तो उनका हाल चाल जरूर पूछें, क्योंकि वो सुबह से आपका इंतजार करते हैं कि कब शाम होगी, कब बच्चे वापस घर आएंगे। आप ज्यादा नहीं थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, माना आप थके हारे आते हैं, लेकिन जब आप भी अपने को अपनों के साथ बैठते हैं, कुछ उनके दिल का हाल जानते हैं, कुछ अपने दिल का हाल बताते हैं, तो कितना सुकून मिलता है ना। और साथियों, आज के टाइम में अगर कोई आपका अपना आपके लिए इतना बेचैन है, इतना समय निकालता है, इतना आपको वैल्यू देता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो सेल्फिश हो गए हैं, और जो सच्चे रिश्ते हैं, जो अपने हैं, उनको आप संभाल कर रखो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि जब भी किसी चीज की जरूरत होती है ना तो बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता बल्कि अपने देखे जाते हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ और अच्छी और ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार बहुत मायने रखते हैं। बाय बाय श्रोताओं।

0: बहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
5: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
4: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
4: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
5: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
4: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
5: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
4: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
5: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
4: EKCC, साख से समृद्धि।
5: नियम और शर्तें लागू।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ, समय हुआ है 3:08 और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। उम्मीद है आपका दिन मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। अब अगले 2 घंटे तक मैं आपकी पसंद के, आपकी फरमाइशों के, जी हाँ आपकी पसंद के और बेहतरीन गीत आपको सुनवाने वाली हूँ एंड प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो देर किस बात की है, अपने दिल का पसंदीदा गाना सुनने के लिए आप मुझे कॉल कीजिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। और श्रोताओं, मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं, उनसे बात

0: गीत करते हैं, जानेंगे उनकी पसंद का भी गीत। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार
0: जी, नाम बताइएगा अपने सर।
1: मोहम्मद यूसुफ
0: जी,
1: जिला अमरोहा से।
0: अमरोहा जिला से बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बताओ कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: जैसे 3 बजते हैं ना, एकदम रेडियो के पास आ जाते
0: हैं। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। बताइए सर आप क्या काम करते हैं?
1: बाइक मिस्त्री।
0: अच्छा ओके, मोटर मैकेनिक बोलते हैं ना उनको?
1: जी जी
0: जी। बताइएगा तो आप कौन सा गाना सुनेंगे सर, आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: आज जैसा मौसम बरसात का हो रहा है मैम, तो गाना भी ऐसे होना चाहिए।
0: हाँ अच्छा, मौसम सुहाना है।
1: जी मैम।
0: जी बताइएगा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए।
0: अच्छा, और आपके साथ कौन कौन इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं, आपके फैमिली परिवार के लोग, बताइए हमें।
1: मैम रेडियो तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है मैम।
0: अच्छा
1: जी, सभी सुन रहे हैं इस टाइम।
0: जी तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद आपने कॉल किया सर।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा गीत सर की पसंद का और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 98-378-96-896। मुझे पता है श्रोताओं आप अभी इस समय आराम करके उठे हैं, तो कुछ आराम कर रहे हैं और कुछ इस समय ऑन द वे कार में हैं जो मुझे सुन रहे हैं। और हम सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा ट्रैक। बस मैं आती हूँ लौटकर, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मुरादाबाद 89.6 पर। जी हाँ, आपके अपने मुरादाबाद शहर का इकलौता रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे फोन कर अपना पसंदीदा गीत सुन सकते हो, या फिर अगर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप कोई गाना, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा श्रोताओं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। साथियों, दोपहर का ये सुनहरा सा पल कुछ गीतों के नाम कर दीजिए, चेहरे की हर थकान को एक प्यारी सी मुस्कान दे दीजिए, और उसके लिए तो आपको मुझे कॉल करना होगा ना। जब आप अपनी पसंद का गीत सुनेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आएगी ही, लेकिन दिल भी खुशी से झूम उठेगा। तो बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, आदाब
0: जी। आपको भी आदाब। कैसी हैं शुभनम जी आप?
1: हम बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसी?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, बहुत लंबे समय के बाद आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं।
1: जी दीदी, बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है दीदी आपसे बात करके, और सभी श्रोताओं से मतलब जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ये तो बात आपने बहुत अच्छी बोली है। जब हमारा कॉल लग जाता है ना, तो हमारी खुशी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, राइट जी। तो ये बताइए शुभनम जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्योंकि पहले लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी आपसे।
1: हाँ जी, अब तो मेरी तबीयत सही है, माशाल्लाह अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ और आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए शुभनम जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? और
1: पहले दो लाइनें कहना चाहती हूँ आपके लिए।
0: हाँ बिल्कुल इरशाद जी।
1: दीदी कहते हैं, सुना है तेरे शहर में वफा मिलती है, सुना है तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है, बस यही सुनकर आए थे तेरे शहर में, पता चला दिल मुरादाबाद पे दिल लगाने की सजा मिलती है।
0: हाँ जी, सजा तो मिलती है, देखो आपको कॉल करना होगा, सजा ये है हमारी।
1: जी नहीं दीदी, कॉल करते रहेंगे और आपसे बात करने का मन तो बहुत करता है दीदी, कुछ मजबूरियां होती हैं जो हम कॉल नहीं कर पाते।
0: जी जी जी, कोई बात नहीं मैम, थोड़ा सा सब चीजों को मेंटेन करना होता है, समझना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
1: जी दीदी
0: जी,
1: तो मैंने आपको गाना बता दिया, वो सुनवा देना दीदी, दो नाम है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइए।
1: जैसे संग में है डीएफसी वर्ल्ड से हैं देवसर, उन्हीं को ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ, और समा पर भी है।
0: ठीक है, ये प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू दीदी,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, ख्याल रखो अपना अच्छे से, और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं, आप भी मुझे कॉल लगाइए बिना किसी देरी के, आपके पास ये बहुत अच्छा चांस है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और ये गाना सुनते जाएं। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।

हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना अलका याग्निक जी साथ में कुमार सानू जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़।

0: और दोस्तों कुछ लाइनें हैं, आज मौसम भी बड़ा सुहाना सा है बाहर, कि बादलों ने आज फिर आसमान को प्यार से सजाया है, बादलों ने आज फिर आसमान को प्यार से सजाया है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर दिल को मुस्कुराया है। ऐसे सुहाने मौसम में बस एक ही कमी है, आपकी फरमाइशों के गीत अगर यहाँ पर बज जाएं तो मौसम और भी ज्यादा सुहाना हो जाएगा। तो दोस्तों आप पीछे क्यों हैं? अभी हमें जल्दी से कॉल लगाइए बिना किसी देरी के। मोबाइल नंबर मैं आपको बता रही हूँ 98-377-96-896। इस सुहाने से मौसम में गाना तो होना चाहिए ना आपकी पसंद का। हेलो फरमाइश, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, प्लीज फोन के थोड़े पास आ जाइए।
1: हाँ बोलिए।
0: हाँ जी, अभी आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, अब बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: खुशालपुर
0: में। जी खुशालपुर से बात कर रहे हैं, बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी सर? ओके, तो ये गीत आप किन के लिए सुनना चाहते हैं सर? अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गीत आपको, धन्यवाद आपने कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी ट्राई कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए। मोबाइल नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर से बता देती हूँ क्योंकि नए नए लिसनर्स भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। तो मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896, इस पर कॉल लगाइएगा।

0: दोस्तों कार्यक्रम हाजिर हैं हम, आपका कार्यक्रम, आपका फेवरेट कार्यक्रम लेकर, हेलो फरमाइश। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत खूबसूरत सा गीत सुना जगजीत सिंह जी की आवाज़ में। और आपको समय हम बता देते हैं, 3:38 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना है, और इस सुहाने से मौसम में अगर अपनी पसंद के गाने हो जाएं, तो मौसम का आनंद ना डबल हो जाता है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार मैम, रोहित बात कर रहा था।
0: रोहित जी नमस्कार, आपको भी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और एफएम परिवार में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, एफएम परिवार में सभी बहुत ही अच्छे हैं, एंड हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आप बताइएगा, आज कहाँ पर हैं आप?
1: मैं आज मैम गांव में घूमने आया था, वैसे तो मुरादाबाद में रहते हैं।
0: अच्छा।
1: आया था लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, काम थोड़ा कम था तो मैं आज घर पे आ गया था।
0: अच्छा, तो आपका गाँव कहाँ पर है सर?
1: गाँव हमारा ये रामपुर में पड़ता है, हॉस्पुर मंडली ब्लॉक सैद नगर टांडा रामपुर।
0: अच्छा अच्छा, तो वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बढ़िया हो रहा है अभी, मतलब बादल से हो रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। सुबह से गर्मी थी लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है।
0: अच्छा, अभी फिलहाल राहत मिल चुकी है थोड़ी सी।
1: हाँ हाँ हाँ
0: जी।
1: और गाँव में तो मौसम वैसे ही पेड़ पौधे होते तो ठंड रहती है।
0: हाँ, ठंडा रहता है वहाँ का वेदर। हाँ, अच्छा रहता है। तो कैसा लगता है जब आप गाँव जाते हैं, आपकी बचपन की यादें फिर से यू नो ताज़ा हो जाती होंगी ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, गाँव में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस समय तो आम का सीजन चल रहा है, बाहर अपना वहाँ चले जाते हैं,
0: अरे
1: वगैरह लगा रखा है खेत पे, तो और भी बढ़िया रहता है।
0: बगीचे में तो रौनक रहती होगी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और सारे लोग मतलब साथ बैठते हैं बगीचे में, हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, अपनी बातें सब करते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, अपनों के साथ समय बिताते हैं। तो रोहित जी, आज आप बताइएगा, आप गांव में इतने इस समय हैं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं
1: मेरे को? मैम गाना सुनवा दीजिए आप, आज मौसम बड़ा बेईमान है।
0: ओए होए होए, क्या बात है, बहुत सुंदर आपने ये गाना चुना है आज की दोपहर।
1: मौसम के अनुसार ही चल लिया मैंने आज।
0: जी बिल्कुल, फिट बैठते हैं मौसम के ऊपर, क्योंकि मौसम भी बेईमानी कर रहा है देखो।
1: हाँ लग रहा है बेईमानी हो रही है, क्योंकि कभी गर्मी कभी धूप कभी छाव ऐसी हो रहा है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। तो चलिए रोहित जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। धन्यवाद आपने कॉल किया हमें।
1: ठीक है मैम, ओके
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, आज मौसम बड़ा बेईमान है। वैसे हम कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करो कॉल लगाने में, जल्दी से कॉल लगाइए। आप नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। और ये प्यारा सा गाना आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ में। तो बिना किसी देरी के इस ट्रैक का लुत्फ़ उठाते हैं।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा
6: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी
7: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ट्रैक सुना भीग जाने थे बरसात में, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में, इस तरह से कुछ लिरिक्स है। बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना। लेकिन दोस्तों, बारिश में भीगने से बाल तुरंत ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन गंदा पानी, प्रदूषण और गलत हेयर केयर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहले ही बारिश में ज़्यादा देर भीगने से बचें, घर पहुँच कर बाल साफ पानी से धो लें और गीले बाल बांधने की गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है दोस्तों। लंबे समय तक स्कैल्प गीले रहने से एंड बालों में डैंड्रफ, इचिंग, खुजली बहुत होने लगती है, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो मानसून में बालों को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है, स्कैल्प साफ रखें, ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट से बचें, संतुलन आहार लें और ज़रूरत पड़ने पर हल्का कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बारिश में भीगिए लेकिन घर पर आकर हेयर वॉश भी कीजिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो बारिश में भीग कर आते हैं वो थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी मैम, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए।
0: हाँ जी, मैं बहुत हैप्पी हूँ आपसे बात करके जी। नाम भी बता दीजिए अपना। हाँ जी,
1: मौसम भी अच्छा हो रहा है।
0: हाँ, मौसम बहुत ही प्यारा है, स्पेशली हमने आपके लिए करवाया है। अब आप स्कूल जाते हो, गर्मी में थक जाते हो, तो हमने कहा चलिए मौसम को थोड़ा सा सुहाना बनाते हैं।
1: हाँ जी मैम, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। अपना शुभ नाम भी बताइएगा। अच्छा, एकता जी बात कर रही है मंडी चौक से, बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है मैम आज?
1: सॉरी मैं आपको नेम बताना भूल गई एक्साइटेड में।
0: हाँ, कोई बात नहीं, स्ट्रोक ही हो जाता है। एक्चुअली मेरे साथ भी कई बार ही हो जाता है।
1: हाँ जी,
0: बताइएगा एकता जी, आप कौन सा गाना आज सुनना चाहते हो? लॉन्ग टाइम के बाद आपने कॉल किया है।
1: सुनना चाहती थी ना, वो तो लिसनर ने चला दिया, आज मौसम है बड़ा ईमान, लेकिन जब मैं कॉल करी थी ना तभी चल जाता था। अब okay. आप मुझे यारिया मूवी से सॉन्ग सुनाइए, दिन की सिफारिश।
0: ओके, क्या बात है, ये गाना भी वैसे बहुत अच्छा है। और कुछ कहना चाहते हैं मैम न्यू स्टूडेंट के लिए, न्यू बच्चों के लिए?
1: बस ये है, बच्चों ने छुट्टियां अच्छे से एंजॉय की, अब आगे की पढ़ाई में लगे, तैयारियों में लगे बस, और यही कहना है बच्चों से।
0: ओके, जो न्यू अभी बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, नई नई क्लासेस हैं, बहुत सारे बच्चे मैम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे क्या होगा।
1: नहीं अब ऐसे तो हमारे टाइम पे होती थी, आजकल तो एक्टिविटीज इतनी होती है। आज हमने अपने स्कूल में रेनबो एक्टिविटीज कराई थी।
0: अरे वाह,
1: तो पढ़ाई पे इतना लोड ही नहीं है, हमारे टाइम पे तो कितना लोड होता था। अब तो बच्चे पढ़ाई वैसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक्टिविटीज के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है।
0: या मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहले के टाइम में तो बहुत सारी चीजें थी और अभी तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक मैम आपको। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया।
1: Welcome.
0: तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं एकता जी की रिक्वेस्ट पर, यारिया मूवी का ट्रैक एंड बहुत ही प्यारा गाना मैम ने चुना है। दोस्तों अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हो, आपके पास ये मौका है और हम नहीं चाहते कि हमारे श्रोता बिल्कुल भी इस मौके को मिस करें। तो फटाफट से आप मुझे कॉल करो, नंबर है 9837896896 और पहले से स्माइल करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप ऑन द वे कार में हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी सेफली केयरफुली ड्राइविंग कीजिए सर, एंड सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा और थोड़ा वॉल्यूम भी हाई कर लीजिए क्योंकि गाना बहुत प्यारा है।

0: क्यों किया लक्ष्य? क्यों?
1: मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ I love you.
0: बिल्कुल झूठ.

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपका अपना, जी हाँ, फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। खुशी यहाँ पर है, वक्त हुआ है 4:02। बाहर का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है, और इस खूबसूरत से मौसम में अगर आप अपने दिल के करीब कोई जो गाना है जिसको आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, कभी अकेले में बैठकर, या फिर कभी जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, या फिर कभी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, या फिर कोई ऐसा गाना जब आप अपने के साथ होते हैं, तो मुझे बताइए, फटाफट से कॉल कीजिएगा। नंबर हमारा रहेगा 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: मैं बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आज तो आपका ऑफ होगा, घर पर होंगे आप?
1: नहीं, काफी टाइम से मैं छुट्टी में, 15 दिन से पिछले महीने के 15 तारीख से छुट्टी में था मैं।
0: ओके, मेरे को लगा
1: ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैं चला गया था कहीं घूमने।
0: अच्छा अच्छा, नहीं सब अच्छा है, थोड़ा घूमना भी चाहिए। एंड मेरे को लगा क्योंकि आपका वीकली ऑफ होता है ना शुक्रवार को।
1: जी,
0: तो बताइएगा सर कैसा लग रहा है, मतलब 15 दिन से आप छुट्टी पर हैं, अपनों के साथ हैं, तो लगा कि 15 दिन बहुत ज्यादा हो गए, या फिर लगा कि कितनी जल्दी 15 दिन गुजर गए?
1: बहुत जल्दी 15 दिन गुजर गए मैम, पता भी नहीं चला, ऐसा लग रहा है अभी तो छुट्टियाँ शुरू हुई थी, एकदम से खत्म कर दी,
0: कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, तो बताइएगा सर आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: सॉन्ग है मैम, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा, सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाज।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपकी पसंद का, सुनिएगा। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए रिजवान खान जी की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, सुखविंदर सिंह साथ में सोनू निगम जी की प्यारी सी आवाज में। प्यारा सा ट्रैक लौट कर आती हूँ मैं अभी।

0: हेलो दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और खुशी हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश। दोस्तों, वक्त हुआ है 4:11 और अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह साथ में सोनू निगम जी की आवाज में, बहुत ही प्यारा गाना। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गोना मध्य प्रदेश से मांगीलाल दासर बोला मैम।
0: जी बताइएगा सर, आप अपने बारे में, कैसे हैं आप और आपके यहाँ का मौसम कैसा है सर?
1: गोना मध्य प्रदेश का मौसम अच्छा है मैम अभी।
0: अच्छा, बताइएगा सर कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं, इतनी दूर से आपने कॉल किए हैं हमें।
1: जी मैम, बहुत दूर से कॉल की है, आज पहली बार कॉल लगी है मेरी।
0: जी जी जी, बताइएगा आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज कार्यक्रम में?
1: आज मुझे मोहरा फिल्म का गीत सुनवा देना, ना तजरे की दाल ना मौसमों की आग। जी मैम।
0: जी, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी मैम, कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं खुशी बात कर रही हूँ सर।
1: जी मैम, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा।
0: जी थैंक यू सो मच, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। ना कचरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतने सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। बिना किसी देरी के सुनते हैं, फिर उसके बाद आपसे भी करेंगे बातचीत, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए एएस के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां डीएलएड बीटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: हाँ जी, मैंने पता है आपने बहुत सारा डांस कर लिया है, कुड़ियां नच रही हैं इस गाने पे, क्योंकि गाना बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड विशाल ददलानी की बहुत ही अमेजिंग सी वॉइस में ट्रैक सुना आपने। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको समय भी बता देती हूँ, वक्त हुआ है 4:33। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मोहर सिंह बलदेवपुरी की तुम्हारी।
0: जी बताइएगा मोहर सर, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, मैं नाच सुनाइए।
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा। रेडियो सुनते हैं, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम हमारे यहाँ के?
1: बहुत ही मस्त, बढ़िया।
0: जी तो आप बताइएगा, आज आपने कार्यक्रम में हमें कॉल किया है, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर?
1: मैंने गाना है भोजपुरी।
0: हाँ बताइए।
1: गाने को बोल है तोरा से प्यार हो गए।
0: अच्छा,
1: सेंध में हो तोरा से प्यार हो गए।
0: अरे वाह, ये भोजपुरी गाना आपको क्यों पसंद है?
1: ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छे है।
0: अच्छा, आपने रेडियो का वॉल्यूम बहुत हाई किया हुआ है, प्लीज थोड़ा सा कम कर लीजिए सर, क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है ना।
1: जी मैम, कम कर दिया।
0: जी तो आप भोजपुरी गाने सुनते हैं?
1: हाँ भोजपुरी सुनता हूँ, पिछली बार आपके राजस्थानी सॉन्ग सुना था।
0: अच्छा, अरे वाह, अच्छी बात है। अच्छा तो आपके कोई दोस्त भी हैं क्या बिहार से?
1: हाँ कोई दोस्त है मेरे।
0: अच्छा अच्छा, तो भोजपुरी सीखे हैं आप या नहीं उनके साथ?
1: नहीं भोजपुरी नहीं आती।
0: अच्छा,
1: गाने पसंद है।
0: गाने पसंद है तो गाने समझ में आते हैं ना आपको?
1: अच्छी तरह से।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक लाइन जरा गुनगुनाइए जो गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: नहीं नहीं, आवाज बेकार है मेरी।
0: आवाज बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, शर्माइए मत। अच्छा चलो सुनवाते हैं गाना, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, सर की पसंद का। लगता है इनको जुकाम हो रहा था, इनकी आवाज में वो इशू हो रहा था। लेकिन दोस्तों, ये बारिश का मानसून है, मौसम है, तो इस मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें। बाहर जब भी जाएं तो रेनकोट एंड छाता अपने साथ रखें और पानी की बॉटल तो हमेशा ऑलवेज अपने साथ ही रखिए, पानी पीते रहिए। ये गाना सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: क्या बात है दोस्तों, आपने अभी भोजपुरी गाना सुना, अमेजिंग था, बहुत ही प्यारा ट्राई। कल्पना खेसारी लाल यादव जी की आवाज में आपने ये ट्रैक सुना। और कुछ भोजपुरी गाने बहुत ही प्यारे होते हैं, जो सुनने में बड़ा मतलब हैपनिंग लगता है, अच्छा ट्रैक है। और बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं भोजपुरी, ऐसे नहीं है कि सब गानों का जो लिरिक्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन म्यूजिक बहुत कमाल का था और लिरिक्स भी बहुत ही खूबसूरत थे, गाया भी बहुत प्यारा था। तो चलो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका?
1: हर हर महादेव।
0: हर हर महादेव, नाम बताइए अपना।
1: मेरा नाम श्वेता शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद।
0: अच्छा, ओके, बताइए कहाँ, क्या करती हैं आप?
1: हम अभी पढ़ाई चल रही है।
0: अच्छा, पढ़ाई चल रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: इस टाइम तो खेत पर है।
0: अच्छा अच्छा, खेतों में क्या लगाया हुआ आपने? शलगम पालक। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ मुझे, आप खेतों पर रेडियो लेकर गए हो या एप्लीकेशन पर सुन रहे हो? ऐप डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो बताइए आप कौन सा गाना सुनेंगी आज? सॉरी, क्या कहा आपने?
1: सुनिया
0: सुनिया राता। अच्छा, सुनिया सुनिया राता, ते राता विच तू। ओके, चलिए सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। और कुछ कहना चाहते हो आप?
1: नहीं,
0: इतना क्यों शर्मा रही हो आप, बताओ मुझे। हेलो, मैं ठीक हूँ। आपने पहली बार कॉल किया है क्या?
1: नहीं, बहुत एक दो बार पहले किया।
0: अच्छा, तो आप इतना फिर ऐसे धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, ओके, चलो डियर सुनवाते हैं आपको ये प्यारा गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलो दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए और फोन बिल्कुल आपको दिल से लगाना है। हाँ, अब आप कह रही होंगी कि खुशी दिल से क्यों कह रही है। देखिए, जब हम कोई काम शिद्दत के साथ करते हैं ना, तो उसमें हमें सफलता जल्दी ही मिल जाती है। तो लगाइए कॉल, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और सुनते हैं शानदार ट्रैक।

0: भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है दोस्तों। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और आप सुन सकते हैं यहाँ पर एवरीडे मंडे टू सैटरडे हेलो फरमाइश शो फोन इन कार्यक्रम, जहाँ पर आप मुझे कॉल लगाकर अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा।
1: जय बजरंग रेडियो सोता संग बस तन बंडा बने जे लक्ष्मण को चाय वाली बोल रहा चाय पी लो दीदी।
0: थैंक यू सो मच, आपने हमें चाय के लिए कहा सर। बताइएगा आपका यहाँ का मौसम कैसा है।

0: बस अभी तो मौसम ठंडा है और पानी भी गिर रहा है।
1: अच्छा, बारिश हो रही है।
0: हाँ।
1: ओके, तो बताइएगा आप कौन सा गीत सुनेंगे सर?
0: आज गीत सुना दी वो दो रास्ते का देखकर जी रहे सभी।
1: जी जी जी बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।
0: और हमारे दूध से गजराज लोधी है, मांगीलाल चंदे, बसंती लाल सुलवर, दबन कटारे हैं
1: जी,
0: भाई हैं ये सब दोस्त हैं।
1: तो आज मौसम इतना खूबसूरत है, आपके यहाँ रिमझिम बारिश भी हो रही है, तो आपकी चाय की तो शॉप अच्छी चल रही होगी सर?
0: हाँ अच्छी चल रही है, और आप भी आएंगे दीदी पीने के लिए?
1: बिल्कुल आएंगे। तो सिर्फ चाय बेचते हैं आप या फिर चाय के साथ में कोई स्नैक्स वगैरह भी होता है?
0: सब मिल जाएगा, समोसा, जलेबी, रसगुल्ला, केक, मलाई की बर्फी, सब मिल जाएगा।
1: ओके थैंक यू, आपने हमें कहा सर। सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपकी पसंद का। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक। मैं लौट कर आती हूँ, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896899।

फिरो सू किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

देखिए दोस्तों, अभी बरसात तो नहीं आई लेकिन खुशी आ चुकी है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और वक्त हो गया है 5:09 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। ये वक्त है रीना जी का। जी हाँ, वो लेकर आती है मस्ती इवनिंग आपके लिए, जो मतलब आपकी शाम को बनाती है मस्ताना। थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बनाती है। एंटरटेनिंग इनका शो होता है एंड एंटरटेनमेंट का डोज ये देती है। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो बाय कहना, अभी मैं कैसे जा सकती हूँ बिना बाय आपको बोले। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हमारे पास आया था कनिष्का का कॉल बरेली से, और उन्होंने एक प्यारे से अमेजिंग से ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। साथ में उनके ब्रदर भी थे, आई रिमेम्बर, या तो वो भी, उन्होंने भी हमसे बातचीत की। बहुत अच्छा लगा कि बरेली में भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं एंड खूब तारीफ भी कर रहे थे भर भर।

0: आपके कि आपका शो हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है हमें भी जब इतनी दूर दूर से हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मिलूंगी मैं आपको संडे को, लेकिन हाँ रीना जी आपको मिलेंगे कल भी सैटरडे, और अभी तो वो आपसे बातचीत करने वाली है। हाय हेलो तो कर दो यार अपने दोस्तों को, बेसब्री से सुन रहे हैं आपको।
1: हाय गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं आप सभी से ढेर सारी बातें करने वाली हूँ श्रोताओं। फिलहाल के लिए ये जो गाना है बहुत ही शानदार है, इस गाने को एंजॉय करो, इसके बाद हम कम बैक करते हैं आप सभी के साथ।
0: हाँ जी, और मुझे दीजिए अनुमति, बाय बाय।
1: नहीं, हम तुम्हें अनुमति नहीं देंगे भैया, इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़की कल नहीं दिखने वाली है। कल मैं सच बताऊँ अकेले स्टूडियो में रह जाती हूँ, तो एक्चुअली मेरा मन नहीं करता इसको भेजने को। अब मैं ये बांध के रखती हूँ इसको।
0: अच्छा ठीक है, मुझे बांध के रखो, पर हाँ एक शर्त में मैं रुकने वाली हूँ।
1: क्या?
0: आप मुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े खिलाओगे।
1: अरे इतनी सी बात, बिल्कुल
0: पक्की बात, पिंकी प्रॉमिस।
1: अरे तुम पिंकी छिंकी जो भी कुछ करो पक्का।
0: चलो ठीक है डन। तो मेरा शाम का इवनिंग का स्नैक्स तो रेडी है दोस्तों, लेकिन आप ये गाना सुनो, बहुत ही प्यारा है, आपकी शाम को बनाएगा और भी ज्यादा अमेजिंग। बाय बाय।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है आर्जेरिना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। श्रोताओं, अगर मैं समय की बात करूं तो 5:18 हो चुके हैं और आज के टेम्परेचर की बात करूं तो वो भी 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि हवाओं में नमी है और संभावना यही है कि बारिश आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ऐसा ही वेदर रहना तभी भी काम चल जाएगा, बस गर्मी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी होने के बाद भैया इंसान परेशान हो जाता है ना, वो बाहर जाने का रहता है, घर के अंदर हो तब भी गर्मी लगती है। पंखे की हवा भी उस टाइम लगता है भैया कौन से भट्टी में से ये निकल कर आए है, कुछ समझ नहीं आता है। सो आर्जेरिना आप सभी के लिए, आप सभी के साथ दो घंटे के लिए कनेक्ट हो गई है आप सभी के साथ, जहां ढेर सारी बातें करने वाली है। देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और यात्राएं कहाँ से शुरू हो गई है और कहाँ के शुरू होने वाली है, आज का स्पेशल डे क्या है, क्या खास है, क्या खास नहीं है, हर चीज के बारे में बात करने वाले है। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगी कि संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उनका फास्ट भी रखा जाता है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यूं ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। और कहते हैं ना श्रोताओं, कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें गणेश जी का नाम जरूर लेना चाहिए। कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप काम करने जा रहे हैं ना, एक बार सच्चे दिल से गणेश जी का नाम लीजिए और अपने काम करने चले जाइए, वो आपका काम सक्सेस जरूर हो जाता होता है, क्योंकि ये प्रथम पूज्य भगवान है गणेश जी, और इनका नाम हमें हर जगह लेकर जाना चाहिए। चलिए, फिलहाल आप सभी के साथ ढेर सारी बातें तो हम करते रहेंगे, एक गाना आप सभी को सुनवाते हैं और बस आपने कहीं नहीं जाना है, आर्जेरिना के साथ कनेक्ट रहना है दो घंटे के लिए, ढेर सारी बातें करेंगे। और आप ऑन द वे है तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए जी।

हेलो, गुड वाली इवनिंग है जी। आर्जरीना के साथ मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो भी, और समय की बात करूँ तो 5:26 हो चुके श्रोता, और आपने कहने जाना है जी, बस आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहना है। और आज है 3 जुलाई, जो कि बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज से अमरनाथ की जो यात्राएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इस बरसात में भी, और मैं आपको बता दूं तो कटरा में इस टाइम बहुत जम के बारिश हो रही है, लेकिन जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि बरसात अपनी जगह, लेकिन भक्ति अपनी जगह। चाहे कितनी आंधी तूफान आ जाए, भक्त कभी नहीं रुक सकता है माता के दरबार में जाने से। और आज से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो गई है। सो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अपना ध्यान रखना हमें खुद रखना है, किसी और कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा। और आज एक बहुत ही प्यारी लाइन में पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आप सभी सख्त शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, और फिर जो बातें हैं आज हर चीज़ बात करने वाले, बस आपने कहीं नहीं जाना जी। आज रीना के साथ कनेक्ट रहिए, और ये वाला गाना बहुत ही शानदार है। इस गाने के बाद लौट कर आते हैं, और आपसे यही पूछना चाहेंगे, देखिए वेकेशंस तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी प्लानिंग चलती रहती है भैया घूमने जाने के लिए, कि यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। वैसे भी परसों संडे है, तो प्लानिंग तो आज से ही शुरू हो जाती है कि संडे को हम कहाँ जाएंगे। बहुतों की सैटरडे की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है, कॉलेजेस की छुट्टी होती है, तो कहाँ जाने वाले हैं संडे को घूमने के लिए, आप मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। चाहे अब बात वही है ना, जब श्रद्धालु इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में पहुंच रहे हैं, तो आप बताइए जी, आप कहाँ जाना चाहते हैं। चलिए सोचिए।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: हेलो जी गुड वाली इवनिंग है और समय की बात करूं तो 5:32 हो चुके हैं श्रोताओं और आज एक बहुत ही प्यारी लाइन हमने पढ़ी हुई है और हम इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये होता है ना कि हम मतलब कभी सामने से नहीं बोल पाते लेकिन घर पर या फिर कहीं और बैठे रहते हैं जब तो हम इतना ज़्यादा बोलते हैं कि दुनिया में हमसे ज़्यादा बोलने वाला इंसान तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है, कौन टक्कर लगा लेगा हमसे। लेकिन जब बारी वही खुद की आती है ना तो हम बोल नहीं पाते, सोचने लग जाते हैं कि यार मैं नहीं बोल पाऊंगा सबके आगे, भीड़ में तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा, बंद कमरे में चाहे चिल्ला लो कितना ही कुछ कर लो, ओह तब तो हम शेर बन जाते हैं। लेकिन वहीं जब बीच भरी महफिल में बोलने पड़ जाए तो बोल नहीं पाते हैं, यानी कि ये हमारी खुद के अंदर कमी होती है। आज वही चीज हमने चेक करी कि चलिए ठीक है पूछ लेते हैं। हमारी कमी कहाँ है? सबसे पहले हम हार मान लेते हैं कि नहीं हम तो इस चीज़ को काम कर ही नहीं पाएंगे, आप जबकि आपसे उनसे बुलवाने के लिए पूरी कोशिश करो लेकिन वही हार मान लेंगे, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा इस चीज़ के बारे में। अरे आप नॉर्मल भी तो बोलते हैं तो जिस टॉपिक पर आपसे बोलने को बोला जा रहा है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? मैं कहती हूँ हम इंसान ही कर सकते और आप ही कर सकते हैं, आप ही है धुरंधर, असली धुरंधर तो आप है, क्यों नहीं कर सकते आप काम? बस ये याद रखिए कि कभी भी हमें किसी भी चीज में हार नहीं माननी है। अगर आपने खुद से हार मान ली तो समझिए कि आप जिंदगी में हार गए हैं, जबकि जिंदगी बहुत बड़ी होती है और इस जिंदगी को जीने से पहले इंजॉय करने से पहले आपने हार मान ली तो एक बात हमेशा याद रखिए, हार आपको कहीं भी नहीं माननी है, चाहे कितनी बार भी प्रयास करना पड़े जरूर करेंगे, संघर्ष जरूर करिए, आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसीलिए कभी खुद के लिए हार मत मानिए, हमेशा बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ धुरंधर, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जिस दिन आपके अंदर ये टोन आ गई ना, आपने ठान ली ना अपने अंदर कि मैं हूँ मैं कर सकता हूँ ये काम, तो आप कभी भी जिंदगी में हार नहीं मान सकते हैं। और आज 3 जुलाई है, आज का स्पेशल डे क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक बहुत ही शानदार गाना गुरु रंधावा की आवाज़ में एंजॉय करते हैं।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है आर्जरीना के साथ। और कभी कभी श्रोताओं, अपने लिए ना हमें टाइम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इस भाग दौड़ की दुनिया में ना हम खुद को भूलते जा रहे हैं कि हम खुद कहाँ हैं और एक्चुअल में अपनी जिंदगी में हम कर क्या रहे हैं। तो अपनी जिंदगी में हमें खुद को सबसे पहले रखना है। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत ही फैंटास्टिक इंसान है। क्योंकि देखिए, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट है आर्जरीना के साथ, जहां समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं और आज का डे बहुत ही खास है। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई को यानी कि आज का डेज मनाया जाता है इंटरनेशनल हॉलीडेज डे। यानी कि हॉलीडे डेज इसलिए मनाया जाता है कि हम काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए घूमने के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। खुद के लिए हम टाइम जब ही निकाल पाते हैं, या तो बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है या फिर थोड़ा सा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तब निकालते हैं हम टाइम। लेकिन मैं कहती हूँ जी, ज़िंदगी एक बार मिलती है, हमें नहीं पता कल को हमें ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको खुलकर एंजॉय करना चाहिए, जी भर कर एंजॉय करना चाहिए। और देखिए, कमाना तो ज़िंदगी भर है, डेली आपको सुबह यानी कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही रह जाता है। एक बार आप काम करने लग जाओ, यानी कि हम स्कूल में होते हैं तो ये सोचते हैं कि ये वाली लाइफ बड़ी अच्छी है, और फिर वहाँ से सोचते हैं यार कॉलेज वाली लाइफ और भी बेस्ट होगी। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद ये सोचते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी, वो वाली ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी अच्छी वहीं से शुरू होती है जब आपकी जॉब लग जाती है, आपको पता चल जाता है एक्चुअल में क्या करना है। यानी कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक हम भाग दौड़ करते रहते हैं। तो इस भाग दौड़ की दुनिया में खुद के लिए टाइम निकालिए, इसीलिए ये डेज मनाया जाता है, यानी कि नेशनल हॉलीडेज डे। कि खुद के लिए टाइम निकालिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, खुद घूमने निकल जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें कि भाई तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ घूमने चल, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। हम आए अकेले हैं तो घूम क्यों नहीं सकते अकेले। इसीलिए डिसीज़न लीजिए, खुद घूमने निकल जाया करिए और इस ज़िंदगी को एंजॉय करिए, खुद से प्यार करिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ बड़ी सुंदर, सुकून भरी लगेगी। चलिए एक और गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं श्रोताओं आप सभी के बीच। बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि कहीं नहीं जाना है, आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहना है। ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए। चलिए जी, गाना सुनते हैं।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: जो मर भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे।
6: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
7: ऐसी जगह।
5: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
8: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
5: अरे

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अनारकली डिस्को चली चली रे चली डिस्को चली। देखिए, अगर आप बात नहीं मानेंगे ना तो मोहतरमा नाराज हो जाएगी, इसीलिए मोहतरमा की बात जरूर माना करिए भैया। पता चले डिस्को गली चली, यानी कि मायके चली गई है। फिर आप घर पर अकेले रह जाते, बोलते हैं कि यार मन नहीं लग रहा ऊपर से, और बच्चे घर में ना दिखे ना, सच बताऊं पूरा घर ऐसा लगता है सुनसान की तरह। बच्चों के बिना घर में रौनक ही नहीं रहती है, इसीलिए मोहतरमा की बात माननी बहुत जरूरी है। जब वो बोले शॉपिंग कराए तो भैया शॉपिंग कराए, जब बोले कि बाहर घूमने जाना है तो घूमने चलना है, मतलब बोले हाँ तो हाँ, हर चीज में हाँ हाँ करनी है आपने। ठीक है जी, ऐसे करेंगे तो जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे आप। फिलहाल बात कर लेते हैं, यानी कि बॉलीवुड की गलियों की तरफ चलते हैं भाई। पता तो लगे आखिरकार कौन सी मूवी रिलीज हो रही है भैया। लेकिन आजकल हर जगह देखा जाए तो धुरंधर धुरंधर धुरंधर, यानी कि धुरंधर ने ऐसा धमाल मचा रखा है, ऐसा गर्दा उड़ा रखा है ना भैया, कि हर कोई धुरंधर के दीवाना हो चुका है। बस देखा जाए, अगर मैं धुरंधर की बात करूँ तो इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ज्यादा कमाई की है, और इसी बीच इसी मूवी के कारण, यानी कि रणवीर सिंह हैं, यानी कि बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन चुके हैं। कुछ भी थोड़ा सा भी छोटा सा भी ऐड करवाना भैया, यानी कि तेवर अपना बहुत ज्यादा है, और तेवर की छुरी जब भी चलेगी, जब क्या पैसे निकलेंगे। अब ये जो धुरंधर मूवी है, ये कहा जा रहा है कि 10 जुलाई को जापान में, यानी कि रिलीज होने वाली है। अब देखिए, जापान में भी ये जो धुरंधर मूवी है, यानी कि 10 जुलाई को रिलीज होने जा रही है भैया। ये जो मूवी है, रणवीर सिंह है, हर जगह अपना जो चर्चा है वो बस ऐसे बिखेरे जा रहे हैं, यानी कि हर इंसान के दिल में इनके लिए जगह इतनी शानदार वाली बन गई है ना। अब वही है ना, जो मेहनत करता है इंसान वो छाता तो जरूर है, देखिए जो गरजता है वो बरसता तो जरूर है। ये गरजते हैं लेकिन बरसते हैं इतने अच्छे शानदार से कि हर किसी के दिलों पर ये राज कर लेते हैं, और हर जगह इनकी ही मूवी के चर्चे चर्चे हैं। चलिए, और ई रिक्शा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कम म्यूजिकल ब्रेक और लौट कर आएंगे। तो यानी कि ई रिक्शा के बारे में देखा जाए तो कल से ही बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर, अखबार में, हर जगह इन्हीं के चर्चे हैं। आखिरकार क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा गाना, उसके बाद लौट कर आती हैं। श्रोताओं, आपने कहीं नहीं जाना है, बस सुनते रहना है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास ना कुछ मैसेज आ गए हैं, तो उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। चलिए जी, शामिल करते हैं कि किन का क्या मैसेज आता है। सो ये हमारे पास, अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि रोड पर रेलवे स्टेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जाम है, और कृपया जब भी आए तो लोकेशन जरूर सर्च करें। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, लोकेशन जरूर सर्च करने चाहिए। गुड वाली इवनिंग है रीना जी, वेरी गुड इवनिंग जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली कनेक्ट होते हैं, निज़ाम अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त हैं। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और गाने बहुत ही फैंटास्टिक प्ले कर रही हो। थैंक यू सो मच जी। फिलहाल धुरंधर की हमने बात की तो धुरंधर मूवी से

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the new...

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है यार। जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:08 हो चुके श्रोताओं। और कल से ही आपने ई रिक्शा के बारे में बहुत सारी अपडेटें सुन ली होगी, इंस्टाग्राम पर अखबार उठा रहे हैं तो हर चीज़ वही दिख रहा है, यानी कि देख जो ट्रेंड में होता है ना वही सबसे ज़्यादा बिकता है। और हम ये गलत फहमी लगा कर बैठे हैं कि जो ऑटो रिक्शा है वो बंद हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार को भी पता है भैया, जो बहुत मिडिल क्लास ही हैं उनकी कुछ घरों के खर्चे तो भैया ई रिक्शा चला के ही चलती है, यानी कि दिन में कमाते हैं तब जाकर शाम को बच्चों और अपना पेट भर पाते हैं। अब ये ई रिक्शा उन ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की जाएगी जो कि ऐप के माध्यम से ई रिक्शा चलाई जाती है। सरकार का ये कहना है कि ऐसे ऐप को बंद करने का सिर्फ एक ही मात्र है कि देखिए, मान लीजिए ई रिक्शा चलाने वाला अगर चलाते चलाते कहीं ऐसे जगह फंस जाता है और एकदम ऐप के माध्यम से उस ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, जो ड्राइवर है, ई रिक्शा वाले जो ड्राइवर है वो तो परेशान हो जाएंगे, यानी कि सोचिए फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो जो ये ऐप है उसको बंद करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि सुरक्षित रहे आप भी, और ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिसीज़न है सिर्फ और सिर्फ ऐप को बंद करने का है। आप ई रिक्शा चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये जो ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आप ही अपने सवारी को लेकर जा रहे हैं और कैसे कहीं ऐसे बीच सड़क पर आप एकदम हाईवे पर ही जहां पर ट्रैफिक जाम हो और एकदम आपकी जो ई रिक्शा वो बंद कर दी जाती है, ना आप आगे जाने के रह जाएंगे ना आप पीछे जाने के रह जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कि ताकि कोई भी परेशानी ना हो, तो इसीलिए जो ये ऐप है उनको बस बंद करने की जो चेष्टा है वो की जा रही है। और भी अपडेट के लिए बस ऐसे ही आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी के लिए कड़क सवाल भी लेकर आएंगे श्रोताओं, फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहना है, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि गुनगुनाना बहुत जरूरी है। चलिए जी, एक और शानदार गाना

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: क्या आप सर दर्द कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट मिर्गी ब्रेन ट्यूमर रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर संपर्क करें 9548539705

0: से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:18 हो चुके श्रोताओं, और आज की तारीख भी बेहद खास है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो भी 36 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जिंदगी में ना कुछ कदम अपने लिए जरूर उठाने चाहिए हमें।

हाँ जी बिल्कुल, नखरे वखरे बिल्कुल नहीं करने हैं हमें, और अपने लिए डिसीजन जरूर लेना है। यानी कि दोस्तों, जिंदगी में कब किसे इलाज की जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर आपने आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र है तो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाइए। यह कार्ड जरूरी है कि समय सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा आपको मिलती है। इसीलिए देर ना करें, अपने नजदीकी SES केंद्र या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जो आयुष्मान कार्ड है उसको जरूर बनवाइए। और आयुष्मान कार्ड बनवाइए क्योंकि स्वस्थ परिवार ही खुशहाल परिवार की पहचान है। इसीलिए, और भाई जो मिडिल क्लास है के हैं हम सब फैमिली, मतलब कभी कभी इलाज करवाने के लिए ना सोचते हैं और इसी चक्कर में हम डिले कर जाते हैं और वो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस टाइम कम पैसों में जहाँ होने वाला काम था वो ज्यादा पैसों में की जाती है। इसीलिए आयुष्मान कार्ड बनवाना हर के लिए बहुत जरूरी है। माता पिता जरूर बनवाए और उसी में बच्चों का नाम भी अपना मेंशन जरूर करवाए। ये बनवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सरकार जब आपको सुविधा दे रही है तो उसका लुत्फ भी उठाना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप पता क्या बोलेंगे। मैं सुनवाती हूँ सुनवाती हूँ, एक गाना है उससे ही आपको पता चल जाएगा। चलिए गाना एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं आप सभी के लिए। ठीक है जी, और फिर आप बोलेंगे हाय हाय आपका क्या होगा अगर नहीं बनवाएंगे तो। इसीलिए बनवाना बहुत जरूरी।

हाय हाय, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है जी। और समय की बात करूँ तो 6:25 हो चुके श्रोता, और एक मेटा को ना बहुत ही प्यारा सा नोटिस भेजा गया है कि देखिए इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। हालांकि हमें बच्चों को ना बिल्कुल भी फोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर जगह अब यही कहा जा रहा है कि 15 से जो 16 साल तक के जो बच्चे हैं, यानी कि उनको फोन ना दिया जाए, इंस्टा पर उनका अकाउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया, मानते कहाँ हैं आजकल के बच्चे? आजकल के बच्चे इतने धुरंधर हो चुके हैं कि भाई मम्मी पापा को भी नहीं पता चलता कि फोन में कौन सा सेटिंग खोल देते हैं, उनको भी नहीं पता चलता, उल्लू बना देते उनको, है ना। लेकिन इसी बीच यानी कि मेटा को एक नोटिस दिया गया है कि इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कि आप रील स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसे वीडियोस आ जाती हैं जो कि आजकल की जेनजी के ऊपर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि ऐसे वीडियो जो कि ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, इसी के ध्यान में रखते हुए यानी कि नोटिस भेजा गया है कि ऐसे जो अकाउंट है उसको इंस्टेंट बंद कर देनी चाहिए। ऐसे अकाउंट को कोई भी इंस्टाग्राम पर अगर कोई ऐसा अकाउंट बनाता है, उस अकाउंट को वही ब्लॉक कर दिया जाए, वो अकाउंट इंस्टाग्राम पर नहीं दिखना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करती हो तो एक्शन लिया जाएगा, और ये सही भी है। देखिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को, जो कि बड़ों को भी नहीं पता रहता, वो बातें उनको पता रहती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अभी ध्यान, क्योंकि बुक्स में और पढ़ाई में ज्यादा होना चाहिए, जहाँ कि आप कल हर कोई ब्लॉग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ट्रेंड में है। ट्रेंड के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलतियां हैं, उसको नजरअंदाज हमें करनी चाहिए। इसीलिए मेटा ने, सरकार ने सख्त से सख्त हर चीज पर भाई चाह रही है कि बच्चे सही चीज देखे। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम स्क्रॉल करते कुछ चीजें ऐसी आ जाए जो नहीं देखनी चाहिए। सो आपके इस पर क्या राय है कहने के लिए आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। चलिए जी, फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईपीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। मैं तो सुपरमैन सलमान द फैन। आय हाय अर्जुनीना, और आप, मैं आपको बता दूं कि आप फैन है एफएम मुरादाबाद रेडियो की। जी बिल्कुल, जिसे भैया इतना प्यार आप भर भर के देते हैं ना कि क्या ही कह सकते हैं। आप सभी का प्यार हमें यहाँ पर खींचे लाता है। और समय की बात करूँ यहाँ पर तो 6:36 हो चुके हैं, और इसी बीच मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए कड़क क्वेश्चन। और आज का कड़क क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो कि गर्ल्स, वुमेन, दादी, नानी इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकती है, और आप भी दे सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आपके पॉकेट से निकलते हैं जी। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियां साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही खरीदती है? खरीदती थोड़ा कम पैसों का है, लेकिन उसके पास पैसे आ जाते हैं डबल। आखिरकार वो कौन सी चीज है? आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896 पर बताना है, क्योंकि अब वो डे आने वाला है। सो देखिए, इतना तो मैंने बता दिया आपको, फॉर एग्जांपल भी आपको पता लग गया है, जो थोड़ा कम पैसों में खरीद लेती है लेकिन डबल पैसे आ जाते हैं उसके पास। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियां और जो हमारी प्यारी विमेन है, दादी है, बुआ है, साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खरीदती है? सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल ये जो गन है ये भी बड़े ही बिंदास्त है जी।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने।

स्प्लिट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इस सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। देखिए, गुनगुनाना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, और समय की बात करूँ तो भैया समय भी अपनी पूरे तेवर में रहता है। और वेदर की अगर मैं बात करूँ, अर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है, वेदर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहा जा रहा है कि भैया यूपी के कई राज्यों में कल झमाझम बारिश होने वाली है, और साथ ही साथ आंधी तेज चलने की संभावना जताई जा रही है। सो आपसे यही कहना चाहेंगे, आंधी तूफान जब तेज हो तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, इस चीज़ का आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि खाली एरिया में अगर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको चोट लगने की दिक्कत हो सकती है। सो आप खुले एरिया में जाने से बचें और बाकी मौसम का आनंद लेते रहिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि हमें जिस टाइम बरसात की ज़रूरत होती है ना भैया, उस टाइम बारिश आती नहीं है, और जिस टाइम हमें ज़रूरत नहीं होती है उस टाइम बारिश आती है। यानी कि अभी भाई किसान भाइयों के लिए यानी कि बारिश की बहुत नीड है, क्योंकि खेतों में फसलें लगने शुरू हो गए हैं, धान लगने शुरू हो गए हैं, और इस टाइम बारिश की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और ये बादल भी ना मतलब हमारे साथ बहुत अच्छे गेम खेलते हैं, बहुत अच्छे मौसम है ये जो गेम खेल जाते हैं। यानी कि जब धान पकने लग जाते हैं ना, जब तो ये डेली झमाझम बारिश होंगे, इसीलिए तो चावल्स महंगे हो जाते हैं। जब भैया खेत में फसलें नहीं होंगी तो चावल तो कॉमन बात है कि महंगी होंगी होंगी। तो भगवान जी इस टाइम बरस जाइए, आपको जितना बरसना है, जब धान पके तो थोड़ा रहम कर दिया करिए, ठीक है जी, अभी बरस जाइए। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल मैंने आप सभी से पूछा है, बस थोड़ा सा आपने सोचना तो पड़ेगा। देखिए, बिना सोचे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जहाँ हमें सोच समझ कर ही आखिरकार क्या होने वाला है इसका आंसर, तभी आप रिप्लाई दे पाते हैं। सो आज का हमारा कड़क सवाल यही है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़कियाँ, विमेन, बुआ, दादी, नानी साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खरीदती है और डबल पैसे लेकर चले जाती हैं। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896, जिसका डेज भी बहुत ही आसपास है जी। सोचते रहिए, और एक और गाना आप सभी के बीच, सो इस गाने को एंजॉय करेंगे श्रोता, और इसी गाने के बाद आप सभी के मैसेज भी शामिल करेंगे।

0: हेलो सर, चलो।
1: क्या बात है जी, चलते हैं चलते हैं। इनका आंसर हमारे पास राइट आता है क्योंकि अब बारी है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के मैसेज शामिल करने की, क्योंकि अब मैसेज शामिल करेंगे जी। तो आज का हमारा सवाल यही था कि आखिरकार लड़कियां साल में सिर्फ एक बार क्या खरीदती हैं। थोड़ा सा सोचना था कि भैया बिना सोचे समझे तो कैसे रिप्लाई दे पाएंगे, नहीं ना? तो चलिए देखते हैं।

प्रिय मित्र आरजे रीना जी, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। नौनेश कुमार जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि भाई राखी बंधन का समान, यानी कि राखी बंधन का समान। अच्छा जी, चलिए अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती है इशिका गुप्ता जी लाइन पर मझोले मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि राखी। ओके जी, और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है, इनके दोस्तों के नाम भी लिखा, भैया सोनू मोनू रीना रुचि। और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, जय श्री राम रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है राखी। अगले मैसेज की बात करूं तो रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड इवनिंग मैम, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। पहेली का आंसर होता है राखी। ये हमारे साथ राधिका जी कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है कि राखी लड़कियां भाई के लिए साल में एक बार खरीदती है। ओके जी, लेकिन ये दो बार क्यों नहीं खरीदती है?

0: नमस्ते जी, मुरादाबाद से डीएन गो से ये भैया नाम आपने कहाँ मेंशन किया है, और इनका कहना है कि भाई के लिए राखी खरीदती हैं। लेकिन सर आपका नाम तो हमें नहीं दिख
1: मैं
0: रहा
1: कमली
0: है।
1: कमली तेरे प्यार
0: इनके
1: में।
0: नंबर के 4 डिजिट हैं, यानी कि 2787861।
1: तेरे बिना

तेरे माहिया। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रणवीर सिंह कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से। और जो आपने जो आधार कार्ड के जानकारी दी है बहुत अच्छी लगी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। ये तो हमारा काम है कि आपको हमें मतलब रहता है कि अपडेट आप तक पहुंचनी चाहिए। और आयुष्मान कार्ड बनवाना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जब सरकार की तरफ से कुछ चीजें आपको मिलती हैं तो देखिए उसका लुत्फ उठाना बहुत जरूरी है। और इन्होंने कहा है कि आपके सवाल का जवाब होता है राखी, रक्षा बंधन पर राखी खरीदती है। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबली अंजान जी, गीता कश्यप, ललिता जी। और जो आपने आज सवाल पूछा है उसका उत्तर होता है यानी कि राखी। ओके, चलिए और अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।

Mi hola. संजू जी कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि हाय दी, कैसी हो आप? कल वो दिन है जिस दिन मैं रोई थी, यानी कि कल इनका बर्थडे है। ओके जी, और इनका कहना है कि संजू जी कहती है वो दी परस है जिसमें हम 100 रुपए में लेते हैं और 1000 रुपए रख कर ले जाते हैं। ये आंसर नहीं होता है जी।

0: रीना जी, आप हमें भूल गई नहीं जी, हम आपको नहीं भूल सकते हैं। इन्होंने नाम लिखा है कि सलीम अंसारी है जी। नहीं जी, आपको कैसे भूल सकते हैं सर, बट इसमें नाम आपका शो नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और अगले मैसेज की बात करूं तो इनका मैसेज आता है और इनका कहना है कि राखी है। हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, और हमेशा। और इनका कहना है कि हमारे हस्बैंड जी है जो अभी आए हैं, तो इन्होंने अभी मैसेज किया। भैया फोन खराब हो जाता है तो बड़ी दिक्कत, बहुत परेशानियां हो जाती है। गाने बिंदास सुनवा रही हो आप, थैंक यू सो मच जी। और अब मैं अगर बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है, यानी कि नवनेश कुमार जी का मैसेज हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर पहुंचा था राखी। और आप सभी ने बहुत ही शानदार, बहुत ही फैंटास्टिक वाला आंसर दिया है। सच में इस दिन को कैसे भूल सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि हम साल में सिर्फ एक बार खरीदते हैं। थोड़ा भैया सस्ते भी खरीद लेते हैं लेकिन पैसे डबल आ जाते हैं हमारे पास, हालांकि हम मांगते नहीं हैं लेकिन वो आ जाते हैं। सो वो है आज का राइट आंसर होता है राखी। तो अभी इसी राखी के साथ में लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। हम आपको मिलेंगे कल सेम टाइम। नहीं नहीं नहीं जी, सेम टाइम आपको हम कल कैसे मिल सकते हैं? हम आपको कल मिलेंगे यानी कि 10 बजे मॉर्निंग मसाला शो में। भैया बाहर ढोलक बज रही है, उसकी आवाज आ रही है। आप ये मैं सोचे कि स्टूडियो में ढोलक बज रहा है, नहीं नहीं नहीं जी। चलिए जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, मैसेज जरूर करिए, सोच कर रखिए भैया कि कल आपने कौन सा गाना सुना है और कल का क्या डेज रहेगा, हर चीज के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। 7 बज चुके हैं और घड़ियों की जो घड़ी के स्टूडियो में जो घड़ी है ना, वो मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती कि रीना आप 7 बजे से यानी कि बाद में नहीं आ सकते हो, इसलिए गाइस मुझे जाना पड़ेगा। बाय, आई नो कि आप सभी अपना ध्यान रखिए और पानी देखिए, पीते रहिए, पानी पीना बहुत जरूरी है।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रबड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात तो स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले

0: में फैल जाती है।
1: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
0: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
1: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
0: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
1: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
0: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
1: इसलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
0: अब बारी है मेरठ की मशहूर गज्जक की। गज्जक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
1: बहुत लोग रेवड़ी और गज्जक को एक जैसा समझ लेते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है जबकि गज्जक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
0: यह सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
1: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
0: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना,
1: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
0: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वादों की नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नान खटाई। नान खटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारी को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान खटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नान खटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
1: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
0: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
1: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
1: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
0: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
1: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सबके लिए हमारे मन में हो, ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
2: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
0: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
4: यूपी का APY स्कीम में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश वर्ष की बात करें तो 9,25,00,000 से ज़्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज आप देख सकते हैं कि यूपी का काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफ़ी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण।

0: कहा उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन, प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश, मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं कर रहा हूं आपसे बात, और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात तो लेकर आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती। तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
2: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
1: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं। फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुने। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहिणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना वो जितने शातिर है ना आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
3: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
4: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।

0: सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। कहानियों की एक परी यातना कभी लगी।
1: मंत्री ने बताया कि दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सके और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर सभी से संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि ये केवल विशेष दिन तक सीमित न रहे, बल्कि सभी की रोजमर्रा की आदत बनना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर से निकलते समय कपड़े या जूट का थैला साथ रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक थैलों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली के निर्माण में सहभागी बने। दिल्ली के भागीरथी जल शोधन संयंत्र में आज स्कूली बच्चों ने वाटर ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया को करीब से समझा, साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास के रोडमैप की समीक्षा की गई।
3: बैठक के दौरान आगामी मास्टर प्लान, नागरिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने तथा शहर के लिए नियोजित समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर व्यापक चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने DDA को निर्देश दिए कि वे जमीन के टुकड़ों और इमारतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल करके अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलजुल कर काम करने, पारदर्शी और तकनीक पर आधारित तरीका ही सबसे जरूरी है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: दिल्ली के लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में आज नव निर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फ्रंट ब्लॉक में 6 बेड का डे केयर सेंटर, 12 कंसल्टिंग रूम, 1 डे केयर रूम और 1 कॉन्फ्रेंस रूम विकसित किए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत सभी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, ऑनलाइन जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सुविधाओं से देश के हजारों नागरिकों को बेहतर और त्वरित उपचार का लाभ मिलेगा।
4: हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें

0: प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहाँ आईसीयू बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहाँ लेके जा सके। हमने दिल्ली राज्य में सोटो ऑर्गन डोनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ दानदाता और रिसीवर दोनों को कनेक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ऑर्गन डोनेशन का काम कर सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
1: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में प्रारंभ की गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SRIR प्रक्रिया को लेकर प्रथम समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली भाजपा महामंत्री और SIR प्रक्रिया प्रमुख योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि दिल्ली में अन्य दलों की तरह ही भाजपा के भी बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग बूथ हैं और इनमें 12,000 से अधिक पर भाजपा के BLA2 चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 21 छात्रों को HCL टेक बी नामक निजी कंपनी में अर्न वाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाएं प्रोग्राम के जरिए रोजगार मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि यह उपलब्धि सभी छात्रों की क्षमता को दर्शाती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत की समग्र शासन की अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के समन्वय की आवश्यकता है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में दक्ष के तीसरे बैच के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: दक्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक वर्षीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, जिसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग और लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण से संस्थानों में तालमेल स्थापित होना चाहिए ताकि 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम शासन प्रणाली तैयार की जा सके। उन्होंने वर्तमान बैच में महिला अधिकारियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व सराहना करते हुए इसे भारत के बदलते नेतृत्व परिदृश्य का सकारात्मक प्रतिबिंब बताया। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि आज नेतृत्व विकास का दायरा व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने से कहीं अधिक है, जिसमें तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकियों और शासन मॉडल के अनुकूल होने में सक्षम संगठनात्मक और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आयोग AI, उभरती प्रौद्योगिकियों और संस्थागत अनुकूल क्षमता जैसे भविष्योन्मुखी विषयों को अपने क्षमता निर्माण ढांचे में एकीकृत कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल इस साल 8 अक्टूबर से अगले 5 वर्षों तक रहेगा। प्रोफेसर सिंह ने वर्ष 2021 में कुलपति का पद संभाला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों ही श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीकरण नहीं मिल जाता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की इस तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश्वाक्षा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अमरनाथ यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट आस्था और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बर्फानी की असीम कृपा से सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा मंगलमय और सफल हो। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर एप्पल ऐप स्टोर से भी हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार करके एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित करवाना और उद्योग संघों कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू कर दी है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर शाम के समय हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोड मैप की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति हुई और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
5: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम है, जिसमें आप ही के लोकल फॉर वोकल के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद होती है, हमें पसंद होती है और हमारे इस पूरे शहर वालों को पसंद आती है। इनफैक्ट जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुनते हैं, आप सभी को पसंद आती है। और ये जो शेरो शायरी का माहौल है ना, यहाँ पर शेरो शायरी एक अलग अंदाज में होती है, तो प्रोग्राम का जो रुतवा है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इस प्रोग्राम को धांसू बनाने के लिए अखिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी ऐसी शायरियां मारेंगी जिसे सुन के मैं बाहर भागना तो चाहूंगा लेकिन भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो बंद कर दिया। हेलो जी, हाउ आर यू?
6: कैसे
5: आपका ये मैंने तारुफ कराया है, ये आपकी आइडेंटिटी है।
6: धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमारा
5: धासू वाली वेलकम किया, मैंने वार्म वेलकम जिसे कहते हैं।
6: आपके धासू वेलकम पे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस
5: कोई शायरी मारूं,
6: आज की जो कुंडी है ये गेट वाली खुलेगी नहीं पहले।
5: अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। खैर ये तो जोक सपाट की बात है। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है, और आप बिल्कुल धाकड़ आरजे बनते जा रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन आप जो है उन्नति प्रगति दोनों ही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
6: आशीर्वाद है हमारे पास, बाबा आनंद जी का हम पे आशीर्वाद है।
5: अच्छा ये कोई नए देवता है कि मुझे उनकी फोटो जरूर शेयर करिएगा,
6: मैं भी आपको बस अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर।
5: ठीक है, सो दोस्तों ये तो जोक सपाट चलता रहेगा, तो अखिल भैया आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है ना,
6: बहुत,
5: क्योंकि आज आपने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को बुलाया है।
6: और जिन्हें हमने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया है कि हमने बुलाया है उसे,
5: लिसनर्स की डिमांड पे दोबारा बुलाया गया है,
6: लिसनर्स की डिमांड पे उन्हें दोबारा बुलाया गया है। उन्होंने ऐसा कमल खिलाया है कि उसे हर कोई अब देखना चाहता है।
5: क्या बात है, और सुनना भी चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी बात के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार,
7: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं?
5: हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
7: बहुत अच्छा हूँ सर, बाकी आप लोगों की कृपा है, दोस्तों का साथ है
5: जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए हमारे मुरादाबादीज को।
7: सर तारुफ पिछला वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक।
5: लेकिन अभी तो आप आए हो तो ये तो आप चेंज हो, टी शर्ट चेंज है, आपका लुक चेंज है, स्टाइल चेंज है,
7: कपड़े
5: तो
7: चेंज
5: हो सकता है आप भी थोड़ा चेंज करके बोले। क्यों अखिल जी?
7: बस सर कपड़े चेंज हुए, बाकी पुराना वाला चल रहा है
5: जो नए लोग सुन रहे हैं।
7: देखिए
5: पिछली बार जब कमल सर आप आए थे तो वो लिसनर तो थे ही, अब कुछ नए भी जुड़े होंगे तो वो तो जानना चाहेंगे ना आपके बारे में, क्योंकि रेडियो पे तो हर दिन नए लोग सुनते हैं। जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना।
7: चलिए सर, मेरा नाम शर्मा है जी, मुरादाबाद का निवासी हूँ, आप छोटे से मोहल्ले चंद्रनगर का
5: जी जी,
7: और पिछले कई सालों से सर्जिकल सेल्स के जुड़ा हुआ हूँ जॉनसन जॉनसन के साथ, और थोड़ा सा शौक है लिखने लिखाने का, तो इस वजह से कुछ भाई लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं मुझे, और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं।
6: आज बढ़िया, आज जो है एक मन में एक सवाल उठा है कमल जी से पूछने के लिए। हाँ। और ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये आनंद जी का भी सवाल है, जितने भी हमारे लिसनर
5: सभी का सवाल
6: है कि कमल जी एक बार बताइए कि आपके लिए जो शायरी है वो सिर्फ एक शब्द है या एक एहसास है?
7: सही कहूँ तो मेरे लिए एक एक एक, एक शांति है, एक सुकून है, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखता हूँ, कुछ ऐसी दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक करती है और उसको आगे बनाता हूँ, तो मन में बहुत असेटिस्फेक्शन सा लगता है कि हाँ कुछ किया है अलग हटके कुछ
6: तो
7: किया।
6: ये शांति सुकून आपको शादी के बाद से कब कब महसूस हुई? मतलब
7: आप फिर उसी विषय पर पहुंच रहे हो।
5: देखिए ये इनकी शादी हो गई इसलिए आपको स्टार्टिंग में वहीं ले जा रहे हैं। खैर ये बात तो हम जरूर आपसे पूछेंगे,
6: ये वर्ड आजकल सुनने में अच्छे लगते हैं।
5: कोई बात नहीं, बिल्कुल हम
7: अखिल जी क्योंकि खुद शादी शुदा था वो
5: इसीलिए कमल सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों आप समझिए होंगे बहुत ही स्पेशल होगा, और कुछ लाइनें अगर आपकी हो जाए हम जो है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ आगाज अगर आप कर दें अपनी चंद पंक्तियों से तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। क्यों अखिल जी?
6: बिल्कुल सही बात।
5: मैं निवेदन करूंगा अखिल जी आप अपनी पंक्तियों को जरा दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालेंगे
6: जो मेरे अंदर से निकल रही है।
5: थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल वो नाना पाटेकर करते हैं ना कंट्रोल। जी जी सर, मुरादाबाद के लिए आप कुछ अभी जिक्र कर रहे थे हमसे।
7: सबसे पहले जिक्र करते हैं जिससे आजकल सब लोग मतलब एक दो चार हो रहे हैं, गर्मी।
5: बिल्कुल, आज तो खैर मौसम काफी ठंडा है,
7: मौसम काफी ठंडा
6: दो चार भी हो रहा है और रात में दो दो बजे चार चार बजे भी एक साथ हो रहा है।
7: बिल्कुल, क्योंकि बत्ती नहीं आ रही है। धन्यवाद योगी जी का कि एक दिन भरपूर बत्ती मिली है हमें। तो चार पंक्तियां देखेगा गर्मी पर कि तुम जून सुलगती गर्मी के,
5: वाह
7: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ।
5: वाह जी वाह।
7: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ, तुम पहरेदार हो सूरज के मैं मानसून की बारिश हूँ।
5: क्या बात है, मानसून की बारिश, मैं मानसून की बारिश हूँ। अच्छा मानसून की बात हुई है तो अखिल भाई क्यों ना एक वो ऐसा ही गाना हो जाए थोड़ा सा, है ना बारिश वाला, तो प्रोग्राम जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा। फिर हम अखिल भाई की शायरी सुनेंगे इसी बात पे। तो कमल सर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम में और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। अभी थोड़ी देर में लौटेंगे एक अमेजिंग ट्रैक के बाद, आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। खूबसूरत गाना, उसके बाद लौट कर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको आज... तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे जिसमें कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से
1: जी
0: दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो। मैंने एक दो लोग ज्वाइन हो,
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्तियाँ आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर एक कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे। खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है। और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले,
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं। लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: बस कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं।
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवेज सर हाँ आपका स्वागत है
2: सर
0: जी। सर तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है। लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: शौकिया बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस चला जाए। तो दो लाइनें उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी, इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
1: कि थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है ये तो, बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाएं?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कि कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
1: नहीं,
2: मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूँ, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं।
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता। हाँ, है आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर, मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका, मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल,
0: है ना। आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे, इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: सुनप्रत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको आज... तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो। मैंने एक दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, हम फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे, खैर उस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया है मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है, क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं?
0: नहीं नहीं, उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर, हाँ आपका स्वागत है जी सर। तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी, तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस चला जाए। तो दो लाइनें उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी, इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
1: कि थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू
0: बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाएं?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठें मैं मन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठें मैं मन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठें मैं मन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उसी ट्रैक पे चले जाएं। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूं, आप फिर उसी ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूं ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकेलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है।
2: दोनों ही चीजें हैं,
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता। हाँ, है आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही
1: है। मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब क्यों, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना, आपका भी अखिल भाई। मैं खैर बाद में डिस्कशन करूंगा, एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजा।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसे सही, जिंदगी सही।
0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना ही अपना एफएम मुरादाबाद।
1: बिल्कुल आपने कहा अखिल भैया, आपका अपना ही अपना और सब कुछ अपना ही तो है यहाँ पे। हम भी आपके अपने हैं, हमारे कमल जी भी हमारे अपने हैं, और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। तभी तो ये कनेक्शन बनता है दिल से दिल तक का। और इसीलिए आपने अपने शो का नाम भी रखा है, बहुत चालू हो रहे हो, दिल से दिल तक शो रख लिया है।
0: आज सारे लिसनर्स आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा,
1: अखिल भैया की थोड़ी फिरकी ले रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ शो में, मतलब ऐसे दिल से दिल तक में तो पहली बार ही हम मिल रहे हैं।
0: आज कॉल बहुत आ रही है मेरे पास की मैं अगर मैं उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत पॉपुलर आ रहे हैं अखिल भैया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है यार। ऑफ कोर्स इतने कॉल तो मुझे भी नहीं आते, मैं खुद देख रहा हूँ, अभी भी फोन ब्लिंक हो रहा है आपका। देखो
0: ये, देखो ये आनंद जो है हर चीज का जो है ना वो दिल का ताड़ बना देता है।
1: मैं जो सच बात है ना दोस्तों वही करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट है कमल जी, इससे पहले वो नाराज होकर भाग जाएं हमें छोड़ के, हम वापस उनके पास चलते हैं इज्जत के साथ।
0: तभी मैं आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ कमल जी हैं, और कमल जी बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बुलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो अखिल जी का है। वैसे इस टाइम पे मुझे स्टूडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो मैं अभी तक बैठा हूँ यहाँ पे।
0: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी लगातार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अखिल भैया हमारे बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो जब तक वो कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं, ये उनकी खासियत है। तो खैर एनीवेज जी, कमल सर आप प्लीज, बहुत सारा चिट्ठा आप, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, प्रॉपर लिख के लेकर आए हैं कमल सर हमारे, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं वो। पहले ये बताइए सर, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है?
2: बिल्कुल आ रहा है।
1: एसी चला दें कि अगर आप कहें तो?
2: चलाते रहिए, बंद करते रहिए। मौसम का आनंद तो लेना ही है, गर्मी का भी सर्दी का भी,
1: बहुत ही बढ़िया।
0: चलिए हम आ चुके हैं, ये
1: हम चला ही देते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा गर्म।
0: इस बार इन्होंने टॉवल जो है गीला रख दिया ना बेड पे, तो भाभी जी छोड़ेंगे नहीं।
1: भाई वो आपको पता होगा क्योंकि अभी हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमें इस विषय में आइडिया है नहीं।
2: तभी तो टॉवल और ये सब उनकी फिरकी ले रहे हैं आप जो है
1: सर। ऐसा तो देखिए, अब आप भी उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं, मैंने सोचा था एटलीस्ट आप तो मेरा साइड देंगे।
0: देखिए साहब, ये एक ऐसा लड्डू है कि जो है ना आपको खाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, तो अभी आप जब तक बचे हैं, जब तक आप मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर चक्कर उस लड्डू से बच रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो लड्डू तो आपको खाना है।
2: सही, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सही जगह अप्रोच करें।
1: हाँ, देखिए अखिल भैया, लड्डू खाने से पहले मैं आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू को हजम कैसे करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है।
0: सारी ट्रेनिंग धड़ी की धड़ी रह जाती है,
1: समझ सकते हैं।
0: चलिए आइए कमल जी, आप बताइए कुछ कुछ तो अपने उसमें हमें साझा कीजिए अपनी शायरी में।
1: देखिए मैं इस शायरी से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो लड्डू और ये जो बातें थी ना, ये मैं जब भाभी कभी स्टूडियो आएंगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा वो कौन सा लड्डू था जो आपने इनको खिलाया था, वो मुझे भी बताइए आप। खैर कमल जी आप बताइए, अपनी शेर व शायरी के माध्यम से कोई लड्डू का जिक्र नहीं होगा मुझे पता है, अब आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे।
2: ठीक सर, तो अपने प्यारे से शहर मुरादाबाद के लिए कुछ पंखे हैं।
1: हाँ जी,
2: उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल सर,
2: सुनिएगा कि ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं।
1: वाह।
2: ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं। आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं, नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं।
0: क्या बात है।
2: नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: क्या बात कही,
2: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं।
0: बहुत खूब।
2: राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं। राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं, हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं।
0: क्या बात है।
2: हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आज आपने मुरादाबाद से एकदम गुफ्तगू और ऐसी रूबरू करवाया अपने मुरादाबाद की बात।
1: नहीं, ये दिल से दिल वाला कनेक्शन था अखिल भाई, और ये मुरादाबाद के बारे में तो जितनी बातें कही जाए खैर वो कम ही है, लेकिन आपने जो एक शहर के बारे में चार पंक्तियां रखी, ये कहीं हमें मिल नहीं सकती, ना चैट जीपीटी पे ना जेमिनी पे, ये सिर्फ कमल जी के पास मिल सकती
0: ये
2: है।
0: तो
1: हमें लगा था एंड हो गया है। जी सर कहिए।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, पीत मतलब पीतल।
0: हाँ जी,
1: अच्छा ठीक है जी।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूं मैं।
1: वाह।
2: यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूं मैं, यूं ही कितनी सदियों से नाबाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं।
0: क्या बात है।
2: आप देखिएगा
1: जी
2: कि भोर में खिलती हुई एक धूप हूं मैं, भोर में खिलती हुई एक धूप हूं मैं, ओढ़ कर एक नई छवि नवरूप हूं मैं। स्मार्ट हूं फिर भी कहीं अपवाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ।
0: क्या बात,
1: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। क्या बात है।
2: और अंतिम चालन देखिएगा कि मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया।
2: मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं, देता हूँ सबको कंपनी, देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं,
1: क्या बात,
2: देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं, शामो शहर रोशन शरर आबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये कंपनी बाग से तो जुड़ी हुई कई कहानियां हैं हमारे साथ, कंपनी बाग के आसपास घूमना, और इस समय तो कंपनी बाग के नजारे ही बदल गए। आपने कभी देखा उसके अंदर
1: मुरादाबाद की नजारे बदल गए? आप कंपनी बाग पे अटके पड़े हो यार अखिल जी। देखो ना, जिस भी चौराहे पे जाओगे वही लाइटे लाइटे और मतलब चकाचौंध से भरा हुआ है पूरा मुरादाबाद। और इस समय में जब मैं और आप और कमल जी बात कर रहे हैं, हमारा पूरा शहर लाइटों से नहाया हुआ है।
0: ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कभी लाइट देखता हूँ मुरादाबाद में चमकती हुई
1: तभी भाग जाती है? ऐसा तो नहीं,
0: एक हफ्ते बाद मुझे लाइट वहां पे मिलती क्यों नहीं है?
1: क्योंकि वो मुझे पता है, आप जब उसको ध्यान से देखते हो उसे नजर लग जाती है कि उतार के ले जाता होगा। अखिल ने मुझे देख के नजर लगा दी, अब मैं रोड पे दिखूंगी नहीं तेरे को जा भाई,
2: क्योंकि आपकी रोशनी के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है।
1: ये तो
0: कमल जी बचा रहे हैं,
1: जो तारीफ करी
0: जो लाइट लेके गए कमल जी ने बचा दिया उन्हें आज।
1: सही बात है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ अखिल भाई, वो तो खैर दूसरी दूसरी बात है, लेकिन सच में मुरादाबाद की जो भैया ने तारीफ करी है अभी कमल भैया ने, वो उसकी बात ही अलग है। मतलब अपने शब्दों में आपने रूबरू करा दिया है। तो एक काम करते हैं, इसी रूबरू रोशनी में एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। ये बातचीत तो हमारी लगातार जारी रहेगी और मुझे लगता है कार्यक्रम में गीत संगीत भी बहुत मैटर करता है।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा इस गाने से पहले, रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है।
1: वाह वाह वाह,
0: रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी बात कर।
1: क्या बात है अखिल जी, मैं आपकी लाइनें सुन के बस चुप हो गया था।
0: हाँ, उसके बाद जो खामोशी आई थी समझ में आ गया था कि आपको बात समझ नहीं,
1: मैंने एक मिनट पॉज इसलिए लिया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ ये बड़ा मैटर करता है। एक मेरी स्क्रीन पे भी शायरी आ रही है लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आज की जो ये बेहतरीन वाइव है इसको फुल ऑन सैटी सैटी और अमेजिंग अमेजिंग बना रहे हैं अखिल जी, मैं और साथ में कमल सर जो हमारी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। तो कमल जी, आपको आनंद आ रहा है यानी हमारे स्टूडियो में?
2: सर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अखिल ही अखिल है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी।
0: मैं बस सभी अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा जो गाड़ी में हमें सुन रहे हैं या जो आसपास कहीं बाइक चलाते हुए सुन रहे हैं, तो हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, मतलब हॉर्न फ्री रखें। इतना शोर शराबा हो जाता है कभी कभी हॉर्न से कि साउंड पोल्यूशन भी अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप कमल जी इस बारे में?
2: सर ये थोड़ा सा मैटर सब्जेक्ट से अलग हो
1: जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ये अखिल जी दिल से दिल तक बात बनाते हैं।
0: इसके ऊपर कोई शायरी है?
1: हाँ,
2: अब इस विषय पर विचार करना पड़ेगा अगली बार इस टॉपिक पर भी विचार करना पड़ेगा।
1: मैं बताता हूँ कमल जी, यहाँ रेडियो वाले ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका ट्रैक कभी भी हट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हर डायरेक्शन में प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों जी,
2: मैं तभी तो उनको सही ट्रैक पर ला दूं, ये फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं।
1: एक मेरे को शायरी दिख रही है कि बहुत अच्छी सी है, मुझे लगता नहीं वैसे अच्छी होगी क्योंकि मैं करता नहीं हूँ शेर शायरी।
0: नहीं, ये काम व्हाट्सएप पे दिख रही है आपको?
1: हाँ, नहीं नहीं मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं दिख रही है, मेरे को किसी ने लिख के भेजी है, मेरे को वो दिख रही है। तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें तो कुछ बताना चाहिए था, कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें भी तो कुछ बताना चाहिए था, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, तुम्हें तो घर बसाना चाहिए था।
0: क्या बात कही,
1: अच्छी बात है ना।
0: वो तो घर बसा लेगी आप आनंद जी, ऐसी लिखते रहोगे सामने वाला घर बसा जाएगा।
1: ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा था यार, देखो कोई बंदा खुद पे थोड़ी ना चिपकाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो। ये तो किसी ने मेरे को भेजी तो मैंने पढ़ के सुना दी। एनीवेज, हमारी शायरियों में वो कहां दम है जो कमल जी की बातों में है। क्यों अखिल जी,
0: बिल्कुल सही।
1: बैक टू कमल जी के पास चलते हैं, कुछ बढ़िया से सुनते
0: हैं। कमल जी कितने साल हो गए आपकी शादी को?
2: 13 साल।
0: 13 साल का तो एक्सपीरियंस कमल जी के साथ है ही।
1: क्या बात है, बट हम उस एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहे हैं।
2: हम आज लिखने लिखाने का 13 साल का नहीं है।
1: हाँ, आज हम उससे
2: पिछले 4-5 साल का।
1: अच्छा, जो अभी लिखते लिखाते हैं आप ये वाला। बहुत बढ़िया, तो इसी बात पे कुछ फरमा दीजिए जनाब आप। अच्छा, अभी जो है मौसम चेंज होने वाला है, जैसे अभी गर्मियों के से हम सीधा मानसून की तरफ जाने वाले हैं, मतलब बारिश हरियाली चारों तरफ और रोमांस का महीना, रोमांटिक महीना कहते हैं
0: सावन, बच्चे स्कूल जाने वाले।
1: तो इसमें कुछ सुनाओ यार आप सर, तो बच्चे स्कूल जाने वाले
0: कल से,
1: बच्चों के लिए कोई शायरी नहीं है फिलहाल।
2: तो उसके तो मानसून की चाली ने पहले चिपका दी ना।
1: हाँ हाँ, अगर कुछ और हो तो वो भी चिपका सकते हैं आप। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने चार पंक्तियां उन्होंने अच्छी से लगा दी थी, हमने
0: फेविकॉल का ऐड था जो कमल जी कर रहे थे।
2: चार पंक्तियां।

0: जाता है। मुझे लग रहा है कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हाँ, तो हमें चुप हो जाए यार, इज्जत का मामला है।
1: कमल जी कहेंगे चार लाइनें सुन के मेरी वाह-वाह कर देते हैं, उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं, ये अपनी बात बोल देते हैं।
2: यार मुझे कहना पड़ता है कि पूरी तो सुन लो, पूरी सुन लो,
0: अभी तो मैं कह रहा हूं, तो दोस्तों
1: हां पूरी कीजिए आप पहले। आपकी वो चार लाइनों में दिल एकदम अंदर तक भरा आता है ना,
2: जो मुझे भी पता चल जाता है कि चार लाइनों को दम था या नहीं था।
1: देखा चुपर उस समय,
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हम थोड़े से अनजान हैं इस फिल्म फील्ड में, तो आप जरा हमें बख्श दीजिएगा और आप अपनी आगे की लाइनों को पूरा करिएगा।
2: चलिए जिंदगी पर ही कुछ चार पंक्तियां और देखिएगा।
0: बिल्कुल सर।
2: कि जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
0: वाह
1: बहुत खूब।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है, किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: जी जी।
2: वैसे तो जितने भी मुंह हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, कोई खुलकर मिलता है तो कोई मिलकर खुलता है।
1: क्या बात है।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
1: बहुत सही बात कही आप, दिल खोल के बातें करें जिससे कि आपका दिल ना खोलना पड़े कभी। इतनी अच्छी बात कही। मोहब्बत में लोग चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला सीन करके भी जवाब दे दे।
0: क्या बात है, बिल्कुल आपको जवाब मिलता भी है, वो बात की कि आप जवाब नहीं देते हैं। बहुत अच्छी आपने करी है, थैंक यू सो मच। और ये जो बातों का सिलसिला है ये और भी मजेदार हो जाता है जब इसमें चार लोग बैठे होते हैं। फिलहाल तीन लोग बैठे हैं, मजे की बात ये है,
1: तीन का जो ये कॉम्बिनेशन आए हैं, ये आनंद बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है।
0: बिल्कुल, ये बचपन से हमने कहावत सुनी थी, तीन लोग की जो जोड़ी होती है वो खतरनाक ही होती है।
1: ऐसी तीन दोस्त होते हैं जो गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं इस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है, आपने स्टेशन में बैठ के अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई। खैर कभी फुर्सत से सुनेंगे हम जरूर। जब तक कमल सर कुछ नया निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, गाने की तरफ बढ़ेंगे, छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे और कुछ उनसे सुनेंगे भी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: गाना सुना है अपने किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: हाँ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अगले एपिसोड में, अगले लिंक में क्या हो जाए, अभी किसने कुछ नहीं जाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे की लाइन बताओ या भूल गए हो। गाइस अभी काम करते हैं, गाना सुनते हैं, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रही है, कमल सर भी सोच रहे हैं आगे कुछ तो कहा था किशोर कुमार ने। अखिल भाई तो पूरा ही डूब चुके हैं। खैर एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, आपका ही मजा।

0: समाचार दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश

0: निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। धड़कना सीख जाते हैं,
1: हाँ,
0: टूटे हुए दिल भी फिर धड़कना सीख जाते हैं जब कोई सच्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है।
1: क्या बात है, और इनकी जिंदगी में भी एफएम आ गया है तो इसलिए ये अपना दिल बहुत धड़का रहे। सही बात है, गलत है?
0: दिल से दिल तक चल रहा है,
1: नई बात,
0: दिल से दिल तक चल रहा है। आज हमारे पास कई लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए माफी। मगर आज आप सभी सुन रहे होंगे हम सबके दिलों की बात, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हैं ना सख कमल जी, वो ऐसे हैं कि अगर कोई बात भी निकल रही है, अगर हंसी मजाक में भी निकल रही है ना, तो आज उनके डायरेक्ट दिल से निकल रही है। और आनंद को तो आप जानते हो,
1: तो
0: ये
1: मतलब
0: तो हिला ही देता
1: है। कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात घर पे दिल से नहीं निकलती है।
0: अब घर पे तो
1: भाभी जी के लिए
0: भाभी के आगे क्या क्या बातें इनकी निकल रही नहीं निकल रही हमें तो नहीं पता।
1: वो आपको तो खैर पता है, अभी तो शादी हो रहा है। मैं ये बोल के सबको बता देना चाहता हूँ कि अखिल इट्स नॉट सिंगल। आप लोग इस नजर से नहीं देखेंगे हमारे अखिल भाई को, नहीं तो भाभी जी हमें बहुत मारेंगी। सपाट अखिल भाई, मैंने कहा था ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमने कहा था हम कमल जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अखिल जी ने सुना दिया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। आप जरा अब जो है ये हमारी अंतिम कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे अब इजाजत लेंगे आपसे, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जाते जाते कुछ अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहें, ताकि अगली बार लिसनर और डिमांड करें, हम दोबारा आपको बुलाना चाहें, है ना अखिल भाई?
0: बिल्कुल सही कहा।
2: देखिएगा कुछ पंक्तियां और हैं कि नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: नामवरों की महफिल में, मतलब जैसा आप लोगों की महफिल है।
1: जी जी, नहीं हमारा नाम है सर, मेरा आनंद है, उनका अखिल है।
2: नहीं मतलब जाना माना नाम, उसको नामवर कहते हैं।
1: अच्छा नाम,
2: जो जाना माना नाम होता
0: है। ये स्वयंवर की बात कर रहे हैं, बाद में स्वयंवर।
1: अच्छा ओके, सॉरी सॉरी।
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: वाह,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने।
1: जी
2: आओ कुछ ऐसा लिखते हैं,
1: वाह क्या बात है,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने और कुछ ऐसा लिखते हैं। अब तक तो गैर की महफिल में,
1: जी जी,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए,
1: वाह वाह वाह वाह।
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए, एक खरीदार की चाहत है बाजार में हम भी बिकते हैं।
0: क्या बात कही,
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: दिखते हैं, क्या बात है क्या बात है।
0: ये तो आज इन्होंने उल्टा ही कह डाला, मतलब हमारा तो मतलब कहते हैं अंदर तक पहुंच गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंदर से बाहर भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। जी जी सर, और देखिए वही वाली बात है ना कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार की खूबसूरत बात यही होती है कि जो वो दिल से लिखते हैं ना, और जो वो दिल से सुनाते हैं, तो कनेक्ट भी दिल से दिल तक होती है। कमल सर, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे इस शो को सुन के बहुत लोगों के मन में, मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं, ख्याल आ रहा है कि हम भी आएँ, हम भी यू नो इस तरह की शायरी करें, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप जैसे आपका 3-4 सालों का भी सर ने एक्सपीरियंस बताया, तो आप इस पे कुछ कहना चाहें उन बच्चों को?
2: किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है सब्जेक्ट।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और अगर आप बिल्कुल सटीक दिमाग से बिल्कुल एक मतलब एक एम लिए देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास में सब्जेक्ट दिखेंगे। वो सब्जेक्ट किसी भी विषय पे हो सकते हैं, देश पे भी हो सकते हैं, आपकी आम जिंदगी जो है रोज की उससे भी जुड़े हो सकते हैं।
1: 100%.
2: बस आपको वो सब्जेक्ट देखना है और कुछ सोचना है उसके बारे में,
0: आप खुद
2: अपने आप ही आप जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट से, और पंक्ति अपने आप ही अंदर आपके बनती रहेगी। बस आपको उनको
1: उतारने की
2: सेट करना है,
0: उन शब्दों को अपने जहन में लाके आपको
2: आपको जो भी घटनाएं घट रही है उनपे थोड़ा नजर रखिए,
1: मतलब आपको ऑब्जर्व करना है।
2: मुझे
1: और दिल
2: जो,
1: से
2: मुझे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है वो अखबार से मिलती है।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया,
0: अमर उजाला से या दैनिक जागरण से?
2: अमर उजाला और हिंदुस्तान।
1: क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस, आपने इन दोनों को प्रमोट किया है, हमें दोनों पैसे भी देते हैं, तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
0: अगर आपको आसपास कोई सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप खुद को भी अपना एक सब्जेक्ट बना सकते हैं।
2: नहीं खुद पे लिखना बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छा आपने कहा है सर,
2: पर लिखना और खुद पर हंसना,
1: जी
2: बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। हम मजे की बात है कि हम दोनों खुद पे हंसते रहते हैं क्योंकि हम लोग रेडियो में काम करते हैं। एनीवेज
0: बहुत दूसरों को देख के हंसते रहते हैं,
1: बहुत नहीं दूसरे लोग हमें देख के हंसते हैं।
0: मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल आनंद जी दिल से निकल रही है आवाज,
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल का तार आप प्लीज तोड़ दीजिए, इससे पहले कोई और जूते चप्पल बरसाए, आप प्लीज पूरा करिए अपनी बात।
0: महफिलों की रौनक लग तुमने ना एकदम वो कर देता, महफिलों की रौनक लोग नहीं,
1: वाह,
0: महफिलों की रौनक लोग नहीं, उनके अल्फाज होते हैं।
1: क्या बात है,
0: जो दिल से निकले वही हमेशा याद रहते हैं।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया, जैसे कि आप याद रहते हैं हमारे लिसनर्स को, और कमल जी तो हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी बातें करते हैं सर। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाते जाते?
2: बिल्कुल सर, आपने कहा तो जरूर सुनाना पड़ेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्ती वाला अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्ती में, यू नो हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सब हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो अगर इस पे आपको
0: सुनाना चाहे। सब अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अखिल जी भी याद कर रहे हैं।
2: पर भी चार लाइनें सुनाते हैं, पहले जो निकली हुई है पहले।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं।
2: तो देखिएगा कि जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है।
1: वाह।
2: जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है, उसकी लिखी नज़मों की महफिल दीवानी हो गई।
1: वाह जी वाह।
2: उसकी लिखी नज़मों की महफिल दीवानी हो गई है, उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी।
0: बहुत खूब।
2: उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी, शोर है अब हर तरफ उसकी कहानी हो गई है, जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई।
0: क्या बात है,
1: क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल कर
0: लोग
1: दिया।
0: आलम बिरयानी के आसपास कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में तो वो अपनी बिरयानी आराम से खाते रहे।
1: एब्सोल्युटली सही
0: कहा। शायरी का असली आनंद तो उन्होंने लिया।
2: तो ये मतलब उसकी प्रमोशन हो गई क्या? आलम बिरयानी की प्रमोशन भी हो गई
1: सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है,
0: कुछ भी हो सकता है।
1: जैसे कि मैंने कहा था आपसे, कुछ अगर आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ दोस्ती बगैर दो लाइन कहना चाहें जाते जाते।
2: चलिए साहब, जैसा हुक्म है।
1: बिल्कुल हाँ हाँ, आप बहुत सुपर फास्ट भागते दौड़ते पहुंचे हमारे ऑफिस, हमें पता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: देखिएगा कि कुछ मतलब दोस्ती मिलना मिलाना महफिल इस बारे में कुछ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे।
1: वाह वाह।
2: महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे, आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे।
1: क्या बात है।
2: आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे, सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ। सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ, ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ, घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ।
1: अरे वाह।
2: घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ, पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ।

0: बहुत बढ़िया
1: खूबसूरत,
2: पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात?
2: जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा, बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे।
1: क्या बात है,
2: बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे, जाम भी चलते रहे और क्षमा जलती रहे।
0: क्या बात कही, क्या बात कही, जिनके हाथ में जाम है वो तो
2: उनका भी परमिशन हो गया,
0: वो तो इस समय खुशी से कह रहे हैं क्या बात है, आज तो सही टाइम पे हमने एफएम लगा लिया और दिल से दिल तक बात जो है हमारे बीच पहुंच गई है। और मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आप भी अपनी शायरी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, हम भी आपकी दिल की बात सभी के पास पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल भाई आपने, और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं बाहर निकालें, है ना। तो कमल जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम साझा किया और अपने दिल से लिखी बातों को हमारे लिसनर तक पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपको ऐसे ही परेशान
0: करते रहे,
1: है ना, और आप ऐसे ही हमारे दोस्तों को एंटरटेन करते रहे। बिल्कुल, तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना स्पेशल इस प्रोग्राम को बनाया। अखिल जी चले अपना पोटला उठा के, बातों का पिटारा लेके,
0: कल आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक फिर से रात में 9 बजे से 10 बजे तक, और करेंगे दिल से दिल की बातें।
1: क्या बात है, तब तक के लिए मैं यानी आरजे आनंद और हमारे साथ अखिल भैया थे और कमल जी थे, हम लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात, फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
0: बजाते रहो गुनगुनाते रहो,
1: बाय बाय।

0: नमस्कार मुरादाबाद, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, अभी तो आप सुन रहे थे हंसी मजाक आनंद और कमल जी के साथ। तो अब है अपनी बारी, जहां बजेगी आपकी फरमाइश और पूरे होंगे आपके दिल से दिल तक के अरमान। तो कोई ना कोई तो आज अपने दिल से निकलेगा, एक गाना बताएगा हमें कि हाँ जी ये गाना मेरा फेवरेट है, और आज उसी पे चलेगी बात। और आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक, वो है आपका पसंदीदा एक्टर या आपकी पसंदीदा फिल्म। तो ज़रूर हमें मैसेज करें और बताएं कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी रही है और आपका पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस में से कौन है। नंबर आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ, 9837896896। इस नंबर पर फटाफट कॉल मिलाएं या फिर करें मैसेज। तब तक सुनते हैं एक छोटा सा गाना, मगर उससे पहले अरे क्या बात है, एकदम कॉल आ गई है, और बात करते हैं अपने लिसनर से। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कौन?
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: सर, मैं सूरजकेला जिला मुरादाबाद से नीता बात कर रही हूँ।
0: नीता जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छी हैं सर, आप बताइए आप कैसे?
0: बढ़िया बढ़िया। और बाहर मौसम कैसा हो रहा है?
1: हमारी तरफ का मौसम पर बादल भी हो रहे हैं और गर्मी बहुत हो रही है।
0: बादल भी हो रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है
1: जी, तो ठीक है, होता है बादल से होते हैं तो।
0: हाँ ये तो है, थोड़ा सा तो भपका उतरेगा ही
1: है।
0: तो बताइए आपका पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस कौन है, या कोई पसंदीदा फिल्म आप जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, आपके बहुत ही दिल के करीब हो।
1: एक्टर तो ज्यादातर माधुरी, और वो माधुरी ज्यादा पसंद, उनका डांस ज्यादा पसंद आता।
0: माधुरी दीक्षित जी का डांस बहुत पसंद है आपको
1: जी?
0: तो आप डांस भी करती हैं थोड़ा बहुत माधुरी दीक्षित जैसा? नहीं
1: नहीं सर।
0: और फिल्म कौन सी पसंद है आपको?
1: मूवी हम आपके कौन है, वो भी उनकी पसंद है, और हम साथ साथ मूवी वैसे बहुत अच्छी लगती है।
0: हम साथ साथ है मूवी, मूवी तो ये सभी की फेवरेट है। ये हम साथ साथ है तो एक समय बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी थी, और एक फैमिली पिक्चर कहते हैं, पूरा फैमिली ड्रामा था इस मूवी
1: जी जी।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: सर एक मूवी हैगी पहचान, उसमें सैफ अली खान है, उसमें कुछ ऐसी टाइप के बोल रहे गाने के, ये तो बदनाम लोगों की गलियां है।
0: ये तो बदनाम
1: लोगों की गलियां है,
0: और सैफ अली खान है
1: जी।
0: चलिए जरूर आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और बताइए बाकी, और कोई इसके अलावा कोई मूवी आपको जो बहुत पसंद हो?
1: विवाह मूवी है, हम साथ साथ हैं, हम आपके कौन
0: हैं। आपको सारी मूवी जो है ऐसी मतलब फैमिली वाली खूब क्लासिक मूवी अच्छी पसंद है आपको
1: जी सर?
0: चलिए तो आपको ये गाना प्ले करते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, पहचान मूवी से
1: जी। जी मैम,
0: ठीक है ठीक है ठीक है। तो नीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो ये थी नीता जी, जो कह रही हैं कि उन्हें पिक्चर पारिवारिक फिल्में बहुत पसंद है, और मस्ती तो कहते हैं कि माधुरी दीक्षित के डांस की जो कहते हैं ना उनसे, शी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन इंडियन इंडस्ट्री, तो बहुत ही अच्छी डांसर है, इसमें तो कोई कहते हैं शक नहीं है। उनकी तो गुरु भी सरोज जी थी, तो माधुरी दीक्षित जी का के तो अपने अलग ही, और आज के समय में भी अगर आज भी उनकी कोई एक मूवी कोई भी आप देखेंगे तो उसमें भी वही बेहतरीन कला वही बेहतरीन डांस उनका आपको हमेशा देखने को मिलेगा। चलिए तब तक करते हैं मैम की नीता जी की एक फरमाइश को पूरा, और मिलते हैं छोटे से गाने वाले ब्रेक के बाद, 9837896896। हाँ जी हाँ, नंबर थोड़ा सा बिजी आएगा मगर मिलेगा ज़रूर।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक्टर जरूर होता है जिसे देखकर हम हंसते हैं, रोते हैं या फिर इंस्पायर होते हैं। और कोई ना कोई फिल्म जो हमें कम से कम कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से देखते हैं उस मूवी को, इतने प्यार से देखते हैं कि चाहे 10 बार देख लो, 11 बार देख लो, तब भी उससे मन नहीं भरता है। तो उस मूवी कोई ना कोई तो ऐसी फिल्म या ऐसा डायलॉग आपके पास या ऐसा कोई सीन आपके आंख बंद करते ही, पलके बंद करते ही आपके नज़रों में आ जाता है, आपके सपनों में आ जाता है कि मन नहीं भरता, मगर कहते हैं पूरा सब चीज़ें पूरी हो जाती मगर वो मन नहीं भरता भाई। तो आपका फेवरेट एक्टर और आपकी कौन सी फिल्म जो आपके दिल के सबसे करीब है, ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें या हमें बताएं कि कौन सी फिल्म ने आपको कुछ सिखाया भी है या कभी कभी उस फिल्म को देख के आपने बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलाव भी लेके आए। 9837896896 पे एक शायरी जो कहते हैं अपने इसी आज के टॉपिक पे है, हर फिल्म एक कहानी होती है, हर एक्टर एक एहसास होता है, जो दिल को छू जाए वही असली सुपरस्टार होता है। तो हमारे पास तो हमारे सुपरस्टार आप ही लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं और हमसे अपने दिल की बात हमारे दिल तक पहुंचाते हैं। तो चलिए अपने नए लिसनर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं साहब। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग।
1: हेलो सर, दिल से दिल तक, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: धन्यवाद साहब, हमारा भी मोहब्बत भरा नमस्कार। क्या करते हैं आप?
1: सर मैं घर पर रहता हूँ और जमीन का करता हूँ, जानवरों का करता हूँ और सर वैसे बहुत सारे काम है, घर में छोटा हूँ और सबसे बड़ा बना रखा घर वालों ने सर।
0: तो ये तो साहब बहुत अच्छी बात है सर, छोटे लोग ही जो घर में सबसे छोटे होते हैं ना वही सबसे बड़ा काम करते हैं। वैसे
1: सर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, मतलब हम 4 भाई हैं, 3 अलग हैं, पापा खत्म हो चुके हैं, लगभग 20 साल हो गए, अब तो मैं समय छोटा हूँ ना घर में सर।
0: कोई बात नहीं सर, सबसे छोटा ही कमाल करके दिखाएगा। तो बताइए आप कौन सी आपकी फिल्म जो है बहुत ही आपको कमाल लगती है या फिर आपने वो फिल्म 10 से 11 बार देखी है, जितनी बार देखते हो यार वो चैनल नहीं बदल पाते हो या कहते हो अब ये फिल्म लग गई है, जैसे सूर्यवंशी है, अगर एक बार आ जाती है तो कई लोगों की फेवरेट बन गई है, ना चाहते हुए भी वो मूवी जो है फेवरेट बन गई। अमिताभ बच्चन को किसी और मूवी से लोग पहचाने ना पहचाने मगर वो सूर्यवंशी देख के जरूर पहचान जाएंगे। तो आपकी भी ऐसी कोई फिल्म है ऐसी?
1: सर जो मेरी फेवरेट मूवी है वो है राजा और आजमाई। सर जो संजय कपूर जी जो सीएसए पर चलते हैं और जो मतलब वहाँ पे एक शायरी बोली जाती है तो काफी अच्छी लगती है मुझे।
0: तो कोई शायरी सुनाइएगा।
1: सर जो शायरी बोलते हैं, प्यार करना कोई खेल नहीं, तुम जैसे बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। सर ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी थी, मैं देखता रहता हूँ इस मूवी को।
0: चलिए चलिए अच्छी बात है शेख साहब। तो कौन सा गाना आज आपके लिए आपकी ख्वाहिश पे प्ले किया जाए?
1: सर उससे पहले मौसम बताओ कैसा, मुराद आपकी गर्म होगा काफी।
0: अरे सर ये तो आपको यहाँ रह के नहीं बता सकते कैसा मौसम है, बस आप आओ मुरादाबाद तब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है मौसम में आजकल।
1: हाँ सर मौसम तो रामपुर मुरादाबाद ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे रामपुर में होगा ऐसे मुरादाबाद में होगा सर, रुका नहीं जा रहा गर्मी के मारे पूरे हाल।
0: ये तो है, आज जो है गर्मी अच्छी खासी है, उमस बहुत है
1: सर, ऐसे बिजली भी कम आती है तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है गर्मी के मौसम,
0: थोड़ी सी तो दिक्कत रहती है
1: जी सर।
0: तो बताओ अब, तो आप बताओ आपकी फेवरेट, आपने बता दी फिल्म तो बता दी, अब आप ये भी बताओ गाना कौन सा आपका प्ले करना चाहते हैं?
1: सर मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है पहचान, सर मैं बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तू मेरे दिल में रहती है मैं तेरे दिल में रहता हूँ, सर ये वाला सॉन्ग आपको डेडिकेट आज के शो में प्ले कर देना।
0: धन्यवाद सर, ये खतरनाक वाला गाना जो है आपने मुझे डेडिकेट कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आप ऐसे हमेशा दिल में रहें हमारे और हमेशा हमें जब जब आपको फुर्सत मिले, मौका मिले तो हमें जरूर कॉल करें, ठीक है ना सर?
1: अब तो आप ही
0: हमारे लिसनर्स को, बाकी लिसनर्स को हमारा नंबर तो आपको भी याद हो गया होगा कि किस नंबर पे दिल से दिल की बात पहुंचाई जाती है, तो आप नंबर ही बता दीजिए।
1: हमारे कोई लिसनर है पुराने वो दिखाई नहीं दे रहे, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कॉल लगाए, प्रोग्राम सुने सर, बहुत कम हो गए।
0: बिल्कुल सही मगर कम होके भी हमारे पास कम होके भी इतने लिसनर्स हैं कि हमारे पास वेटिंग में कॉल आती रहती है।
1: हाँ सर लिसनर तो बहुत हैं, मुझे पुराने हैं ना उन्हें बोल रहा हूँ, थोड़े मतलब
0: आएंगे सब, सब सब सब इस समय अपनी अपनी पिक्चरों में खोए हुए हैं, तो जल्दी मुलाकात होगी
1: ईश्वर जी, पड़ेगा सब आएंगे।
0: हाँ जी साहब, तो चलिए ईश्वर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारा जुड़ने के लिए आज।
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। तो ये थे ईश्वर जी जो इस समय आराम कर रहे हैं अपनी चारपाई पे लेटे हुए, छत पे बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं जहाँ भी हैं ये इस समय। तो इनकी भी फरमाइश को सुनते हैं। और हमारे पास हमारे एक लिसनर का मैसेज भी आया है, भावना जी नैनीताल से, सरोवर नगरी से। कहती हैं, हेलो सर जी, गुड इवनिंग है जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम आपको सर जी। एक सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा हमारा, रातों में जगाया नींद को उड़ाया। तो ज़रूर आपको भी ये, मतलब आपने गाना भी ऐसा चुना है कि रातों में जगाया और नींद को उड़ाया, तो ये तो ज़रूर प्ले करेंगे, चलते चलते आपका एक ख्वाहिश भी जरूर पूरी करेंगे। आज फर्स्ट टाइम हमने आपको मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आरजे आनंद के साथ आपको बहुत बार सुना है। हाँ जी, आनंद जी के साथ आपने हमें बहुत बार सुना है, और आनंद जी ने ही हमें यहाँ पे कहा है कि भैया सुनो, जब हम इतनी बातें करते हैं तो इन सभी लिसनर्स के साथ आप भी सीधे बात क्यों नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना जी, आपने हमें मैसेज किया प्यारा सा। हमारे पास रणवीर सिंह जी का भी मैसेज आया। रणवीर सिंह जी हमारे उन श्रोताओं में से हैं जो, अगर जिनका मैसेज नहीं आया तो हमें भी लगता है, कभी कभी लगता है आज हमने कोई शो ही नहीं कर रहे हैं, या आज हमारा FM में कोई एकाध एपिसोड कम चल रहा है। तो रणवीर सिंह जी कहते हैं, आपके सवाल का जवाब है राखी जो रक्षाबंधन पर खरीदती हैं। अरे रणवीर सिंह जी, आपका लगता है हमने मैसेज इवनिंग वाला पढ़ लिया है। आपका दूसरा मैसेज ये है, अखिल भाई यादों में ना ढूंढो हमें, दिल में हम बस जाएंगे, तमन्ना हो अगर मिलने की तो हाथ रखो दिल पर, अखिल भाई हम धड़कनों में मिल जाएंगे। क्या बात रणवीर सिंह जी, क्या बात कही आपने। तो धन्यवाद बहुत बहुत, आपका मैसेज आ गया, अब तो लगता है कि हाँ मेरे आज लिसनर्स वाले मैसेजेस पूरे हो गए। तो चलिए हम ये फरमाइश पूरी करते हैं और ईश्वर साहब की गानों की कि तू मेरे दिल में रहती है। तो इस गाने के बाद मिलते हैं, आपकी भी दिल की फरमाइश सुनते हैं, और हमें 9837896896 पे ज़रूर मैसेज या कॉल करें।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आप सभी का। तो दोस्तों, अभी बातें चल रही थी आपकी फेवरेट पिक्चर और आपकी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की। किसी को शाहरुख खान का रोमांस पसंद है, किसी को आमिर खान की परफेक्शनिस्ट, किसी को सलमान खान का स्वैग पसंद है, तो और किसी को अमिताभ बच्चन की आवाज़। लेकिन असली बात यह है कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, कभी कभी ज़िंदगी भी सिखा जाती है। तो हाँ, फिल्मों से बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं साहब। कभी ये नहीं कि आप सिर्फ एक्शन मूवी और कहते हैं ना सिर्फ मारधाड़ी सीखते हैं, नहीं, फिल्मों से आप बहुत कुछ अच्छी बातें। थ्री इडियट्स जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उस फिल्म से भी बहुत लोगों ने सीखा कि कैसे अपने मन का जो आपको करना चाहिए उसे उस पर थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस रखनी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ हमारे लिसनर जुड़े हैं, करते हैं उनसे कुछ बात, पूछते हैं उनकी पसंदीदा फिल्म का कोई राज। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार सर। नमस्कार, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: सर जी, मैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब बोल रहा हूँ, रेडियो मुरादाबाद का नियमित श्रोता।
0: तो रफत जी, रामपुर में कैसा मौसम है इस समय?
1: सर जी, इस वक्त काफी घुटनसी हो रही है सर, हवा भी नहीं चल रही, लेकिन बादल तो है लेकिन हवा नहीं चल रही, इसलिए गर्मी का एहसास कुछ अधिक हो रहा है सर।
0: तो ये तो है, थोड़ा सा तो इस समय मौसम ऐसे ही रहेगा गर्मी का, और आसपास अगर घर में बच्चे होंगे तो वो भी ये कहेंगे भैया आइसक्रीम खिला दो आइसक्रीम।
1: जी जी, यही स्थिति चल रही है घर घर की। सर जी, इस वक्त कूलर के नीचे बैठे हुए थे, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, और इससे पहले कल और परसों रामपुर में अच्छी बरसात हुई सर।
0: बरसात? हाँ, मुरादाबाद में ही बरसात हुई थी परसों, मुरादाबाद में थोड़ी सी बरसात हुई थी।
1: अच्छा अच्छा जी सर, लेकिन आज थोड़ी गर्मी है।
0: हाँ, आज है थोड़ी सी गर्मी, तो बताइए आप इस गर्मी में कौन सी ऐसी मूवी थी जो आपको ठंडक दे देती है, अगर आप उसे कभी भी कोई एक मूवी आपको याद आ जाए या कोई सीन आपको, कोई आपका एक्टर या एक्ट्रेस की कोई भी पसंदीदा आपके चेहरा उसका नजर आ जाए तो ठंडक पड़ जाती है आपको।
1: जी सर, सर एक 90 के दशक के एक्टर थे सुनील शेट्टी जी।
0: हाँ हाँ, वो अभी भी है।
1: और माशाल्लाह स्वस्थ है,
0: स्वस्थ है। अभी लेटेस्ट फिल्म आई है वेलकम टू जंगल, उसमें मस्त एक्टिंग करी उन्होंने।
1: तो सर वो मेरे फैन भी हैं और उन्हीं की पिक्चर मैं अधिकतर देखता भी हूँ, लेकिन एक फिल्म उनकी मोहरा।
0: हाँ, मोहरा
1: यकीन जानिए जब भी वो पिक्चर में देखता हूँ तो दिल को छू जाती है, और कई बार मैंने पिक्चर देखी, लगभग 15-20 बार फिल्म देखी है मैंने वो।
0: तो मतलब आप कह सकते हैं कि उस मोहरा फिल्म ने आपकी दिल में मोहर लगा दी है।
1: जी सर, मोहरा फिल्म बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसमें और भी एक्टर हैं, लेकिन सुनील शेट्टी जी का मुझे काम उसमें बहुत पसंद आया था।
0: तो मगर उसमें जो गाना फेवरेट चला है, जो गाना हिट हुआ है, उसमें तो अक्षय कुमार जी हैं।
1: जी, शेट्टी जी ने उसमें फिल्म में जो गाना है ना गजरे की धार ना मोती का,
0: हाँ जी,
1: वो
0: भी बहुत खूबसूरत नगमा है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जी सर,
0: तो चलिए आज उसी फिल्म से एक गाना आपके लिए प्ले करते हैं।
1: तो सर आज मेरी कॉल लगी है तो मोरा इस फिल्म का एक गीत है, जितने वर्षा।

0: पानी, वही गीत पहले कर देना सर।
1: सर आपको गाना भी पड़ेगा और ये कहना भी पड़ेगा कि भाई साहब पानी जो है थोड़ा सा सच में ही बरस जाए। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका आज हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू सर।
1: थैंक यू राफत सर। तो ये थे राफत जी जो हमारे साथ रामपुर से जुड़े थे और कह रहे थे, बता रहे थे कि सुनील शेट्टी साहब उनके पसंदीदा एक्टर में से हैं और बहुत पसंद करते हैं उन्हें। तो ज़रूर यार माया, ये धरती मेरी माँ है। आवाज़ तो नहीं निकाल सकते उनकी ऐसी, मगर सच में उनकी जो एक्टिंग है उसका हर कोई कायल है। बॉर्डर से लेके और अभी जो लेटेस्ट आई है वेलकम टू द जंगल, सभी में एकदम कमाल का उनका अभिनय रहा है। और अभिनय, वो अपने अभिनय से हमेशा कहीं ना कहीं जगह दिलों में तो छोड़ जाते ही हैं। धड़कन मूवी तो सभी को पता होगी, धड़कन मूवी का हर वो डायलॉग और हर वो गाना जिसमें सुनील शेट्टी साहब उसमें फिल्माए गए हैं, वो आज भी अगर कोई भी कह दे तो हाँ पल में उसे बता देते हैं कि हाँ जी ये तो है। हमारे पास शायरी आई है और शायरी नदीम जी ने भेजी है। कहते हैं, पर्दे पर जो मुस्कुरा देते हैं, पर्दे पर जो मुस्कुरा देते हैं वो हर दर्द नहीं छिपाते, वो हर दर्द नहीं छुपाते। कलाकार वो होता है, कलाकार वही होता है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते। तो क्या बात कही है नदीम जी आपने, बिल्कुल एकदम फिल्मी अंदाज में आज ये अपनी शायरी लिखी है और बहुत ही अच्छी शायरी लिखी है। तो दोस्तों, और हमारे बहुत सारे लिसनर जो आज हमसे जुड़े भी हैं, उनमें से एक हमारे साथ लिसनर हमारे को मैसेज करते हैं, कहते हैं, अखिल भाई जय श्री राम, मैं बबलू सैनी मुरादाबाद मुंबई महाराष्ट्र से आपको दूसरी बार सुन रहा हूं और हमारे लिए गाना प्ले कर दीजिएगा। गाने के बोल हैं, नींद नहीं आती है मुझे। हाँ तो साहब, ये तो गाने के बोल क्या है, वैसे भी नींद कभी कभी आती ही नहीं है, मुझे भी नींद नहीं आती है। रात में डेढ़ डेढ़ दो बजे तक यही चलता रहता है कि यार कल क्या करना है और आज क्या क्या किया आपने। और दो लाइनें हमारे दोस्त के लिए, एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, होठों पर आकर कभी दुआ ही नहीं देता। शायद तुम्हें मालूम नहीं ये राज्य मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है, दिखाई नहीं देता। क्या बात करी है आपने बबलू जी, तो बहुत बढ़िया आपका मैसेज आया और धन्यवाद, आपने हमें महाराष्ट्र से मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के थ्रू, तो बहुत अच्छा रहा। और आपका ये जो फरमाइश है ये भी देखिए चलते चलते ज़रूर प्ले करेंगे। तब तक के लिए अभी तो राफत जी का टिप टिप बरसा पानी, जरा भाई साहब पानी तो बरसा ही लें। आप लोग भी जरा इधर उधर देखें कहाँ खिड़की से झांक के कि पीली कोठी के आसपास हैं या गागन तिराहे के आसपास हैं, कि भाई साहब ऊपर है कुछ बादल, कुछ है माजरा, आज बरसेगा नहीं बरसेगा।

0: स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो जी, आज बातें चल रही हैं आपके पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री या फिर आपकी पसंदीदा फिल्म की। तो हमारे पास मैसेजेस आए, हमारे पास पिंटू जी कहते हैं, हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई एक्टर बनना है तो आप कौन सा एक्टर बनेंगे या कौन सा रोल पसंद करना आप चाहेंगे। तो पिंटू जी मैसेज करते हैं हमारे पास हरतला कॉलोनी से, मैं तो सलमान खान बनूंगा, बस एक्टिंग नहीं, जिम भी फ्री में मिल जाएगा। तो सही कह रहे हो भाई साहब, और बॉडी के साथ साथ फैन फॉलोइंग भी बहुत होगी अगर आप सलमान खान बन गए तो। हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे बात। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, नमस्कार साहब, मोहम्मद उस्मान साकिबुल्लाह की जारत के पीछे ना लेते थे मोहम्मद उस्मान।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, आपने जो एड्रेस बताते हैं उससे पता चल जाता है कि साहब आप यहीं से बोल रहे हैं।
1: मुरादाबाद से बोल रहा हूँ।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: फूल है गुलाब का खुशबू तो लीजिए, खत है मुझ गरीब का, जवाब तो दीजिए।
0: क्या बात है, तो जवाब मिला आपको, शायरी इतनी अच्छी सुनाई आपने।
1: दूसरा और आप सुने।
0: हाँ,
1: दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, इतना प्यार करते हो जब हमने पूछा तो मर जाएंगे तुम्हारे बिन, ये जवाब उनका था।
0: क्या बात कही साहब, क्या बात कही उस्मान साहब आपने। बहुत, ये शायरी आप खुद ही लिख रहे हैं आजकल या सब कहीं से सुनी सुनाई है?
1: मैं हर स्टेशन का रेडियो का श्रोता हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ।
0: क्या बात है,
1: तो बढ़िया गाने चालू करवाता हूँ आपके यहाँ
0: पे। बहुत बढ़िया उस्मान साहब, आपकी चॉइस का तो कोई
1: रामपुर हुआ, नजीबाबाद हुआ, बीबीसी लंदन हुआ, विदेशों तक गाने सुनते थे हम पहले।
0: अच्छा सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सर। तो आज आपको पता ही होगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी रही या पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में बताइए कुछ हमें।
1: वैसे तो सलमान खान बढ़िया है इस टाइम।
0: सलमान खान साहब तो पहले भी बढ़िया थे साहब।
1: तो इस पिक्चर में गाना भी
0: उन्होंने नहीं नहीं सही है। तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज तो ये सौदागर का पिक्चर का गाना सुनना है, इलू।
0: क्या बात है, इलू इलू साहब, आप मतलब अभी भी इलू इलू पूरा चालू है।
1: क्या करें साहब, अब
0: नहीं साहब, ये रहना भी चाहिए साहब, ये तो चलते रहना चाहिए।
1: आप जो प्रोग्राम करते हैं इतना प्यार करते हैं कि आपके लेकर बहुत अलसाद हो।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो चलिए,
1: हकीकत में बता रहे हूँ।
0: नहीं नहीं साहब, आप आते हैं जुड़ते हैं हमें तो और भी अच्छा लगता है। तो आपने आज कौन, आपने आज
1: बहुत प्यार किया।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बस यही बात
1: आप बात करते हैं, सबका दिल भर देते हैं, जवाब देते हैं अच्छी तरीके से, समझा देते हैं।
0: नहीं नहीं आज तो आपने हमें समझा दिया, और इतना अच्छा गाना आपने ये फरमाइश की है कि ये तो सच में सभी के दिल, मतलब जो भी सुनेगा इस गाने को तो कहीं ना कहीं तक उन सबके दिल में जरूर पहुंचेगा। बहुत ही बढ़िया साहब, उस्मान साहब वाकई तारीफ़ काबिल। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ उस्मान जी, जो बिल्कुल दिल से शायरी करते हैं और ऐसी शायरी करते हैं कि लगता है कि हाँ जी, कहीं ना कहीं तो कोई बात जो छुपी हुई थी वो आज निकल के आई है। और गाना भी इन्होंने इतना बहुत ही बढ़िया फरमाइश वाला, कहते हैं ना इलू इलू क्या है, तो ये इलू इलू आज पता चलेगा क्या है सा। हमारे पास मैसेज आया है निरांशनी यादव जी का, और उन्होंने सभी के नाम लिखे हैं अपने जान, जितने भी उनके खास, इनके प्यारे कहते हैं, अमित यादव जी, रितु यादव जी, नमन यादव जी, शंकर लाल यादव जी, तो फैमिली मेंबर्स के सभी के उन्होंने नाम लिख दिए। उन्होंने फरमाइश भी कही है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये 5 बार प्लीज़ लिखा है आपने, प्ले बारिश की जाए, तो ज़रूर ये प्ले करेंगे, चलने से पहले आपका गाना ज़रूर प्ले किया जाएगा। और अभी तो इलू इलू का टाइम है साहब, और आपकी फरमाइश का टाइम है, और अभी भी आपके पास कोई है ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये तो मुझे बतानी चाहिए थी कि मेरा फेवरेट एक्टर और ये उसका सीन और ये उसका रोल, तो जरूर मैसेज कर दीजिए साहब या कॉल ही कर दीजिए 9837896896। अब तो मैं अपना ही नंबर भूल जाता हूँ और आपको बार बार इस नंबर से याद दिलाता हूँ कि हाँ जी कहीं तो दिल से दिल की बात हो, क्योंकि हमेशा एक अच्छी फिल्म जो आपको पता होगी वो कभी ना सिर्फ पैसा ही नहीं कमाती, वो यादें भी कमा लेती है। तो कुछ तो याद जोड़ी होगी जो आप बताएंगे। हमारे पास पूजा जी ने भी कहा हमसे कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित हैं। ये तो जी अभी हमारे पास जो एक और लिसनर थी उन्होंने भी ये बात बोली कि माधुरी दीक्षित जैसा डांस तो मतलब गजब का ही होता है। तो बिल्कुल ये आपकी भी हो हमारी भी है, और आपकी फेवरेट फिल्म आपने बताई है, हम आपके हैं कौन। तो बिल्कुल क्लासिक चॉइस है जी, आज भी फैमिली के साथ बैठकर देख लो तो वही फीलिंग आती है। चलिए तब तक हम करते हैं ये इलू इलू वाला गाना और आप हमें करिए मैसेज 9837896896 पे।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और हाँ, जहाँ इतनी सारी बातें हो रही हैं तो एक बात और सही, अंजलि जी का मैसेज आया है कि मेरे फेवरेट एक्टर का नाम है रणबीर कपूर, फेवरेट फिल्म है रॉक स्टार। तो रॉक स्टार तो साहब बहुत लोगों की फिल्में हो गई, अंजलि जी फेमस इस समय और बहुत ही फेवरेट हुई है सबकी। और रॉक स्टार मैं कहूँगा एक फिल्म ही नहीं, एक इमोशन भी है, जिसमें कहते हैं ना रणबीर कपूर ने जो इमोशन निकल के एक्टिंग किया और उसमें जिस तरह के गाने थे तो वो भी एक बहुत ही दिल को छूने वाली बातें थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने बिल्कुल सही फिल्म का नाम लिया। इस समय रॉक स्टार सच में एक बहुत अच्छी मूवी रही रणबीर कपूर उनकी। अभी लेटेस्टली उसके बाद एक और अभी जो मूवी जो बहुत लोगों के को अच्छी लगी और कहते हैं कि उसके गाने भी बहुत अच्छे लगे, वो थी एनिमल। तो शायद जिन लोगों ने रॉक स्टार देखी है वो रूप देखा रणबीर कपूर का एक रोमांटिक वाला, तो एक यहाँ पर एक डेडिकेटेड रूप भी देखा रणबीर जी का एनिमल मूवी में। और अभी हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे कुछ बात, कुछ गुफ्तगू उनकी भी। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सर, माय नेम इज अजय कुमार, तिहाली खद्दर, जिला मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ सर।
0: हाँ जी सर, क्या करते हैं आप अजय कुमार जी?
1: जी सर,
0: क्या करते हैं काम आप?
1: सर पढ़ाई करते हैं सर।
0: पढ़ाई कर रहे हैं सर आप?
1: जी सर जी।
0: कहाँ तक पढ़ लिया आज शाम तक, कहाँ तक पढ़ाई कर ली आपने?
1: सर वो सब ना इंटर हो गया।
0: इंटर हो गया है?
1: नहीं सर,
0: तो
1: एडमिशन कराया है।
0: इंटर में एडमिशन कराया है साहब?
1: जी सर।
0: तो अभी तो सब इंटरवेल वाला सीन चल रहा है, इसके बाद फिर पढ़ाई चालू हो जाएगी, फिर मार्च में आप फिर इंटर पास कहलाएंगे। तो कौन सी पिक्चर है जो आपको बहुत अच्छी लगती है या कौन सा एक्टर है जिसकी कभी कभी आप एक्टिंग करने की सोचते हैं कि यार मैं ही, क्या पता अजय देवगन की जगह मैं ही खड़ा होता?
1: सर पिक्चरों में अच्छी तो मुझे फिलहाल आशिकी टू अच्छी लगती है।
0: कौन सी? आशिकी?
1: आशिक टू मूवी।
0: आशिक टू?
1: जी सर।
0: हाँ तो साहब ये इंटर कर रहे हो आप और मूवी आपको आशिक टू अच्छी लग रही है? हम तो सोच रहे थे आप कहोगे कि बारहवीं फेल ज्यादा अच्छी थी।
1: अक्सर हिंदी मूवी में लगती है लाडला मूवी अच्छी लगती है।
0: लाडला मूवी अनिल कपूर साहब की?
1: जी सर।
0: वो मूवी भी गजब थी साहब। और आपको एक्टर कौन सा ज्यादा पसंद है?
1: एक्टर सर यही अनिल कपूर ही सही है।
0: अनिल कपूर ही सही है? अनिल कपूर तो जी अभी भी सही है, जो आज से 20 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं, खास बात तो यही है उनकी। गजब है साहब, भेड़ो गजब है वो तो बिल्कुल। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: सर हमें गाना सुना दिए संग्राम मूवी का।
0: ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, कौन सी भीगी हुई रात है जो आप किसी से कहना चाहेंगे?
1: सर किसी से कुछ नहीं कहना सर, हमारे पापा हैं उनकी फरमाइश पे सर।
0: अच्छा, आज पापा की फरमाइश पे है गाना। चलिए साहब, फरमाइश पूरी की जाएगी। और जो ये गाना आपने चुना है ये भी बहुत बढ़िया चुना है वैसे तो। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अजय जी। तो ये थे श्रोताओं हमारे साथ अजय जी, जो कह रहे हैं कि अनिल कपूर इनके बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं। तो अनिल कपूर जी का तो सच में कोई जवाब नहीं है। और ये कहते हैं ना जैसे वो सोने पे सुहागा, मतलब ऐसा एक्टर जो मूवी बढ़िया दे, एक्टिंग भी बढ़िया करे और साथ में गाने भी इतने अच्छे अच्छे उन पर फिल्माए जाएँ, तो वो तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है एकदम छकास। तो चलते हैं शो के आखिरी पड़ाव पर। और हीरो वो नहीं होता जो फिल्म में विलन को हरा दे, हीरो तो वो है जो घर में मम्मी पापा के लिए मेहनत करता है, अपने सपनों के लिए लड़ता है और हर दिन मुस्करा कर जीता है। जी हाँ, ये आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, जो हर दिन मम्मी पापा के लिए, आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और अपनी बीवी से भी छुप के या प्यार मोहब्बत से पटाके, जो कहते हैं ना लड़ाई चल रही होती है उसे भी आप सह रहे होते हैं और हर दिन मुस्कुरा कर एकदम झकास जीते हैं। सुबह उठ के कहते हैं अरे आज तो फिर हो जाएगा, चिंता मत करो। तो असली एक्टर तो साहब आप ही लोग हो जो बहुत ही मस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। एक शायरी आप लोगों के लिए, इस शो की आखिरी शायरी। फिल्मों का हीरो तो पर्दे पर मिल जाते हैं, फिल्मों के हीरो तो पर्दे पर मिल जाते हैं, असली हीरो तो ज़िंदगी की भीड़ में नज़र आते हैं। जो गिरकर भी उठ जाएं वही सबसे ज़्यादा बड़ा सुपरस्टार कहलाता है। तो जी हाँ, जो गिर के भी उठ जाता है ना वही एक सुपरस्टार असली कहलाता है, और वो सुपरस्टार आप हो। और हमसे ज़रूर जुड़े रहें, हमें ज़रूर अपने दिल की बात कभी ना कभी तो मैसेज करें, आज नहीं तो कल सही, मगर ज़रूर एक बार 9837896896 पे एक मैसेज तो आपका आ ही जाए। तो सुनते हैं तब तक अपने अजय सर की फरमाइश, भीगी हुई रात में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके मैसेजेस और आपकी यादें और आपके फेवरेट एक्टर्स ने आज की शाम को फिल्मी और दिल से खास बना दिया है। मैं हूं आपका दोस्त अखिल, दिल से दिल तक अखिल संघ के लिए, अखिल संघ इस शो के लिए आपका बहुत तहे दिल से आभार जो आप लोग इतना साथ देते हैं और सुनते हैं और कभी कभी बड़े प्यार से बताते भी हैं कि अखिल भाई ये चीज़ ऐसे होनी है। तो हमने कहा हाँ जी वैसी ही होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मुस्कुराते रहें, अपनों का ख्याल रखें और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद।

से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना डर के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
3: इट इज अ सनी डे।
4: ओ सनी शेयर्स डे यार।
3: यार सॉरी।
4: और फिर मिला है तुलसी?
3: कितने ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को अता पता है ही नहीं यार।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु

की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेवर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: भैया परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।